श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर रंजनी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में अभी आप सुन रहे थे सारंगी वादन में गुलाम मोहम्मद के स्वर में, माफ कीजिएगा, स्वर में, तबला वादन में अजय कुमार और राग नट भैरव में कार्यक्रम स्वरंजनी। स्वरंजनी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सुबह के 6 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर

0: चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मांग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 6:40 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन। इसमें आज आप सुनेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के विचार।

बात उस समय की है जब देश गुलाम था और देश पर अंग्रेजों का शासन था। स्कूल में भी बच्चे अंग्रेजों का नाम लेते हुए डरते थे, लेकिन गोपाल नाम का बालक बहुत निडर था। एक दिन खेल खेल में एक बच्चे ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अंग्रेजों से डर नहीं लगता? गोपाल ने कहा, मैं भला उनसे क्यों डरूं? डरना तो कायरों का काम है। तभी एक दूसरा लड़का वहां पर आया और बच्चे से बोला, अरे भाई, तुमने तो प्रश्न ही गलत पूछ लिया। तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि गोपाल, क्या अंग्रेज तुमसे डरते हैं?

ये सुनकर गोपाल बोला, हाँ हाँ बिल्कुल डरते हैं। इस पर वह बच्चा बोला, ये बताओ अंग्रेज भला तुमसे कैसे डरते हैं? इस पर गोपाल बोला, अंग्रेज मुझसे ही नहीं बल्कि सबसे डरते हैं, पूरे देशवासियों से डरते हैं। तभी तो वे घोड़े पर सवार होकर हाथ में चाबुक लेकर चलते हैं और बात बात पर गरीब जनता पर चाबुक चला देते हैं। वे हमें इसलिए डराते हैं क्योंकि वास्तव में वे डरपोक हैं। यदि उन्हें हमारा डर नहीं है तो वे निर्भय होकर क्यों नहीं घूमते, हाथों में चाबुक लेकर घोड़े पर क्यों चलते हैं? ये सुनकर उसकी कक्षा के सभी लड़के गोपाल की वाहवाही करने लगे और तालियां बजाने लगे। कक्षा का एक लड़का बोला, वाह गोपाल, तुम्हारे विचार तो बहुत उच्च हैं और तुम तो बड़े ही निडर हो, तुम्हारे साथ रहकर तो हम भी निडर बन सकते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये क्या हो रहा है? कक्षा के सभी बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया स्कूल के प्रधान अध्यापक खड़े हुए थे। मुख्य अध्यापक को देखकर सभी बच्चे सहम गए। सबने उनको प्रणाम किया और खड़े हो गए। फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बेंत को मेज पर मारा तो सभी छात्र घबरा गए। सबको लगा कि आज तो गोपाल की खैर नहीं, लेकिन गोपाल उनके आगे निर्भीकता से खड़ा रहा और प्रधान अध्यापक से बोला, सर भला हम अंग्रेजों से क्यों डरे? हमारा देश और वे हमें हमारे ही देश में आकर डराए, भला ये कहां का न्याय हुआ? फिर हम अपने देश में उन गोरों से क्यों डरे? गोपाल की बात सुनकर प्रधान अध्यापक ने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, शाबाश बच्चे, बड़े होकर तुम अवश्य एक दिन देश का इतिहास रचोगे, मुझे तुम पर गर्व है। जी हाँ, आपने सही समझा, ये बालक कोई और नहीं बल्कि भारतीय जन जन में स्वाधीनता की अलख जगाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले थे।

अभी आप सुन रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों पर आधारित चिंतन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 6:45 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे रामचरितमानस। आज आप रामचरितमानस में सुनेंगे बालकांड का भाग 124।

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधि तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े।

श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा, और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्रसिंहः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुलगान्धिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में

0: न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने डिजिटल नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, औषधि और स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका के अंतर्गत सपना काचरू द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर ऋतु मिश्रा, सितार पर रईस अहमद और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। साथ ही साथ बता दें कि वक्त हो चुका है 7:30 और पूरे 25 सेकेंड्स। ये वक्त हो चुका है आपके और हमारे यानी हम सभी के पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। और आज इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त नमन अर्चना गुप्ता। और स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में।

जी हाँ दोस्तों, आज सुबह खिड़की खोली तो ठंडी ठंडी हवा ने जैसे कानों में धीरे से कुछ कहा, जरा मुस्कुरा दो जनाब, आज का दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है। सच कहूँ, मौसम का जादू ही कुछ ऐसा होता है, कभी बारिश की रिमझिम, कभी बादलों की शरारत, कभी सुनहरी धूप तो कभी ठंडी हवाओं का प्यार। मौसम सिर्फ बदलता नहीं, हमारे दिल का हाल भी बदल देता है। तो आज अगले कुछ मिनट तक हम बात करेंगे खुशनुमा मौसम की, उससे जुड़ी दिलचस्प बातों की, कुछ अनसुने किस्से, कुछ प्यारी प्यारी सी यादें।

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

जी हाँ दोस्तों, मौसम का जो जादू होता है वो सबके दिल में ऐसा घर करता है कि बस आपका भी दिल मचल उठता है कि भाई चलिए थोड़ा मौसम का लुत्फ उठाया जाए। दोस्तों क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों का जो है ना मानना है कि जब मौसम सुहावना होता है ना तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे फील गुड हॉर्मोन्स जो है ना वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। यही वजह है कि हल्की ठंडी हवा या बारिश के बाद मन अपने आप खुश हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छा मौसम सिर्फ बाहर नहीं खिलाता, वो दिल के अंदर भी, मतलब कहने का मतलब है कि अच्छा मौसम सिर्फ बाहर नहीं खिलता यानी बाहर नहीं दिखता, वो आपके दिल के अंदर भी खिल उठता है। और इसी बात पे एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं। जी हाँ, एक ना बुजुर्ग दादाजी होते हैं जो रोज सुबह पार्क में टहलने जाते थे। किसी ने पूछा, दादाजी इतनी उम्र में भी रोज आप क्यों आते हैं टहलने के लिए, आपको तो आराम करना चाहिए। तो दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा मैं मौसम देखने नहीं आता, मैं मौसम को महसूस करने आता हूँ। पेड़ों की सरसराहट, चिड़ियों की आवाज और सुबह की हवा मुझे याद दिलाती है कि जिंदगी अभी बेहद खूबसूरत है उम्र के इस मोड़ पर। कितनी बड़ी बात है ना दोस्तों, हम अक्सर मौसम को सिर्फ देखते हैं लेकिन उसे महसूस करना भूल जाते हैं। तो महसूस कीजिए इस खूबसूरत मौसम को हमारे साथ, इन खूबसूरत गीतों के साथ।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ आज हूँ इस खूबसूरत सुहावने खुशनुमा मौसम में आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे अर्चना गुप्ता। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सत्ते पे सत्ता, जो मौसम को और भी खूबसूरत बनाता है।

भाई मौसम की बात हो रही हो, बारिश की बात हो रही हो और ये खूबसूरत गाना ना बजे, ये खूबसूरत गाना आपको ना सुनवाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। याद है वो दिन, बचपन के वो प्यारे से खूबसूरत से दिन, जब पहली बारिश होती थी और होते ही हम छत पर भाग जाते थे, कागज़ की नाव बनाते थे, पानी के छोटे छोटे गड्ढे जो होते थे उसमें कूद जाते थे, छपाक छपाक करते थे, उन गड्ढों में अपनी नाव चलाते थे। मम्मी डांटती रहती थी लेकिन चेहरे की मुस्कान कोई नहीं छीन पाता था और उस शरारत से हमें कोई भी रोक नहीं पाता था। देखा दोस्तों, बचपन हमें सिखाता है ना खुश रहना। मौसम बदलता है, बचपन बदलता है, बचपन से हम बड़े हो जाते हैं, जवानी में आते हैं और बस चीज़ें कहीं गुम हो जाती हैं। आज उस बचपन को, उस मौसम को, उस

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी। गुड मॉर्निंग, वक्त हो चुका है 7:49 और पूरे 50 सेकंड्स, ऑलमोस्ट 7:50 होने को हैं और कार्यक्रम यहाँ चल रहा है गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और इसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना।

दोस्तों, मौसम हमेशा बदलता रहता है, इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ कठिन समय चल भी रहा है ना, तो याद रखिए जैसे धूप के बाद बारिश आती है और ठंडक दे जाती है, चिलचिलाती गर्मी से आपको निजात दे जाती है, ठीक वैसे ही सफलता भी एक ना एक दिन आपके कदम चूमती है। जो ज़िंदगी का अंधेरा है वो भी दूर हो जाता है। वैसे ही बारिश के बाद साफ आसमान भी आता है, जी हाँ, और किसी भी मौसम की तरह ज़िंदगी का भी दौर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो याद रखिए, जैसे मौसम बदलता है वैसे ही ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो इन उतार चढ़ावों को आपको फेस करना है और मजबूती से डट कर सामना करना है अपनी कठिन परिस्थितियों का।

यहाँ बात चल रही है मौसम की और जिंदगी में आने वाले कुछ उतार चढ़ावों की, बचपन की यादों की, कि किस तरह से हम अपने बचपन में मौसम को एंजॉय करते थे और किस तरह हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं ठीक वैसे ही जैसे मौसम बदलता है। तो बस अपनी लाइफ को एक दिशा दीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ भी बने रहिए और इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है ना वो लेकर आते हैं आपके साथ करने के लिए। और सुबह सुबह इतने सुविचारों को सुनकर, इतने अच्छे विचारों को सुनकर, अच्छी बातों को सुनकर, होपफुली आपका जो दिन है ना वो डेफिनेटली बनने वाला है।

जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने घर से निकले ना आज, तो एक पल के लिए बस आसमान की तरफ जरूर देखिएगा। ठंडी हवा को महसूस कीजिएगा, उन मीठी मीठी बारिश की बूंदों को महसूस कीजिएगा, पेड़ों को देखिएगा और खुद से कहिएगा कि आज का मौसम ही नहीं, मेरा मूड भी खुशनुमा है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आपकी आज की आज दोस्त अर्चना आपसे चाहती है इजाज़त। आई होप आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और ऐसे ही और खूबसूरत कार्यक्रम को लेकर आप के समक्ष जल्दी हाजिर होती रहूँगी। और इसी वादे के साथ आप मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मौसम की तरह अपनी ज़िंदगी में भी ताजगी बनाए रखिए। टेक केयर, बाय बाय।

0: इसी गीत के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का

0: कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मालवण आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5

0: 555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच यह विधेयक पारित हुआ।
3: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
0: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोक सत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Hooda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening

0: The French leader has pushed for the ban to come into effect by September ahead of the new school year. However, a review to determine whether it complies with the French constitution could delay its implementation. A growing number of countries are taking steps to restrict social media access amid multiplying warnings over its harmful effects on children. Komudi Parikh, Akashvani News, Delhi.
1: India has delivered relief materials, including food items and family tents, to Afghanistan's National Disaster Management Authority to support the affected communities in the wake of the floods in Nuristan. In a social media post, External Affairs Ministry said, India stands with the Afghan people at this difficult time. On to sports. In China Open Badminton, PV Sindhu will take on compatriot Unnati Huda, and Lakshya Sen will get his men's singles campaign underway today. Ayush Shetty will take on Alvi Farhan in the singles opening round today. Men's doubles pair M.R. Arjun and Hariharan Amsa Karunan. Mixed doubles pair Rohan Kapoor, Rutvika Shivani Gadde and Tanisha Krasto Dhruv Kapila will also be in action today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
2: Thank you, Anuja. The dailies have covered the Prime Minister's call to the NDA MPs to reach out to youth and dispel their fears of any future occurrence of an exam paper leak. The Indian Express, quoting the Prime Minister, says, "Future of youth is beyond politics, calls for foolproof and timely exams." Quoting the Home Ministry, the Times of India states, 50% quota for ex-Agniveers in Central Armed Police Forces, Assam Rifles posts. India soon to get first dengue vaccine for people aged 4 to 60 years, informs the Statesman. An op-ed in the Tribune writes on how India's private sector has entered an exciting phase with Skyroots Aerospace launching Vikram 1 rocket. Condemning the attack on commercial vessel, Russian envoy summoned over killing of four Indians, writes the Economic Times. A headline in Hindustan Times writes, AI to drive planning, audits, fraud detection under Viksit Bharat Ji Ramji, humans to take final call. And finally, Financial Express mentions about a QS survey declaring Delhi the most affordable for students in the world, doing well on employer demand as well. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO trade policy review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी राबतों में नुमाया तोसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आपदोस शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तजारती निज़ाम के तई अपने अहद का अदा किया है और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी टेक्नोलॉजी नीज इख्तिरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। اس گوبجے کے مقام پر بھارت شمالی مقدونیا تجارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے صدر مرمو نے کہا کہ ان کے دورے سے جو کسی بھارتی صدر کا شمالی مقدونیا کا پہلا دورہ ہے ان تعلقات کو مستحکم کرنے کے بھارت کے مضبوط ارادے کی عکاسی ہوتی ہے۔ صدر مرمو نے شمالی مقدونیا کو ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے میں بھی بھارت کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے کے لیے مدعو کیا جس سے مالی

0: द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुई। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: शिमाजी मकदूनिया के सदर जमहूरिया के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नमा निगार की एक रिपोर्ट।
2: सत्रे मुर्मू ने कहा कि भारत की दवा साजी की सनद शिमाली मकदूनिया में सरमायाकारी के लिए तैयार है। ये सरमायाकारी वसीतर बलकान और यूरोपीय मार्केट्स के लिए दवाएं और तिब्बी आलात मिलकर तैयार करने के लिए की जाएगी। उन्होंने खुराक की डिब्बाबंदी, गोल्डन चेन, लॉजिस्टिक, बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई, मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप इको निज़ाम के शोबों में शराकत दारी की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया ने शिमाली मकदूनिया को दावत दी कि वो बैनुल अक्वामी समशी इत्तेहाद, कुदरती आफात से मुताबिकत रखने वाले बुनियादी ढांचे और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद जैसे मुश्तरका इकदामात में शिरकत करें। उन्होंने आलमी ऑडियल विजल और तफरीही समिट वेव्स में शिरकत की भी दावत दी, जो भारत में अगले साल मुनक्किद होगी। शिमाली मकदूनिया से सुबह श्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। इसका मकसद सभी के लिए सेहत की सहूलियात, डिजिटल हेल्थ, वबाई बीमारियों से निपटने की तैयारी और मयारी हिफ्जान सेहत तक मुसावियाना रसाई दस्तयाब कराना है। इस मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के साथ साथ महकमे सेहत के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मजबूती, इख्तरा, बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए तामीर थीम के ज़रिए अहम आलमी सेहत तरजीहात के सिलसिले में मुश्तरक इकदाम को आगे बढ़ाने के तई भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेहत की मरकज़ी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि ये वजारती मीटिंग हेल्थ सिक्योरिटी, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी, डिजिटल हेल्थ, इख्तरा, सस्ती दवाओं की फराहमी और तिब्बे निज़ाम जैसे शोबों में बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने पर मरकूज़ होगी। आज आला अहदेदारों की मीटिंग के साथ ही बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ होगा, जिसके बाद कल सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर JP नड्डा की सदारत में ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मुनक़िद होगी। इस मीटिंग में वज़रा अवामी सेहत से मुतालिक अहम आलमी और इलाकाई तरजीहात पर तबादले ख्याल करेंगे। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: भारतीय बहरिया INS मालवान को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये माहे तर्ज के आबदोज शिकन जंगी जहाज की दूसरी शक्ल है जो गहरे पानी में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। ये तकरीब आज कर्नाटक के कारवार इलाके में मुनक़िद होगी। INS मालवान को कामकाज में शामिल किया जाना बहरी जहाज़ों को भारत में ही तैयार किए जाने वाले प्रोग्राम के तहत एक अहम कदम है। इस तकरीब की सदारत फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह करेंगे, जिसमें बहरिया के दीगर सरकर्दा अफसरान भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आला तालीम में खवातीन की शिरकत की हौसला अफजाई और खवातीन के तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने के वाक़ात में कमी लाने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर रियासत की होनहार तालिबात को मुफ्त स्कूटी फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना मीटिंग में रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमा खतूत की मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
4: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि ग्रेजुएट लड़कियों में से शुरू में सरकर्दा 5% तालिबात की फहरिस्त तैयार की जाएगी। इसके बाद इनमें से तालिबात को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर मुंतखब किया जाएगा। इस सरकारी स्कीम के तहत तालिबात को न सिर्फ स्कूटी फराहम की जाएगी बल्कि उन्हें बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट, लाजमी मुतालिका सामान और 4 लीटर पेट्रोल भी फराहम किया जाएगा। माजूर तालिबात शहीद फौजियों और बेघर अफराद की बेटियों के लिए आमदनी की हद की शराइत में रियायत दी जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: भारत ने उसूलों पर मबनी, शफाफ और किसी तरह की तफरीक से पाक कसीर मुल्की तजारती निज़ाम के तई अपने अज़म को दोहराया है। भारत ने अपनी इस राय का इजहार आलमी तजारती तंजीम WTO में तजारती पॉलिसी के अपने 8वें जायजे के दौरान किया, जिससे आलमी तजारत में मुल्क के बढ़ते हुए रोल का अंदाज़ा होता है। تجارت کے سیکرٹری راجیش

0: अग्रवाल ने आलमी तजारती निज़ाम के साथ भारत की सरगर्मियों और तजारती माहदों का एक वसी तर नेटवर्क कायम करके तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने नरम रवि पर मबनी गैर मुल्की रास सरमायाकारी के निज़ाम और तरक्की पजीर मुल्कों के माबेन तआवुन की लगातार हिमायत पर भी जोर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तिजारत के महकमे ने कहा कि भारत सबकी शमूलियत वाली आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने में एक काबिल एतबार और काबिल इन्हिसार शराकत दार है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज़ करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सरकार की यकीन दहानी के बावजूद नीट से वाबस्ता मामलात पर बहस कराने के अपने पहले के मुतालबे से पीछे हट गए हैं।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इससे पहले दिन में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नीज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नज़दीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाक़े में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने आवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर भरोसा करें। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा कल नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और नीट UG इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर कौमी राजधानी में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए और वहाँ दाखिल सभी जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नीट माहदे पर जामे बहस कराने के लिए अपनी आमादगी से मुत्तला कर दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस ने जमहूरी बहस मुबाहसे के बजाय सियासी तमाशा करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद तलबा के लिए कोई हल तलाश करना नहीं बल्कि सियासी सुर्खियों में आने के लिए रखना डालना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुंग को कौमी राजधानी के सदर सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज़ नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन

0: उनकी मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे, नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल्स जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर HS प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफन से हार गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोज़नामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के 3 मुल्कों के सरकारी दौरे से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि इक्तसादी तआवुन भारत और शिमाली मकदूनिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात की इंतहाई अहम बुनियाद है। वजारत खारजा ने भारत में रूस के सिफारत खाने के नाजिमुल उमूर को तलब करके यूक्रेन में तिजारती जहाज़ पर हमले में 4 भारतीय मल्लाहों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया। इस खबर को प्रताप समेत कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद अहम बैन अलावामी खबरों की सुर्खियाँ इस तरह हैं। हूसियों के बहरी नाकाबंदी किए जाने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, सऊदी अरब का इंतबाह।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी राब्तों में नुमायाँ तौसी की ज़रूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तजारती निज़ाम के तई अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी वतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 8:45 और 15 सेकेंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सत्येंद्र नाथ द्वारा शहनाई पर बजाया राग, राग नट भैरव। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर राशिद नियाजी।

0: लग जाओ, सलाह ना करो, एक्शन च आ जाओ। और कदों ओहदे नाल मिलदियां जुलदियां चीज़ां, जिवें मैं कहा कि जदों तुसीं 100% उत्ते फोकस्ड हो जाते हो। हाँ, टाइम लग सकदा आ, दिन रात तुहानूं सख्त मेहनत भी करनी पैगी, पर तुहानूं नहीं पता लगना कि परमात्मा ने कदों अपने कुछ चुनिंदा बंदियां दियां ड्यूटियां लातियां, जिन्हां ने आके तुहाडी बांह फड़नी है कि चल भाई तेरे लई भेजे गया वा, ते तेरे लई उहदे राह खोलीए। सो मैं यही कह सकदा, यही मैं अपनी जिंदगी दे विच ढालिया है, और ये 100% सच है, ये हो जाता है।
1: मेहनत दा फल जरूर मिलता है।
0: एको एक दा कोई शॉर्टकट नहीं है। मत सोचो तुसी कि रात आ गा लवां, ओ गा लवां, रात गाऊंगा इन्हें सवेरे हिट हो जाना, आ जुगाड़ ला लवां। सक्सैस दे विच जुगाड़ नहीं चलदी, जे तुसी लंबी ते रिस्पैक्टफुल सक्सैस पालदे हो।
1: याकूब जी, जिवें तुसीं दस्सिया कि मेहनत ही सफलता दी कुंजी है,
0: जी
1: ते अज तुसीं बड़ा बड़मुल्ला समां कढ के साडे नाल अपनी गायकी बारे, अपने बारे, अपनी जिंदगी दे अनुभव सांझे कीते, अपने ये पल सांझे करन दे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं सर तहे दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि तुसी इन्ने खूबसूरत प्रोग्राम दे विच बुला के मेरे नाल गल्लां करन दा, ते अपने दिल दीयां गल्लां अपने प्यारे श्रोतियां दे नाल, लिसनर्स दे नाल रखन दा मौका दिता, उहदे लई मैं तुहाडा तहे दिल तो शुक्रिया,
1: शुक्रिया
0: धन्यवाद।
1: जी, थैंक
2: यू। उगे गायक याकूब गिल नाल कीती मुलाकात तुसी सुन रहे सी, ते उन्हां नाल गल्लबात कर रहे सन श्री बलविंदर सिंह बराड़। आसे कि मिट्टी दी महक प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होवेगा। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारतीय उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि उथल पुथल और व्यवधानों के इस दौर में सबसे अधिक असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। फिलीपींस के मनीला में आज आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक समय तक हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देश अपने भविष्य के प्रति आशावादी हैं और इसीलिए चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष है। विदेश मंत्री आसियान भारत पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक सहित आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्री स्तर की बैठक के लिए दो दिन की यात्रा पर फिलीपींस के मनीला में है। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुँच पर विचार विमर्श होगा।
1: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव सहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदारवादी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम

0: उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकवादियों को शह और सहायता देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी छतरू इलाके में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की मदद कर रहा था। इसकी पहचान सिंहपुर के डवाथर निवासी मोहम्मद रफीक नाइक के तौर पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में एक आदर्श और उत्कृष्ट नागरिक के गुणों को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। ये दिन फलों के राजा आम और भारत की समृद्ध आम परंपरा के सम्मान में मनाया जाता है। गोवा का प्रसिद्ध मनकुराद आम अपनी खास खुशबू, मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर संभाग और जम्मू के ठंडे इलाकों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया कि अब स्कूल 27 जुलाई को खुलेंगे। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक तेज वर्षा और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश हो सकती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 371 अंक गिरकर 77,097, जबकि निफ्टी 106 अंक फिसलकर 24,081 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एचएस प्रणॉय कल प्रतियोगिता के शुरुआती राउंड में मलेशिया के खिलाड़ी से हारकर बाहर हो गए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu has called for expanding Indian-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the Indian-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that in this era of volatility and disruption, the most visible stress is on supply chains. In his opening remarks at ASEAN Post-Ministerial Conference with India 2026 in Philippines today, Dr. Jaishankar said that energy, food and health security can no longer be taken for granted. He said that both India and ASEAN are optimistic about their prospects and therefore the focus should be on opportunities even while addressing challenges. Dr. Jaishankar noted that this year is the ASEAN-India Year of Maritime Cooperation and it is a timely reminder of the progress ASEAN and India can make together towards a more stable and secure future. India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality health care. Indian Navy will commission INS Malwan, the second of the Mahi-class anti-submarine warfare shallow-water craft at Karwar in Karnataka today, marking another milestone in India's indigenous naval shipbuilding program. The commissioning ceremony will be presided over by Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, in the presence of Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command. Senior naval officers, veterans and other distinguished guests will also attend the event. In a major initiative to boost female participation in higher education and reduce drop

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 10:10:14, और ये वक्त होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम, आपकी पसंद का।

श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम में मैं कुसुम पवार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हम ढेर सारी बातें करेंगे और आपके जो हमारे पास संदेश आए हैं उनसे भी रूबरू होंगे। बहुत सारे संदेश मेरे पास आए हैं और हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुण की जो बिना किसी शोर शराबे के व्यक्ति के जीवन को सफलता, सम्मान और संतुलन की ओर ले जाता है। वो कौन सा गुण है वो मैं बताऊंगी, आप भी जरा सोचिए। फिलहाल सुनिए ये प्यार सा गीत।

दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम पवार। दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया कि हम आज बात करेंगे एक ऐसे गुण के बारे में जो बिना किसी शोर शराबे के व्यक्ति के जीवन को सफलता, सम्मान और संतुलन की ओर ले जाता है, तो वो कौन सा गुण है ये मैंने आपसे जानना चाहा। तो मैं ये पूछना चाहूंगी दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में भी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं? क्या इसका रहस्य केवल प्रतिभा है? क्या सफलता केवल किस्मत से मिलती है या कुछ और कारण है? क्या कभी कभी आपने सोचा है कि प्रकृति बिना किसी को याद दिलाए अपने नियमों का पालन करती है? हमें याद दिलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही नियमों का पालन करती जाती है। तो क्या इसके पीछे राज है? किस चीज़ की बात कर रहे हैं? तो ये मैं जानना चाहूँगी। आपके ढेर सारे मैसेजेस और संदेश हमें मिले हैं, तो हम इस बारे में बात करेंगे और आपके विचार जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, किस चीज़ की बात हम कर रहे हैं और जीवन में उस चीज़ का होना क्यों ज़रूरी है।

दोस्तों, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है? ज्ञान, भाग्य या कुछ और? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम आज खोजेंगे, आपसे जानेंगे, कुछ अपनी बातें करेंगे, कुछ हम बताएंगे और कुछ आपसे जानेंगे कि आपकी क्या राय है।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा।

0: जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
2: कूल रहो।
3: तो दोस्तों हमने बात करी थी गुण के बारे में, ऐसा कौन सा गुण है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमें आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं और बात कर रहे हैं हम अनुशासन की। वैसे बहुत सारे गुण होते हैं जैसे कि धैर्य, मेहनत, लगन, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत होती है। अनुशासन का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं होता दोस्तों, बल्कि सही समय पर सही कार्य करना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने व्यवहार में संयम बनाए रखना भी। यही आदतें व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं। कहते हैं कि अनुशासन वह पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि के बीच की दूरी को कम करता है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी देखें तो हर सफल व्यवस्था अनुशासन पर ही आधारित होती है दोस्तों। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। सूर्य प्रतिदिन समय पर उदय होता है, ऋतुएं अपने निश्चित समय से आती हैं और प्रकृति का प्रत्येक नियम अनुशासन का संदेश देता है। अगर हम परिवार में देखें तो परिवार में अनुशासन, आपसी सम्मान, समय का सही उपयोग और जिम्मेदारियों के निर्वाह में भी दिखाई देता है। कार्यस्थल की बात करें तो अनुशासन समय की पाबंदी, ईमानदारी, सहयोग और कार्य के प्रति समर्पण के रूप में सामने आता है। वहीं समाज में अनुशासन कानूनों का पालन, स्वच्छता, यातायात नियमों का सम्मान करना और दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखने में प्रकट होता है। तो अनुशासन बेहद ज़रूरी है हमारी सफलता में और यही बात हम करना चाह रहे थे। और आपके ढेरों मैसेजेस हमें मिले हैं और ये मैसेज है, ये मैसेज आया है हमें सनावत से शेख मूसा मोहसिन का और उनका मैसेज आया। इसके अलावा हमें मैसेज भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। और ये कह रहे हैं कि बेहतरीन प्रस्तुति, बेहतरीन नगमों के साथ साथ बेहतरीन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि जीवन में धैर्य, मेहनत और संघर्ष, निष्ठा और लगन इंसान का भाग्य बदल देती है। गुण बहुत ज़रूरी है, वाकई बहुत सारे गुण हैं और उनमें अनुशासित रहेंगे तो ये सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। इसके अलावा हमें मैसेज आया है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खुरवाल और समस्त परिवार का। और अगला मैसेज है मुंबई से अनु बड़जात्या का और समस्त परिवार का। ये कह रहे हैं कि भाग्य दरवाजा खोलता है, किस्मत मौका देती है, पर आगे इंसान अपने काम से ही बढ़ता है। मतलब कि किस्मत प्लस अवसर इज इक्वल टू 10% और कर्म प्लस मेहनत इज इक्वल टू 90%। बिना कर्म के भाग्य भी सो जाता है। जी बहुत ही सही बात कही आपने। और इसके अलावा हमें ये मैसेज आया दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी और समस्त परिवार का। और इन्होंने भी अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश की है। इसके साथ ही पिहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार, सनातनी गुड्डू कुमार और मुन्नी देवी, जयप्रकाश वसंत राव और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। इसके अलावा ये मैसेज आया है ज़िला नांदेड़ येतावाला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश जायसवाल और समस्त जायसवाल परिवार का। इसके अलावा हमें ये मैसेज आया है पंजाब ज़िला पटियाला से और उत्तम नगर दिल्ली से भी हमें कमला रानी और समस्त परिवार का मैसेज आया है। ये मैसेज आया हरजीतन सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पू भाटिया का। तो आपके ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अनुशासन की। तो जिन्होंने भी देर से हमें सुनना शुरू किया तो हम बता देते हैं कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और हम बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा गुण है जो हमारे जीवन को नई दिशा देता है, प्रगति देता है। तो हम बात कर रहे हैं अनुशासन की, हम आपकी राय जानना चाहते हैं।

0: इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल।
1: दोस्तों हमारे पास आपके ढेरों मेल आ रहे हैं और हमने जो पूछा है उसका आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। हम बात कर रहे हैं अनुशासन की। अनुशासन वो आदत है दोस्तों जो कठिन कार्यों को भी सरल बना देती है। यानी अक्सर लोग सफलता को भाग्य से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में निरंतर प्रयास और अनुशासित जीवन ही स्थायी सफलता की नींव रखते हैं। तो छोटी छोटी अच्छी आदतें, समय पर उठना, समय का सदुपयोग करना, अपने वचन का पालन करना, अपने कर्तव्यों की पूरी निष्ठा से निभाना धीरे धीरे बड़े परिणाम देती हैं दोस्तों। और हमें भी ढेरों सारे मेल आए हैं और ये मैसेज आया है हरजीत सिंह भाटिया, एंजल भाटिया और समस्त परिवार का। कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत से ही इंसान सफल होता है। मेहनत से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। जी हाँ, और कड़ी मेहनत करने के लिए पहले अनुशासित होना पड़ता है। अनुशासित होंगे तो हम फिर मेहनत करेंगे और जब मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित ही हमें मिलती है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और समस्त भगत परिवार का मैसेज आया है पाकुड़ झारखंड से। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से बोहरछा गाछी से भी मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का हमें मैसेज मिला है। इसके अलावा लिवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, राजा दास और रानी मानिकपुरी का भी मैसेज आया है। इनका कहना है कि इंसान के अंदर नम्रता, सादगी और धीरज जैसे गुण होने चाहिए और ये गुण इंसान को बहुत कुछ देते हैं। गुण इंसान में होना ही चाहिए, वाकई ये गुण भी होने चाहिए। और हमने बात की है अनुशासन की, तो हम अनुशासन के ऊपर भी कुछ जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ये बात सही है कि अनुशासित व्यक्ति ही सफलता की ओर आगे बढ़ता है। ये आया है मैसेज हीरामन शेंडे सिद्धार्थ गुड़ाने और अमरावती से, किशोर नगर से ये आया है इनका मैसेज। तो ये कह रहे हैं कि छू ले आसमान ज़मीन की तलाश ना कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ऐसे ही।

सार सलमानी, नौशाद सलमानी और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है, कह रहे हैं लाजवाब प्रोग्राम, लाजवाब प्रस्तुति के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बा हिमांश का भी मैसेज आया है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, समस्त साहू परिवार का मैसेज आया है। मुलालपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और समस्त जैन परिवार का हमें मैसेज आया है। घनौरी विटाली तहसील नादुड़ा जिला बुलढाणा से महाराष्ट्र से हमें भगवान पाटिल और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। किशोर नगर अमरावती से भी हमें मैसेज आया है और ये कह रहे हैं कौन किसका रकीब यानी अनमी होता है, कौन किसका हबीब यानी फ्रेंड होता है, वो बन जाते रिश्ते नाते जब जिसका नसीब होता है। वाकई बहुत अच्छी बात कही आपने। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। इसके अलावा झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और समस्त भाटिया परिवार का भी हमें मैसेज आया है। और ये मैसेज आया है भिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशन लाल देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन का। कह रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति को साधारण उसकी सीमित सोच, जोखिम ना उठाने की आदत और लीक पर चलने का नज़रिया बना देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से कम में ही संतुष्ट हो जाता है तो ठीक ठाक जीवन से समझौता कर लेता है तो असाधारण नहीं बन पाता। और इसके अलावा हमारे पास भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से भी कौशल्या देवांगन जी का भी मैसेज जो हमने पढ़ लिया है। और ये मैसेज आया है चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का। ये कहते हैं कि जब हमारी नेक नियति स्वच्छ है और निष्ठा हमारे खून में है तो सब कुछ हमारा है। जी हाँ, वाकई सही बात है। एकता कॉलोनी रोहतक से भी हमें मैसेज आया है और कृपया करके आप बार बार मैसेज ना कीजिए। हमारी ये गुजारिश है कि आप एक बार ही पे एक ही मैसेज कीजिए, जिससे कि आपके समान और भी जो आपके दोस्त हैं उनको भी मौका मिले और वो भी अपनी बात कह सकें। आपसे एक विनम्र गुजारिश है। इसके अलावा ये है कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहाँ बेगम, मरियम जैनब का भी हमें मैसेज आया है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से भी मोहम्मद सईद अब्बासी और समस्त अब्बासी परिवार का मैसेज आया है। और दोबारा से मैसेज रिपीट हो रहा है। इसके अलावा ये सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से भी हमें मैसेज मिला है। इन्होंने कहा है कि जीवन में निरंतरता, अनुशासन और खामोशी से की गई मेहनत बहुत बड़ा गुण है। तो वाकई सही बात है। और आपने भी प्रकृति की बात कही है कि जो भी प्रकृति की चीज़ें होती हैं वो नियम पर ही होती हैं, एक उनका अनुशासन होता है। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और समस्त परिवार का मैसेज मिला है। और इसके अलावा हमें ये मैसेज आया है राशिद हुसैन अंसारी का और समस्त परिवार का। और भी ढेर सारे मैसेजेस आए हैं, आपके मैसेजेस हम लेते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं ये प्यारा सा गीत, आप सभी को सुनवाते हैं।

श्रोताओं, आपके ढेरों मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। ये मैसेज आया है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और जस्सी यादव का। और इसके अलावा हमें मैसेज आया है भंवरपुर बसना से राधेश्याम और समस्त परिवार का। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव देशमुख और समस्त परिवार का। और ये मैसेज आया है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और समस्त परिवार का। ये कह रहे हैं अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा ये मैसेज आया है हमें बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और समस्त ढींगिया परिवार का।

श्रोताओं, ये मैसेज आया है माल्यान सरधना मेरठ से, अनिल जैन और जैन परिवार का। और ये मैसेज आया है आपका सनावत से, शेख मूसा मोहसिन और समस्त परिवार का। इसके अलावा हमें बहुत सारे और मैसेज आए हैं धर्मेंद्र छिपा का। ये मैसेज आया उत्तम नगर दिल्ली से। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बार बार मैसेजेस ना करें, तो सिर्फ आपके ही मैसेजेस आते रहते हैं, बाकियों के नाम हम नहीं बोल पाते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से भी आपका दोबारा मैसेज आ गया। कमला रानी, बोधराज खोरवाल, आपके मैसेजेस बहुत सारे आ गए हैं, जैसे ये वाले मैसेज है। सनावत से भी आपका बहुत सारे मैसेज आए, जबकि मैंने आपका दो बार नाम भी अनाउंस करा है। इसके अलावा हमें मैसेज आया है ज़िला नांदेड़ येतावाला महाराष्ट्र से, शंकर लाल जायसवाल और समस्त जायसवाल परिवार का। नाभा जिला पटियाला पंजाब से, सोमदत्त कैरव और ज्योति रानी और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। और ये मैसेज आया है हमें लवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास, मानिकपुरी राजा दास और समस्त परिवार का। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। और इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस हमें आए हैं। ये खैर बाज़ार पानीपत से हमें मैसेज आया है, समस्त नरेश मल्होत्रा और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी और समस्त परिवार का हमें मैसेज मिला है। इसके अलावा बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और समस्त परिवार का मैसेज आया है। राशिद हुसैन अंसारी जी का भी मैसेज आया है।

दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं अनुशासन की, तो आज का अनुशासन है कल की उपलब्धि बनता है। अनुशासन हमें केवल सफलता नहीं दिलाता, बल्कि विनम्र, विश्वसनीय, जिम्मेदार भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति पर परिवार, समाज और कार्यस्थल हर जगह विश्वास किया जाता है।

श्रोताओं, ये मैसेज आया है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और समस्त परिवार का। आपका हमने मेल ले लिया, कह रहे हैं आपकी दीदी

जी प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, कृपया मेल को प्रोग्राम में शामिल कीजिए। तो अब आपकी शिकायत नहीं रही होगी, हमने आपका मेल शामिल कर लिया है। ये इसलिए आपके मैसेजेस रह जाते हैं कि बहुत सारे ढेरों मैसेजेस ऐसे होते हैं कि वो एक से ज़्यादा बार भेजे जाते हैं, तो इस वजह से जो सभी के नाम शामिल नहीं हो पाते, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप सभी के नाम शामिल किए जाएं। पांडर कवड़ा से अनिल बुराड़े, उषा बुराड़े और समस्त परिवार का हमें मैसेज आया है। इसके अलावा सहारनपुर से भी मैसेज आया है, छत्तीसगढ़ी पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मी का भी हमें मैसेज आया, राशिद हुसैन अंसारी जी का भी हमें मैसेज आया है, और लक्ष्य लाडो पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा जी का भी मैसेज हमें मिला है। आप सभी की पसंद का सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अनुशासन की। अनुशासन ही ऐसा गुण है जो हमें आगे ले जाता है, और हमें जो हमारा अनुशासित जीवन होता है, वो अगर हम अनुशासित रहते हैं तो हर क्षेत्र में सफल होते हैं। दूसरों कहते हैं कि अनुशासन वो शक्ति है जो हमें सही काम सही समय और सही तरीके से करना सिखाती है। ये याद रखना चाहिए कि अनुशासन किसी बाहरी दबाव का नाम नहीं है, ये स्वयं के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब हम छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो वही आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। तो ये मैसेज आया है हमें बसंत कुमार सिन्हा जी का। इसके अलावा हमें ये मैसेज आया है बिहारी कॉलोनी शादर दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन और समस्त मस्किन परिवार का। और इसके अलावा हमारे पास और ढेरों मैसेजेस आए हैं, जो हमने आपसे पूछा था कि ऐसा क्या गुण है जो हमें आगे ही बढ़ाता रहता है। गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेहनत, कड़ी सफलता और कहते हैं ना कि संयम, ये सभी तो है ही, लेकिन यदि आप अनुशासित रहेंगे तो अनुशासन हमें आगे बढ़ाता जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमें कहते हैं ना कि जैसे मैंने बताया, जैसे प्रकृति अनुशासित रहती है तो अनुशासन में रहकर आगे कार्य करते हैं तो आप आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो हमने बात अनुशासन की है, और आपके भी ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं अनुशासन पर। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, और ये मैसेज आया है कृष्णा कॉलोनी झांसी से, किशोर कुमार और सुभाष योगी और समस्त परिवार का। संदीप मक्कड़ जी का ये मैसेज आया है हमें जालंधर से, और ये मैसेज आया है खैर बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा और समस्त परिवार का।

श्रोताओं, ये मैसेज आया है हमें ग्राम कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से, प्रवीण, योगिता और पार्थ का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैसेज हमें मिला है। और इसके अलावा हमें मैसेज आया है संदीप मकर जी का, जालंधर पंजाब से। और ये मैसेज आया है पंकज शर्मा जी का, ये कहाँ से लिख रहे हैं, ये मॉडल टाउन करनाल से इन्होंने हमें मैसेज किया है।

श्रोताओं, ये मैसेज आया है डीबी राणा, नेहरू विहार, दिल्ली से। और इसके अलावा हमें मैसेज मिला है, ये आप सभी के रिपीट मैसेजेस आ गए हैं, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमूत यशु और समस्त परिवार का मैसेज है। इसके अलावा अनिल जैन और समस्त जैन परिवार का मल्याण सरधना मेरठ से हमें मैसेज मिला है। और ये मैसेज मिला है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी और समस्त परिवार का। और बहुत सारे ढेरों मैसेजेस आए हैं आप सभी के। लीजिए, सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

करता हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने हमें अपने विचार साझा किए, आपके ढेरों मैसेजेस हमें मिले। अनुशासन वो शक्ति है जो सपनों को उपलब्धियों में बदल देती है, और यदि हम अनुशासित रहेंगे तो निश्चित ही प्रगति करेंगे। इसी के साथ मुझे यानी आपकी दोस्त और होस्ट कुसुम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह हमें अपना मैसेजेस भेजते रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम, कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने भारत चीन संबंधों के धीरे धीरे सामान्य होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गहरे द्विपक्षीय सहयोग के लिए सीमा पर शांति मूलभूत शर्त है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का मानना है कि आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर ही एक स्थिर और सहयोगात्मक संबंध का सर्वोत्तम विकास हो सकता है। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में उठाए गए कई विश्वास निर्माण उपायों का स्वागत किया, जिनमें सीधी उड़ानों की पुनः शुरुआत, वीजा व्यवस्था में संशोधन, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार का पुनः शुरुआत शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बनी सहमति को दोहराया कि मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। श्री जयशंकर ने कहा कि इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना कूटनीति की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपियो में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत ने कल चंडीगढ़ में ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा करने की ईरान की क्षमता को और कम करने के लिए लगातार कल भी हवाई हमले किए। कमांड ने सैन्य संचालन केंद्र, समुद्री क्षमताओं, एयरक्राफ्ट हैंगर और प्रबंधन इकाई को निशाना बनाया। इससे पहले ईरान ने पिछले 3 महीनों में महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले 30 से ज्यादा वाणिज्यिक

0: जहाज़ों पर हमला किया था। इन हमलों से सैकड़ों नाविकों की जान खतरे में पड़ी और आवाजाही को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष की लागत अब तक $37.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने डेमोक्रेट सांसद डिक डर्बिन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विनियोग समिति के समक्ष इसकी जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 707 अंक गिर कर 76,762 जबकि निफ्टी 196 अंक फिसल कर 23,991 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में कल तक मूसलाधार वर्षा और संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन तथा जल भराव की आशंका व्यक्त की है। केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज और कल बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की उन्नति हुड्डा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Indian Navy inducted the second anti-submarine warfare shallow water craft of the Mahe class, INS Malvan, at Karwar in Karnataka today. This is a significant achievement in India's indigenous warship building. Air Chief Marshal A.P. Singh, the Chief of the Air Staff, was the chief guest at the ceremony. Speaking on this occasion, Air Chief Marshal A.P. Singh appreciated the Navy for its efforts towards Atmanirbharta and said that INS Malvan will play a crucial role in maritime security of the country's coastal region. INS Malvan anti-submarine watercraft built by Cochin Shipyard under Atmanirbhar Bharat Mission uses more than 80% indigenous equipment and technology. The three-day meeting of BRICS health ministers has begun in Chandigarh. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness and equitable access to quality health care. Earlier, India successfully hosted the BRICS meeting on traditional, complementary and integrative medicine at Chandigarh yesterday as part of its BRICS 2026 chairship. The meeting brought together senior government officials, technical experts and delegates from BRICS member countries to strengthen multilateral cooperation, promote the exchange of knowledge and best practices and advance collaboration in the field of traditional, complementary and integrative medicine. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on the digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: Delhi Metro Rail Corporation has informed that Janpath, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Central Secretariat and Seva Teerth Metro stations have been closed till further instructions due to security reasons. In a social media post, the Delhi Metro Rail Corporation noted that the interchange facility is available at Rajiv Chowk and Central Secretariat. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Chinese counterpart Wang Yi during the East Asia Summit and ASEAN Regional Forum meetings at Manila in Philippines. In his opening remarks, Dr. Jaishankar emphasized the gradual normalization of India-China relations while stressing that peace along the border remains a fundamental

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 11:10 और 13 सेकंड। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सब रस।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूरमंजरी, जिसमें आप सुनेंगे बलजीत सिंह से तार शहनाई वादन। ये प्रस्तुति राग अलहैया बिलावल पर आधारित है। इसमें रूपक ताल, एक ताल और तीन ताल का सुंदर समन्वय सुनने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी, जिसमें आपने सुना बलजीत सिंह से तार शहनाई वादन। ये प्रस्तुति राग अल्हैया बिलावल पर आधारित थी और इसमें रूपक ताल, एक ताल और तीन ताल का सुंदर समन्वय आपको सुनने को मिला। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही देर में 12 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जान मान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर, साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र ही तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी और की नज़र से हम। जी हाँ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को अनुभूत करने के लिए हमें अपनी सोच, अपने नज़रिए पर भरोसा करना चाहिए, न कि किसी और के नज़रिए या किसी और की सोच पर।

जी हाँ, सांवरिया घर आ। और अभी देखिए ना, जब बात अपने नज़रिए, अपनी सोच और अलग सोच, अलग दृष्टि की होती है, तो बरसात को भी महसूस करने का हर किसी का नज़रिया अलग होता है। और जैसा कि आपने इस गीत में महसूस भी किया होगा, ये गीत गाया था लता मंगेशकर ने फिल्म आशीर्वाद से। और अब बात, जो कि आज 22 जुलाई है, आप सब जानते ही हैं, और दिन विशेष की बात हम अपने कार्यक्रम में करते हैं, तो आज जो 22 जुलाई है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारे तिरंगे को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। 1947 में आज ही के दिन संविधान सभा में एक प्रस्ताव के माध्यम से समान आकार की पट्टियों वाले इस तिरंगे ध्वज को अपनाया गया। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इसके ऊपर केसरिया रंग है सबसे ऊपर, और फिर जो कि बलिदान और साहस का प्रतीक है, बीच में है सफ़ेद जो कि शांति और सत्य का प्रतीक है, और नीचे का हरा रंग है हमारी समृद्धि और विश्वास का रंग। इसके बीच में जो अशोक चक्र है वो धर्म और प्रगति का प्रतीक है। और हमारे इस झंडे को डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे पिंगली वेंकैया एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और भूविज्ञानी थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिज़ाइन करने से पहले उन्होंने 1916 से 1931 तक लगभग 30 देशों के झंडों का गहन अध्ययन किया, और नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नाम से एक पुस्तक भी लिखी। फिर 1921 में विजयवाड़ा के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उन्होंने अपना ये डिज़ाइन रखा, जिसमें गांधी जी के सुझाव पर कुछ संशोधन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाने वाला आज का दिन हमारे स्वाभिमान का दिन है, हमारे लिए गर्व का दिन है, और साथ ही अपने कर्तव्य को समझने का दिन भी है, और है राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, समर्पण और प्रेम की भावना प्रदर्शित करने का भी। तो भाई, ये तो बात हुई हमारे झंडे की, और अब बात वही जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जी हाँ, सवालों का, क्योंकि आजकल हम अपने कार्यक्रम में सवाल कुछ न कुछ सम्मिलित करते हैं, जिस पर आप जवाब देते हैं, तो हम कुछ अपनी कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं। तो आज आपको बताना है कि आपका पसंद, आपको कौन सी बुक या कौन सी किताब पसंद है, पसंदीदा किताब कौन सी है, और जो आपने कभी पढ़ी हो, आपके दिलो दिमाग पर छा सी गई हो, कोई भी कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी या बाल साहित्य, कुछ भी जो आपने बचपन में पढ़ा हो और जिसकी याद आपको आज भी रह गई हो, तो लिख भेजिए। और हमारा पता वही है, fmgold@gmail.com। तो मुझे रहेगा इस पर आपके मेल्स का इंतज़ार।

0: अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से, गायक स्वर था रफ़ी और आशा भोसले का। और इसी के साथ बात अगर की जाए कि हमारा देश त्योहारों का देश है, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाले हमारे देश में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं, और उस राज्य की सांस्कृतिक झलक साफ साफ इन त्यौहारों में देखी जा सकती है। तो आज बात करते हैं मेला शारिका भगवती की, जिसे शारिका जयंती या हर नवमी भी कहा जाता है। ये त्यौहार कश्मीर घाटी के सबसे पुराने त्यौहारों में से एक है, जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। और श्रोताओं, एक बात और मैं बता दूं कि हमारे साथ आपको जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, वो हमारी साथी जुड़ चुकी हैं, रश्मि जी। तो रश्मि जी, आप बताइए आगे की बात क्या है, क्या कहना चाह रही थी आप भी कश्मीर के बारे में कुछ?
1: कुछ कहने से पहले रेनू, तुम्हें, इंद्रप्रस्थ के सभी श्रोताओं को और एफएम गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं देख रही हूँ तुम लेकर जा रही हो कश्मीर।
0: हाँ भाई, बिल्कुल आपकी भी पसंदीदा जगह है तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी देखिए, मैं बात कर रही थी ना कश्मीर के त्योहारों की, तो उसमें एक त्यौहार जो माता शारिका भगवती के जो मेला लगता है, उस बारे में मैं बता दूँ कि माता शारिका कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी यानी कुल देवी कहलाती हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का सम्मिलित रूप है और माता दुर्गा का अवतार भी मानी जाती हैं। उनके जन्मोत्सव के रूप में यहाँ एक मेले का आयोजन होता है। ये मेला श्रीनगर में हरि पर्वत, जिसे कि कश्मीरी भाषा में कोहे मारान कहा जाता है, और ये शारिका पर्वत या शारिका पर्वत भी कहा जाता है, वहीं पर स्थित है शारिका देवी का मंदिर, जहाँ पर ये मेला आयोजित होता है।
1: और रेनू, इस अवसर पर जो माता को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसे ताहिर चरवन कहते हैं। ये हल्दी, तेल, नमक के साथ उबले चावल से बनता है, और ये जो मंदिर है वो डल झील के पश्चिमी भाग में हरि पर्वत की पहाड़ी पर, तुमने अभी बताया था, वो स्थित है। और बहुत सारी सीढ़ियां हैं इस पर चढ़ने के
0: हाँ,
1: लिए।
0: लेकिन देखिए, सीढ़ियाँ चढ़ने का एक फायदा और होता है, मंदिर की पूजा तो जो होती है वो तो होती ही है, साथ में ना वहां से कश्मीर का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है ना, उसके उसका कुछ मुकाबला नहीं है। तो मैं तो कहूंगी कि जो भी श्रोता हमारे जाए वहां पे कश्मीर कभी, तो इस मंदिर के दर्शन तो करेंगे ही, साथ में उनको वो विहंगम दृश्य भी देखने को मिलेगा। और देखिए ना रश्मि जी, कहा जाता है ना कि वैसे भी कश्मीर के बारे में मशहूर है कि अगर फिरदौस वरुए जमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त, यानी कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है।

0: कश्मीर की कली हूँ मैं, जी हाँ, जंगली फिल्म से ये गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए रश्मि जी, जो हमने प्रश्न अपने श्रोताओं से पूछा था तो उन्होंने जवाब देना शुरू भी कर दिया
1: तो
0: है
1: कौन
0: मेल
1: कौन से
0: सा।
1: जवाब आए हैं आपके पास?
0: तो अभी तो जो मेरे हाथ में है ये नवीन भाटिया जी का है, और इन्होंने कहा है कि डायमंड और कॉमिक्स, कॉमिक्स जो
1: डायमंड
0: है,
1: कॉमिक्स इनको
0: हाँ
1: पसंद है।
0: कॉमिक्स इनको बहुत पसंद है भाई। बचपन में तो सब कोई किताबें पढ़ते थे, और बचपन की किताबें अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है।
1: और कह रहे हैं
0: और
1: चाचा चौधरी और साबू की जो
0: हाँ चाचा चौधरी,
1: कॉमिक्स इनको पसंद
0: सही
1: है।
0: बात है,
1: और भाई कॉमिक्स किसको नहीं पसंद, बचपन में तो ये जो शब्द चित्र
0: हाँ
1: जो बनते थे, चित्र बनते थे, चित्र कथाएं थी, इनसे तो हम क्या कहते हैं पढ़ने की शुरुआत करते हैं बच्चे,
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: शुरुआत वहीं से होती है। और यही कॉमिक्स की आदत ना, धीरे धीरे कब आप साहित्यिक उसमें जुड़ जाते हैं
1: पता
0: आपको
1: ही नहीं
0: पता भी नहीं
1: चलता
0: चलता। इसीलिए
1: जी।
0: कहते हैं ना कि माता पिता को हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। और इसके साथ ही देखिए ये महेश अग्रवाल जी हैं, इन्होंने नमस्कार तो भेजा ही है, और साथ में इन्होंने कहा है कि मेरी पसंदीदा किताब जो है वो गीतांजलि और
1: गोरा
0: गोरा रविन्द्रनाथ
1: जी,
0: टैगोर की। भाई बहुत बड़ी अच्छी बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे जो गीतांजलि जिस पर उनकी उन्होंने उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये किताब आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है।
1: और ये
0: और
1: भी कह रहे हैं कि दोस्तों किताबों से मेरा जीवन में बहुत बदलाव आया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बदलते समाज की जो परिभाषा है वो अगर सीखना चाहे तो कोई रविंद्रनाथ टैगोर जी को जरूर पढ़े।

0: ऐसा महेश अग्रवाल जी बहादुर हरियाणा से कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और ये जो किताबों की जो बात कर रहे हैं, ये तो वाकई सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ किताबों में से मानी जाती है, और बिल्कुल सही बात है। और किताबें तो पढ़ने की आदत कैसे भी करके डालनी भी चाहिए। हर किताब आपको कुछ ना कुछ सिखा जाती है, कुछ ना कुछ दे जाती है। और इसी तरह से देखिए, ये डी राजेश्वर राव जी हमारे साथ मेल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने कहा है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस इन्होंने
1: हाँ
0: देखा
1: हाँ
0: है,
1: क्या बात है,
0: हाँ,
1: वाह,
0: और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आज़ाद की इन्होंने बात की है कि इन्होंने उनके बारे में भी पढ़ना, इनको बहुत अच्छा लगता था,
1: वाह
0: इन्होंने
1: वाह
0: पढ़ा है।
1: वाह।
0: तो
1: अगर याद हो रेनू तुम्हें, बचपन में धारावाहिक हम देखा करते थे दूरदर्शन के, तो तृष्णा इस नाम का धारावाहिक बना
0: हाँ,
1: था।
0: उसमें
1: जी
0: तीन बहनों की
1: जी
0: वो
1: उन
0: कहानी
1: बहनों
0: थी।
1: की
0: हाँ
1: कहानी
0: हाँ
1: थी,
0: हाँ
1: और
0: जी जी
1: ये प्राइड एंड प्रेजुडिस पर ही आधारित था, और जो लिखने वाली जेन ऑस्टिन, और बहुत खूबसूरत किताबों में से एक है, ज़रूर पढ़िएगा। इसके
0: बिल्कुल
1: अलावा कोई किताब?
0: बिल्कुल। और अभी के अभी श्रोता और जुड़ेंगे हमारे साथ, तब तक हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं।
1: जी
0: और देखिए, अब एक ज़रूरी बात कि आजकल साइबर फ्रॉड या ठगी की घटनाएं, रश्मि जी, देखिए अक्सर बढ़ती जा रही हैं, देखने को ये समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पीड़ितों को मदद देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दो पोर्टल, MRM यानी कि मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल, और GRM यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म शुरू किया गया है।
1: भाई वाह, किताबों से आप सीधे लेके गई हमें कंप्यूटर की दुनिया में। भाई देखो, MRM जो है, इसमें साइबर धोखाधड़ी से पीड़ितों को उनकी जो ठगी गई रकम है ना, उनके डूबे पैसे, वो बिना किसी लंबी अदालती प्रक्रिया के जो है वापस दिलाने में मदद करता है।
0: बिल्कुल। और देखिए ना, साइबर फ्रॉड के जो इसके शिकार व्यक्ति हैं, सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन में उनको 1930 पर कॉल करना है, या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी है। इससे ठग के जो बैंक खाते हैं ना, वो पैसे जो है फ्रीज हो जाएंगे, और गृह मंत्रालय से आपको एक संदेश प्राप्त होगा।
1: और इसके बाद ये जो MRM पोर्टल पर है, इस पर जाकर आप रेज फंड रिक्वेस्ट, ये विकल्प चुन सकते हैं। अपनी शिकायत और आईडी और पैन कार्ड की सहायता से रिफंड क्लेम कर सकते हैं, सबमिट करें, और ये रिक्वेस्ट जो है वो प्राप्त करने के लिए आपको जाना है। हम वेबसाइट का नाम भी बता देते हैं, MRMNCRP.MHA.gov.in। भाई ये तो बहुत काम की जानकारी है रेनू, क्योंकि आजकल तो भाई किताबें जो नहीं पढ़ते तो फिर वो कंप्यूटर पर कहीं ना कहीं जाते ही है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जो दूसरी एक और हेल्पलाइन या दूसरा पोर्टल जो है, उसके बारे में भी हम बता दें कि आपका बैंक खाता अगर गलती से होल्ड या ब्लॉक कर दिया गया है, तो आप इससे भी राहत पा सकते हैं। GRM यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। GRM पोर्टल से ऐसे बेकसूर खाता धारकों को अपना बैंक खाता अनफ्रीज कराने की सुविधा देता है। तो इसके लिए आपको जाना है NCRP-grievance-redressal.MHA.gov.in पर।
1: हाँ एक
0: तो
1: बार फिर हम बता देते हैं, NCRP-grievances-redressal.MHA.gov.in। तो श्रोताओं सावधान रहिए, जागरूक रहिए, और ज़रूरत पड़ने पर इन सुविधाओं का भी ज़रूर उपयोग कीजिए।

0: पागल मौसम जातू, तू क्या लगा मेरे साथ क्या? वाह कितनी
1: क्या बात है मौसम का लग
0: खूबसूरत
1: रहा है असर हो
0: जी,
1: रहा
0: लता
1: है। और देखिए
0: जी कह रही थी, फिल्म थी अभिनेत्री, और हम तो कहेंगे ये खूबसूरत मौसम बना रहे, बरसात होती रहे, संतुलित बरसात होती रहे, तो हमारा देश भी ऐसी प्रगति करता रहेगा। और हमारा जो सवाल था किताबों से जुड़ा, रेनू और क्या जवाब आए हैं हमारे श्रोताओं के?
1: हाँ, तो देखिए मेरे हाथ में एक मेल है, ये है चरण दास जी का मेल है। ये कह रहे हैं कि मुझे सभी तरह की किताबें पढ़नी पसंद हैं। बचपन में जो किताब ये ज़्यादा पढ़ते थे वो है चाचा चौधरी, मोटू पतलू किताबें पढ़ी हैं, और उपन्यास भी इन्होंने काफ़ी पढ़े हैं। इसमें सरला रानू जैसे मार्मिक उपन्यास भी इन्होंने पढ़े हैं। तो काफ़ी उपन्यास और किताबें का शौक जो इन्होंने शुरू से ही किया, और इनको फिर किताबें पढ़ने का शौक तो भाई जब बचपन से पढ़ा तो फिर
0: मैं
1: आ
0: देख रही
1: ही
0: हूँ
1: गया
0: हमारे
1: होगा।
0: श्रोता जो है वो बहुत सारी जो चित्र कथाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं, बचपन की ये मुझे लग रहा है कहानियां हैं। भाई किसे नहीं पसंद चाचा चौधरी, चंपक, चंपक तो बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं ना बाल बच्चों के लिए, और लोटपोट वगैरह, पंचतंत्र की कहानियां, भाई ये तो जरूरी है पढ़नी, ये तो ऐसी हैं जो चरित्र अगर
1: निर्माण
0: निर्माण में
1: करती हैं,
0: काम
1: और
0: आती हैं
1: देखिए ना
0: जी।
1: बच्चे ना हंसी हंसी में वो जो कहते हैं ना एंजॉय करते हुए मनोरंजन करते हुए कितनी बातें सीख जाते थे, उसे
0: और
1: कुछ
0: अब जो
1: अंदाजा।
0: है वो कह रहे हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से, ये कह रहे हैं ये तो बचपन की किताबें थी। अब मैं जो ज्यादातर जनरल नॉलेज की किताबें

0: पढ़ा करता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, तो किताबों से जुड़े रहिए। और एक और हमारे पास मेल आ गया है, जो आप हैं कामायनी, वो तो कहती हैं कि किताबें तो बहुत सी पढ़ी हैं, पढ़ती रही हूँ, लेकिन 9वीं क्लास में 2 किताबें पढ़ी थी जिन्हें पढ़ने के बाद मैं इतनी इमोशनल हो गई, भावुक हो गई कि हफ्तों लग गए उस भाव से उभरने में। वो कह रही हैं कि पहली जो थी वो तो मुंशी प्रेमचंद की निर्मला, और दूसरी गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की। और मुझे किताबें बहुत पसंद हैं, और आप भी सजेस्ट कीजिए कि कुछ किताबों के बारे में बताइए। कामायनी कह रही हैं, भाई वाह कामायनी, हम समझ सकते हैं, कहते हैं ना चावल का एक दाना पता चल जाता है कि आप किस प्रकार की पाठिका हैं। तो आपकी किताबों की सिलेक्शन बहुत अच्छी है, खूबसूरत किताब है, बढ़िया किताब है, ऐसा उत्तम साहित्य जिसे हम कहते हैं वो है। तो रेणु जी, आप क्या किताब जो है दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बताने जा रही हैं कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए?
1: बिल्कुल, जैसे कि आप इन्होंने कहा ना कामायनी जी ने कि वो गुनाहों का देवता से शुरुआत की थी इन्होंने, तो भाई देखिए वो एक जैसे कहते हैं कि यंग जनरेशन की एक बुक थी, और बहुत भावुक, बहुत ही मार्मिक प्रेम कहानी थी जिसमें एकदम से श्रोता बिल्कुल डूब से गए। धर्मवीर भारती ने बिल्कुल नब्ज को पकड़ा हुआ था उसमें, जैसे कह सकते हैं। तो वो
0: जी
1: किताब तो शुरुआत की थी, तो मैंने भी उसी से शुरुआत की थी, इसलिए मैं मुझे भी याद आ गई। और मैं कहूंगी कि अगर आप साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रेमचंद्र को पढ़ना बिल्कुल ना भूलिए। प्रेमचंद की गोदान, गबन, निर्मला, जैसा कि इन्होंने भी पढ़ा था, तो इस तरह की किताबें शुरू कीजिए। जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, उनकी कमाईनी, आंसू, कविताओं से भी शुरुआत कर सकते
0: जी
1: हैं आप।
0: बिल्कुल
1: और जो उनकी नाटक हैं, नाटक ध्रुव स्वामी वगैरह नाटक अगर आप पढ़ते हैं तो इतना उसका शब्द भंडार, इतना अच्छा शब्द कोश है कि वो बढ़ जाता है, और आप अपने आप कुछ ना कुछ आप शब्द भंडार अपने बढ़ाते ही हैं।
0: और अगर हम आधुनिक साहित्य की तरफ आते हैं तो आधुनिक साहित्य में आजकल बहुत अच्छी अच्छी किताबें, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख रही हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ बहुत अच्छी कहानियाँ और उपन्यास लिखती रही हैं। हमारे अपने आकाशवाणी के बहुत लेखक लेखिकाएं हैं जो बहुत प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाएं हैं। और जो यात्रा वृत्तांत हैं वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनके ज़रिए आप देख पाएंगे कि लेखक लेखिका के नज़रिए से, जैसे मनीषा जी की किताब है कि होना यात्री कैलाश का, जब वो कैलाश मानसरोवर जब गई थी, तो ये यात्रा वृत्तांत है, आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। आगे चलें रेनू।
1: बिल्कुल, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ कला और संस्कृति की बात भी कर ली
0: जी
1: जाए,
0: जी
1: साहित्य की
0: बिल्कुल
1: बात तो हो ही रही है। तो बात करते हैं बिहार के गया जिले की, जिसके लगभग 300 साल पुरानी पत्थरकट्टी शिल्प कला को अभी हाल ही में GI टैग मिला है।
0: वाह
1: और पत्थरकट्टी की शिल्प परंपरा का इतिहास बहुत गौरवशाली है। माना जाता है कि गया जी के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण के दौरान रानी अहिल्याबाई होलकर ने जयपुर से करीब 300 शिल्पकार के परिवारों को यहाँ बुलाया था। मंदिर निर्माण के बाद कई परिवार यहीं बस गए और पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखते रहे।
0: और गया जिले के पत्थरकट्टी गांव को, जो ये पत्थर शिल्प है ना रेनू, आज अपने उत्कृष्टता के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये गांव। और यहाँ के जो कारीगर हैं वो काले ग्रेनाइट पत्थरों से भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, देवी देवताओं और अन्य कलात्मक प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। और जो काला पत्थर होता है, ग्रेनाइट यानी, ये बहुत ही मजबूत पत्थर होता है रेणु। कल्पना करो कि इसको छीलना यानी कि उसको जो आकार देना कितना कठिन
1: कितना
0: कार्य है,
1: कठिन हो, कितनी तन्मयता लगती होगी, कितनी
0: तन्मयता।
1: मेहनत
0: जी
1: लगती है,
0: जी
1: और लेकिन ये
0: बिल्कुल
1: कलाकार अपने जज्बे से इस काम को कर सकते हैं,
0: भाई, एक
1: कर
0: देखिए ना
1: गुजरते
0: इस
1: हैं।
0: हस्तकला में कलाकार छेनी और हथौड़ी से जो है वो ऐसा घर्षण करता है उस पत्थर का कि वो आकार ले लेती है, और कई बार उसमें तो हम कहेंगे भाव भी प्रकट हो जाते
1: बिल्कुल, तो ये
0: हैं।
1: वाली बात जो है ना कि
0: जी
1: पाषाण हृदय, ये चीज नहीं, इस लागू नहीं होती है, क्योंकि पाषाण को भी तराश करके उसमें जीवंतता या बिल्कुल जीवन उसमें डाला जा
0: और ये
1: सकता
0: काम करते हैं
1: है।
0: पत्थर चट्टी के कट्टी के गांव के जो शिल्पकार हैं वो
1: बिल्कुल,
0: करते
1: और आप
0: हैं।
1: देखिए ना, जिनको GI टैग जब मिल गया है तो वैश्विक स्तर पर इस कला की और पहचान बढ़ेगी और स्थानीय शिल्पकारों को के आय में वृद्धि भी होगी।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने, आवाज़ महेंद्र कपूर आशा भोसले की। और देखिए रश्मि जी, बात किताबों की चल रही है, हमारे श्रोता तो अपने पसंद के बारे में बता ही रहे हैं हमें, तो कुछ और किताबें जो मुझे याद आ रही हैं, मैं सोच रही हूँ उसके बारे में भी दर्शकों श्रोताओं को बताया जाए। तो जैसे राग दरबारी की बात मैं अगर करूँ, श्री लाल शुक्ल की ये किताब जो है वो मैं रिकमेंड करूँगी कि पढ़ना चाहिए इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है एक सामाजिक और राजनीतिक जो व्यंग के माध्यम से उन्होंने जो बातें कही हैं वो हिंदी साहित्य के इसीलिए सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में इसकी गिनती होती है। और स्वतंत्रता के बाद जो ग्रामीण जीवन था उसकी व्यवस्था पर इन्होंने अपने स्टाइल में, अपनी शैली में बहुत अच्छे शब्दों के माध्यम से बात रखी है। तो एक किताब ये है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की, और दूसरी मैला आंचल
1: जी
0: फणीश्वर नाथ रेणु की। और फणीश्वर नाथ रेणु जैसा कि आंचलिक उपन्यासकार और लेखक माने ही जाते हैं, हम सबको पता ही है। और इनकी ये मैला आंचल जो किताब है वो एक उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश पर आधारित है, और मेरीगंज गांव के जीवन की संस्कृति और समस्याओं का जीवंत चित्रण उसमें इन्होंने किया है। और फणीश्वर नाथ रेणु की जो याद आई मुझे, एक कहानी उनकी मारे गए गुलफाम पढ़ी होगी आपने, उसमें एक फिल्म भी बनी थी ना, तीसरी कसम।
1: बिल्कुल
0: हाँ, तो
1: जी, सही कह रहे हैं आप।
0: वो जो है
1: देखिए,
0: वो
1: जो
0: किताब,
1: साहित्य है ना, वो तो हम कहेंगे उर्वर भूमि है फिल्म की, रचनाओं की, कहानियों की। और अगर मैं कहूँ तो मैंने बचपन से ही शरद साहित्य पे प्रति बहुत आकर्षण महसूस किया है। शरद चंद्र की जो कहानियाँ हैं, जो उनके उपन्यास हैं, वो तो जो है ना अप्रतिम है। उसमें जीवन की बहुत सारी सीख है, जीवन जीने के तरीके हैं, उसमें गलतियाँ भी हैं, उसमें माफियाँ भी हैं। और अगर एक बार आप उन किताबों से जुड़ जाए ना, तो वो इतनी आसान है पढ़ने में रेनू,
0: सही बात है।
1: जो उनसे जुड़ा तो मुझे नहीं लगता कि कभी छूट पाया उनसे, है ना,
0: बिल्कुल,
1: जो उतरा वो
0: एक बार
1: डूब
0: डूब गया
1: गया।
0: क्योंकि एक बार जब जुड़ाव हो जाता है तो
1: जी
0: फिर वो जैसे कहते हैं ना, कुछ मिसिंग सा लगता है। लगता है कि अगर कुछ किताब पढ़ने के जो लोग आदी लोग हैं उनसे आप पूछिए, तो अगर उन्होंने 15 दिन या 1 महीना कोई किताब नहीं पढ़ी तो उन्हें लगता है कुछ कुछ खोया खोया सा है, कुछ अपना सा उन्होंने नहीं किया, कुछ अपने साथ उन्होंने वक्त नहीं बिताया। और किताबों के साथ देखिए रश्मि जी, कितनी आसान चीज़ है कि डिजिटली उन्हें जैसे चार्ज की जरूरत होती है या कहीं पे मतलब आप ले जाते हैं तो उसके लिए सोचना पड़ता है, लेकिन किताबें तो आप कहीं भी ले जाइए।

0: उसके लिए कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, बिजली हो ना हो, कैसी भी दिन में कहीं भी आप साथ में
1: और
0: ले
1: हम
0: जाइए,
1: अभी तो
0: पढ़िए।
1: हम ये बात कर रहे हैं जो जो काल्पनिक कथाएं हैं, काल्पनिक उपन्यास की, भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय वेदांत से जो जुड़ी किताबें हैं वो तो हमारी संस्कृति की धरोहर हैं, जो ग्रंथ हैं यहाँ के। अब देखिए मानस है तुलसी की,
0: जी,
1: जो वो तो जिसे कहते हैं ना जीवन जीने की प्रेरणा, किस प्रकार जीवन जिया जाता है, किस प्रकार परेशानियों का सामना सत्य और के साथ किया जाता है, तो रामचरितमानस यही तो हमें सिखाता है।
0: बिल्कुल यही सिखाता है कितना जीवन जो है
1: इसीलिए घर घर में
0: घर
1: अभी
0: घर
1: भी
0: में
1: पढ़ा
0: है। और
1: जाता है।
0: हाँ
1: जी
0: बिल्कुल, श्रद्धा के साथ भी रखते हैं लोग
1: जी
0: उसको, पढ़ते भी हैं, गुनते भी हैं।
1: जी
0: तो बिल्कुल, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात अब कुछ अखबारों की भी कर ली जाए,
1: हाँ, यानी कि आप किताबों से अखबारों की
0: क्योंकि
1: तरफ
0: बिल्कुल
1: ही ले
0: पढ़ने की बात है
1: जाएंगे।
0: तो हो सकती है। और देखिए ना, एक दिलचस्प बात है कि समाचार पत्र के बारे में कभी आपने गौर किया है कि वो इतने बड़े पेजेस पे क्यों छापे जाते
1: और
0: हैं?
1: सच बताऊँ, जितने बड़े पेजेस होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार इन्हें।
0: अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं, और देखिए कई लोगों को पसंद है ये बात। लेकिन पता है इसके पीछे ना, इसकी वजह कोई पत्रकारिता से जुड़ा हुआ नियम नहीं है, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत का एक कानून था, जिसकी वजह से 1712 में ब्रिटेन सरकार ने इसको एक स्टैंप ड्यूटी लगाई थी, जिससे कि जो है वो टैक्स वसूला जाता था। इसलिए इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी, बड़े पेजेस की।
1: जी,
0: और
1: तो
0: बात,
1: इसीलिए बड़े आकार के कागज
0: हाँ, और
1: इस्तेमाल किए
0: देखिए
1: जाने
0: इसके कई
1: लगे।
0: फायदे भी हैं,
1: जी
0: जैसे कि अगर आप बड़े पेजेस पे जब पेपर छपता है ना, तो उस पे जो है बड़े कागजों के उपयोग से मुद्रण और वितरण की लागत कम आती है। ब्रॉडशीट आकार का संपादकों को एक पृष्ठ का महत्वपूर्ण हेडलाइन, विस्तृत लेख और तस्वीरों के साथ दिखाने की सुविधा देता है।
1: और रेनू, सबसे बड़ी बात ये है भाई, देखो जो बड़े विज्ञापन आते हैं ना वो छापने के लिए भी अधिक जगह मिलती है, जो अखबारों की आय का मुख्य स्रोत है, और बड़े कागज़ की जो एक बड़ी शीट है उस पर छपाई करने से जो फोल्डिंग और बाइंडिंग का जो खर्चा है वो भी बचता है। तो हम तो ये कहेंगे कि बड़े आकार को पारंपरिक रूप से गंभीर या विस्तृत पत्रकारिता का प्रतीक माना जाता है, और यहाँ पर एक ही पृष्ठ पर कई महत्वपूर्ण खबरें एक साथ देखी जा सकती है। तो हम देख रहे हैं रेणु, आज आप हमारे श्रोताओं को जो है वो किताबों में और पन्नों में, कागजों में, मतलब क्या चाह रही हैं।
0: बस यही कहेंगे कि देखिए, डिजिटल दुनिया में तो आप हैं ही, आप किताबों से भी जुड़े थे, बस याद करने की जरूरत है कि
1: याद
0: भाई
1: करने की
0: इसके पहले
1: जरूरत।
0: वही किताबें ही दुनिया हुआ करती थी।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, बाद
1: लेकिन
0: में
1: अभी आप तड़पाओ मत, अभी तो आप गीत सुना
0: बिल्कुल, तो
1: दो।
0: ये गीत आपके लिए।

0: जी। और रेनू, बहुत सारी और हमारे पास ईमेल्स आ गई हैं भाई, बहुत श्रोता बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं। आप हैं उमेश कुमार ख्याला से, आपको भाई बचपन में ले जा रहे हैं वापस, चंपक पढ़ते रहे हैं। और शीशवाल वर्धन जी कह रहे हैं कि मुझे जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, ठाकुर का कुआं पढ़ी थी जो मेरे दिल पर बहुत छाप छोड़ गई। आप हैं गाजियाबाद से शीशवाल अकेला जी। इसके अलावा उग्रसेन यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रेनू, वो कह रहे हैं नमस्कार, और कह रहे हैं कि भाई मुझे शरद साहित्य बहुत पसंद है और छोटी छोटी जो कहानियाँ होती है ना वो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी भी बहुत अच्छी किताब थी। तो भाई ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए उग्रसेन यादव जी। और इसके अलावा जो है रिनु, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कामायनी के बारे में कहा है तो महाकाव्य की श्रेणी में उसको गिना जाता है, तो बिल्कुल ज़रूर पढ़िए। और साथ ही मैं कुछ आधुनिक जो हमारी लेखिकाएं हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा लिखा है। जैसे अभी इस समय दो किताबें मुझे याद आ रही हैं, चितकोबरा है मृदुला गर्ग की लिखी हुई, और इसके साथ ही गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की, तो ये
0: जी
1: स्त्री विमर्श को जन्म देती हुई बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं इसमें,
0: जी इस
1: तो
0: समय
1: इसको
0: जो
1: ज़रूर
0: स्त्री,
1: पढ़िए।
0: जो ममता कालिया हैं और बहुत सारी जो हमारी लेखिकाएं हैं, अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। गीता श्री बहुत अच्छी
1: जी
0: कहानियां लिख
1: बिल्कुल
0: रही हैं।
1: बिल्कुल, बातें तो रश्मि जी होती रहेंगी,
0: तो
1: लेकिन
0: हम विदा कह
1: अब
0: देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो मुझे यानी रेणु को दीजिए और
0: जी रेणु जी, आप और रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति। अनुमति
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: घर आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay.

है और अब प्रस्तुत है आपका मनपसंदीता सेगमेंट एक ही फिल्म से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम को, और आज की जो फिल्म है दोस्तों, वो एक हिंदी सिनेमा की एक बेहद लोकप्रिय पारिवारिक और भावनात्मक फिल्म है। सन 1969 में वो फिल्म आराधना और दो रास्ते के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ फिल्म एक फूल दो माली की। करेंगे इसके बारे में ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इस फिल्म के गीतों को। इस फिल्म के गीतों को भी लोगों ने बेहद सराहा है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज जो हमारी फिल्म है वो है एक फूल दो माली। ये फिल्म प्रेम, त्याग, मातृत्व और पितृत्व की भावनाओं पर आधारित है। कहानी एक ऐसे बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी परवरिश करने वाले और उसके जैविक पिता दोनों उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसी कारण फिल्म का शीर्षक एक फूल दो माली रखा गया। यानी एक फूल यानी वो बच्चा और उसकी देखभाल करने वाले दो माली। तो श्रोताओ, सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत। और जो ये अगला गीत है वो एक ऐसा गीत है जो एक पिता के अपने बच्चे के प्रति स्नेह, गर्व और ममता को बहुत ही सरल और भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त करता है। अगर उनकी पंक्ति, जो कि उनकी पंक्ति है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, जी हाँ, हम इसी गीत के बारे में बात कर रहे हैं। ये पंक्ति इस बात का प्रतीक है कि बच्चे की तुलना किसी एक सुंदर या मूल्यवान वस्तु से करना भी कम पड़ जाता है। मन्ना डे की भावपूर्ण गायकी जिसने गीत को अमर बना दिया, मधुर और सहज धुन जो आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। तो आइए सुनते हैं यह गीत मन्ना डे की आवाज़ में।

श्रोताओं, अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो सोमना एक गरीब औरत है जो अपनी विधवा माँ लीला के साथ भारत और नेपाल की पहाड़ी इलाके में रहती है। वहीं अमीर विधुर कैलाश नाथ कौशल के सेब के खेत में काम करके गुजारा करती है। कौशल एक माउंटेनियरिंग स्कूल भी चलाते हैं जहां अमर कुमार उनके स्टूडेंट में से एक हैं। अमर के क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन से लौटने के कुछ समय बाद ही सोमना और अमर मिलते हैं और वे प्रेम में पड़ जाते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्हें खबर मिलती है कि अमर और दूसरे क्लाइंबर मारे गए हैं। सोमना के साथ शमशेर सिंह छेड़छाड़ करते हैं। जब कैलाश को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है तो वह उसे बचाने आता है और उसे शादी करने का ऑफर देता है। उनकी शादी हो जाती है और सोमना एक लड़के बॉबी को जन्म देती है। शमशेर को गिरफ्तार कर 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। कैलाश जो एक एक्सीडेंट के बाद बच्चे ना होने के कारण से उन्होंने वो पिता बनकर ही खुश हो जाते हैं, बॉबी के पिता। जी हाँ, वे बॉबी से बहुत प्यार करते हैं और उसे अलग नहीं हो सकते। 5 साल बाद बॉबी का 6वां जन्मदिन मना रहे सोमना और कैलाश को तब झटका लगता है जब पार्टी में अमर आ जाता है।

बॉबी अपने पिता कैलाश से प्यार करता है, लेकिन अपने असली पिता अमर के करीब आने से खुद को रोक नहीं पाता, जिससे सोमना और कैलाश बहुत परेशान होते हैं। सोमना बॉबी को अमर से मिलने से मना करती है, लेकिन कैलाश उसका साथ देता है और सोमना से कहता है कि वह बॉबी को खुश देखना चाहता है। सोमना अमर से पूछती है और मानती है कि वह नहीं चाहती कि वह उससे मिलने आए। अमर इससे परेशान हो जाता है और बॉबी से मिलना बंद करने की कसम खाता है। कैलाश के साथ घूमते समय बॉबी अमर को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से वह डायनामाइट जोन में फंस जाता है और इस चक्कर में खुद को घायल कर देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत गंभीर है, क्योंकि उसका बहुत खून बह गया। कैलाश खून देने की पेशकश करता है, लेकिन उसका खून का टाइप मैच नहीं करता। फिर अमर अपना खून देता है, जिससे बॉबी की जान बच जाती है। कैलाश खुश है कि बॉबी जिंदा है, लेकिन अमर के उसे ले जाने के डर से वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। अमर को सारी बातें समझ में आती है और उसे पता चलता है कि बॉबी सच में उसका बेटा है। जैसा कैलाश को डर था, वह बॉबी के बेहोश होने पर उसे ले जाना आता है। सोमना उसे रोकती है और वह समझाती है कि बॉबी ना तो उसका बेटा है और ना ही उसका, बल्कि कैलाश का बेटा है। वह उसे समझाती है उसने सच जानने के बावजूद उससे शादी करके उसकी इज्जत बचाई और वह बॉबी को किसी और से ज़्यादा प्यार करता था, उसे अपनी बेटी की तरह पाला। कैलाश चुपके से पूरी बात सुन लेता है। अमर इससे दुखी होकर अपने किए पर पछताता है और कैलाश को बॉबी रखने देने का फैसला करता है और उसे हमेशा के लिए छोड़ जाता है।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: श्रोताओ, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, तो चलिए पहले उन संदेशों को पढ़ ले। हमारे पास जो पहला संदेश आया है वो आया है सुदर्शन शाह का, और मध्य प्रदेश, नेपा नगर मध्य प्रदेश से। और इनके साथ हैं प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और पल्लवी शाह। अगला जो संदेश है वो है नितेश दिवांगन का, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद दिवांगन, पराग टेलर, पूना राम दिवांगन, कृष्ण दिवांगन, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है वो है स्वर्ण सिंह का, और इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। अगला जो संदेश है वो है सोमदत्त, नावा जिला पटियाला पंजाब से, इनके साथ है कैरव ज्योति रानी, गुरमंद कौर मनु। अगला संदेश है सतीश अनेजा का, और इनके साथ है बिमला अनेजा। अगला संदेश है कमलकांत गुप्ता का, और इनके साथ है श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता पिपरिया से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। अजीत भावसर का संदेश आया है, इनके साथ है विरमगान गुजरात से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं प्रमिला भावसर, अजीत भावेश भावसार, और वो हमारे संदेश को सुन रहे हैं। अगला संदेश जो है वो सुभाष जी का आया है, इनके साथ है बिमला गोदारा, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव हीरा वाली फजल का पंजाब से, और इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा, और ये भी हमें लिखकर भेज रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र चीपा का अगला संदेश आया है, इनके साथ है कपिल चीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। इन्होंने लिखा है कि आप आज चर्चा कर रहे हैं फिल्म जगत की बेहतरीन फिल्म एक फूल दो माली की, इन फिल्मों के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं और रोचक किस्से नगमे भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरामणि वर्मा का अगला संदेश है, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश जो है वो है डोलराना, और इनके ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नेहरू विहार दिल्ली से। सुरेश यादव हमें संदेश भेज रहे हैं, और इनके साथ है अरी यादव, सोनल प्रसाद यादव, नेहरू चौक से, वो हमें लिखकर भेज रहे हैं भंवरपुर छत्तीसगढ़ से। राधेश्याम दिवांगन और चंपा दिवांगन हमें लिखकर भेज रहे हैं। आर कुमार का संदेश है वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अगला संदेश जो है वो है कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, आदिब और परिवार वाले कोई भी गीत में शामिल करें। और जो अगला संदेश है वो नरेंद्र का आया है, और ये हमें लिखकर भेजा है राजस्थान से। प्रकाश वर्मा जी ने हमें अगला संदेश भेजा है छत्तीसगढ़ पलारी से, इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और

0: श्रोताओं, अगला संदेश है धर्मेंद्र छीपा का, इनके साथ है कपिल छीपा, पूजा परिहार, और अगला संदेश है वो रामलाल चंद्रवंशी जी का है, और इनके साथ है श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं आकली दीवान मध्य प्रदेश से। अगला जो है वो संदेश है संदीप मक्कर का, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुराया, जालंधर से। फारूक अली खान ने मैसेज भेजे, इनके साथ है पूरा पासी परिवार, स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, सिंह गुरलाल सिंह, अविराज सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं, सुधाकर यादव, और इनके साथ है डॉक्टर प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित भायाल, और साथ ही है सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी, कुमारी कल्पना। अग्रज संदेश है संजय ढींगिया जी का है, और इनके साथ है नमन ढींगिया, पार ढींगिया, जो हमें लिखकर भेज रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। सुदर्शन मुखी है, इनके साथ अनिता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से। अगला संदेश है राजकुमार डूडी का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गाँव फरानसी जिला हिसार से। अगला संदेश है रोजी डिकॉस्ट्रा का, और इनके साथ है जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। अगला संदेश है पीएस नाहकर का, और इनके साथ है निर्मला विशाल, और यह हमें लेकर भेजा है नरवेल महाराष्ट्र से। अगला संदेश है शक मोहम्मद का, और इनके साथ है खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, मिलोफर फातिमा, ये हमें लिखकर भेजा है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। अगला संदेश है गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, शालीमार बाग, अशोक कुमार सहकर। और जो अगला संदेश है वो है लालगिरी जी का, और ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश है मोहम्मद कमर जी का। श्रोताओं, हो सकता हो कि इस कार्यक्रम में हम आपके नाम नहीं ले पाए, लेकिन हम सभी के संदेशों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, और आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। श्रोताओं, कल फिर हाजिर होंगे ये कार्यक्रम लेकर ठीक 1:10 पर। तब तक के लिए मुझे यानी आपकी दोस्त और होस्ट को दीक्षा को विदा दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। दिन के 1:40 होने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। संसद दे दोवां सदनां दी कारवाई, नीट परीक्षा पेपर लीक समेत वक् वक् मुद्दयां ते विरोधी धिर दे विरोध प्रदर्शनां तों बाद दुपहर 2 बजे तक मुलतवी कीती गई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अज फिलीपींस दे मनीला च होई क्वाड विदेश मंत्रियां दी मीटिंग च हिस्सा लिया। भारत, जापान, आस्ट्रेलिया ते अमरीका ने एक आजाद ते खुले हिंद प्रशांत खेतर नूं मजबूत करन बारे अपनी वचनबद्धता जाहिर कीती। भारतीय जल सेना वल्लों कर्नाटक के कारवार च पनडुब्बी विरोधी समुद्री जंगी जहाज आई एन एस मालवन

0: सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले दो दिन के दौरान गुजरात, पश्चिम महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के अल्बी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर अफशा होने समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज की वजह से दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब पहले इल्तवा के बाद दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन मेंबरों ने पेपर अफशा होने के मामले पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन मेंबरों से ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलाने के लिए तआवुन करने को कहा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर के मामले पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तलबा के एहतजाज करने का मामला उठाया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर बहस के लिए तैयार है और हर एक को मिलजुल कर बहस का वक्त तय करने के लिए आगे आना चाहिए। बीजेपी ने आज कहा कि मरकज तलबा के साथ है और मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज उसकी आला तरीन तरजीह है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट मांसूरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़्यादत वाली बीजेपी सरकार ने विकसित भारत को मुस्तहकम करने के लिए नौजवानों की क़्यादत पर मबनी तरक्की का मंत्र रखा है। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि नीट का दोबारा इम्तिहान महज 37 दिन में कराया गया और 25 दिन के अंदर नतीजों का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की और पेपर लीक के 13 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और अब ये सब जेल के अंदर हैं। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि मुलजिमों को जल्द से जल्द सख्त सज़ा दी जाएगी। एहतजाज के बारे में बात करते हुए बीजेपी की एमपी ने कहा कि हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, पुरमन एहतजाज की इजाज़त दी और बातचीत के दरवाजे खुले रखे। बीजेपी ने कल वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के दरवाजे के बाहर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के किसी इजाज़त के बगैर धरना देने की मजम्मत की है और इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। नई दिल्ली में नामानिकारों से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की जमहूरियत की तारीख में ये एक शर्मनाक दिन था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह की अजमत और वक़ार को जानते हुए जनाब गांधी ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहिरा किया। भारती बहरिया ने आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर INS मालवन को अपने कामकाज में शामिल किया। ये माहे तर्ज का दूसरा आबदोज शिकन जंगी जहाज़ है। मुल्क में ही जंगी जहाज़ तैयार करने की भारत की सलाहियतों के सिलसिले में ये एक अहम कामयाबी है। फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह इस तकरीब में मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सिलसिले में बहरिया की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि INS मालवन मुल्क के साहिली खित्ते की बहरी सलामती में एक अहम किरदार अदा करेगा।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में कोर्ट वज़राए खारिजा की मीटिंग में शिरकत की है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक मुश्तरका बयान में भारत बहरुल काहिल को खुला और आज़ादाना रखने के अपने अज़्म और इसे मुस्तहकम करने का तहिया किया है। इन मुल्कों ने आसियान तंजीम के इत्तेहाद और उसकी मरकजी हैसियत की भी पुरजोर हिमायत की है। मीटिंग के दौरान इन मुल्कों ने आसियान के पस मंज़र की हिमायत में इलाकाई चैलेंजों और मौक़ों पर भी तवज्जो मरकूज़ की। मीटिंग में इक्तिसादी खुशहाली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी के हालात से निमटने के तौर तरीकों पर ख़ास तौर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने बहरी

0: सिक्योरिटी पर भी गौरव खौज किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से भी गुफ्तगू की। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान ऐसे शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई जो भारत अमेरिका जामे आलमी कलीदी शराकतदारी के लिए तरजीही शोबे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलिपाइन के शहर मनीला में मशरक़ी एशिया चोटी मीटिंग और आसियान इलाकाई फोरम के इजलास के दौरान चीन के वजीर खारजा वांग यी से बातचीत की है। अपने इफ्तिताहिया कलिमात में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बतदरीज मामूल पर लाने की ज़रूरत को उजागर किया और साथ ही ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बाहमी तआवुन और इश्तराक के लिए सरहदों पर अमन सुकून का होना एक बुनियादी शर्त है। वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि दोनों मुल्कों को यकीन है कि बाहमी एतमाद और बाहमी मफादात की बुनियाद पर ही तआवुन पर मबनी और पायदार ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। ब्रिक्स 2026 की सदारत के एक हिस्से के तौर पर भारत ने कल चंडीगढ़ में रिवायती कॉम्प्लीमेंट्री और इंटीग्रेटिव मेडिसिन से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों की मीटिंग की मेज़बानी की। ये मीटिंग सेहत से मुतालिक ब्रिक्स मुल्कों के उस चार रोज़ा प्रोग्राम का एक हिस्सा थी जिसका अहतमाम सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत और आयुष की वजारत ने मुश्तरक तौर पर किया। मीटिंग से सबूतों पर मबनी अद्वियात के रिवायती निज़ाम को फ़रोग देने, इदारा जाती साझेदारी को मुस्तहकम करने और अफसान सेहत के पायदार और मुस्तहकम निज़ाम में तआवुन देने के सिलसिले में ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान इश्तराक में इजाफा करने में मदद मिली। आसाम के 16 ज़िलों में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। खबरों में कहा गया है कि पूरी रियासत में 872 गांव सैलाब से मुतासिर हुए हैं जिसका असर 5,64,000 से ज़्यादा अफराद पर पड़ा है। 24 हेक्टेयर से ज़्यादा इलाके में खड़ी फसल को नुकसान पहुँचा और वहाँ पानी भर गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक अगले 3 दिन के दौरान जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में तेज़ से बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। सिक्किम के नामची ज़िले में समरदुंग के मकाम पर ज़ेरे तामीर सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव और तलाश की कार्रवाइयां आज तीसरे दिन भी जारी हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं और सुरंग के अंदर 13 अफराद के फंसे होने का अंदेशा है। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं। वो इंडोनेशिया के अलवी फरहान को 21-17, 5-21, 21-17 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। नीट पेपर इफ्शा होने के मामले पर पार्लियामेंट में तातुल जारी है। सरकार के बहस के लिए तैयार होने के बावजूद दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के शोरोहुल की वजह से मुलतवी करनी पड़ी। आबदोज शिकन INS मालवन को भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है जिससे बहरी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा ने मनीला में अपनी मीटिंग में भारत बहरुल काहिल को आज़ादाना और खुला बनाए रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। आसाम में मरने वालों की तादाद बढ़कर 31 हो गई है। मुख्तलिफ अज़ला में सैलाब की सूरत हाल संगीन बताई जाती है। भारत के मौसमियात महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Stalemate continues in Parliament over NEET paper leak case as opposition disrupts the proceedings despite government agreeing for discussion. Indian Navy inducts INS Malvan, second anti-submarine warfare ship to strengthen maritime security. Quad foreign ministers reaffirm commitment to free, open and inclusive Indo-Pacific, hold meeting at Manila in Philippines. Death toll rises to 31 as flood situation.

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल,

0: पांच विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ओपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने लाखड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया,

0: लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
3: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस,
0: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक

0: रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार 4th दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम इतिहास में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी अधिक दिल के करीब आ जाती है। ऐसी ही एक आवाज़ है मुकेश साहब की। जब मुकेश गाते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे कोई अपने दिल की बात कह रहा हो। उनकी गायकी में कोई बनावट नहीं थी बल्कि सच्चाई थी। यही उनकी सबसे बड़ी

पहचान बने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म है तीसरी मंजिल, तीसरी कसम।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जो आज केंद्रित है मुकेश साहब पर, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। बाकी के नगमे इस अंतराल के बाद।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर

बचपन से ही संगीत के शौकीन थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल ने एक पारिवारिक समारोह में उन्हें गाते सुना। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर वे मुकेश को मुंबई ले आए और यहीं से शुरू हुआ भारतीय फिल्म संगीत का एक सुनहरा अध्याय।

मुकेश ने लगभग 1300 से अधिक फिल्मी गीत गाए। उन्होंने केवल राज कपूर के लिए ही नहीं बल्कि मनोज कुमार, सुनील दत्त, फिरोज खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और कई अन्य कलाकारों के लिए भी अपनी आवाज दी। तो आइए अब सुनते हैं श्री 420 का ये गीत।

दोस्तों, इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। इन्हें 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने कई बार यूं ही देखा है के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। 1960 में फिल्म अनाड़ी के गीत सब कुछ सीखा हमने के लिए, 1971 में फिल्म पहचान के गीत सबसे बड़ा नादान वही है के लिए, और 1973 में फिल्म बेईमान के गाने जय बोलो बेईमान के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। 1977 की फिल्म कभी कभी के लिए इन्हें, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के लिए इन्हें मरणोपरांत फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा

दोस्तों 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में एक स्टेज शो के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा और संगीत की ये अमर आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके निधन की खबर सुनकर राज कपूर की आंखें भर आई और उन्होंने भावुक होकर कहा था, मैंने अपनी आवाज़ खो दी। लेकिन कलाकार कभी विदा नहीं होते, वे अपनी कला में हमेशा जीवित रहते हैं।

दोस्तों, बहुत से श्रोता मेल के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनके भी नाम पढ़ लेते हैं। बठिंडा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। विरमगाम गुजरात से प्रमिला भवसार, भवेश कुमार भवसार। अगला मैसेज आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु रिधान खुराना का। अगला मैसेज आया है चिरमिरा कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, इन्होंने हमें मैसेज किया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। नाभा ज़िला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर मनु, इन्होंने भी हमें मैसेज किया है। अगला मैसेज आया है अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, और इन्होंने हमें मैसेज किया है, ये दिख नहीं रहा है कहाँ से मैसेज इन्होंने किया है हमें, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन ने भी हमें मैसेज किया है पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला मैसेज आया है मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज़ और बेबी चाहत का। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखन लाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन ने हमें मैसेज किया है पहादा पलारी छत्तीसगढ़ से। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या खुराना, आरव खुराना, मेघा, आशीष, अनुज, छोटू और एसके पप्पी।

इस गीत के साथ ही एक ही कलाकार कार्यक्रम का समय संपन्न होता है। मीना चौहान को आज्ञा दीजिए, नमस्कार। लेकिन दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ठीक 3 बजे शुरू हो रहा है हमारा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, जिसमें हम आपको सुनाते हैं गोल्डन एरास के गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। मैटिनी मेलोडीज कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज मैं हूँ आपके साथ मीना चौहान और रहूँगी इस कार्यक्रम में आपके साथ। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म दो बदन के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने।

दोस्तों 60 और 70 का दशक भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग माना जाता है। यही वो समय था जब शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मसरूर सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी और गुलजार जैसे गीतकार शब्दों में जादू भर रहे थे। सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी और नौशाद जैसे संगीतकार सुरों को अमर बना रहे थे। वहीं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, मन्ना डे और आशा भोसले जैसी महान आवाज़ें हर दिल की धड़कन बन चुकी थी। तो चलिए सुनते हैं फिल्म

0: पवन में, दिल से मेरे लहरे उठे ठंडे पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया दौर से, जो रिलीज हुई थी 1957 में। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे बी.आर. चोपड़ा। फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंती माला, अजीत और जीवन मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म मशीनों के बढ़ते प्रभाव और इंसानी मेहनत के संघर्ष की कहानी पर आधारित थी और उस दौर की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को।

दोस्तों आइए अब सुनते हैं फिल्म अप्रैल फूल का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने। संगीतकार है शंकर जयकिशन और गीतकार हसरत जयपुरी। दोस्तों ये गीत 1960 के दशक के सबसे मधुर और लोकप्रिय रोमांटिक युगलों में से गिना जाता है। गीत का मुखड़ा कह दो जहां से कह दो प्रेम की उसी सच्चाई को व्यक्त करता है कि प्यार किसी के आदेश या रोक टोक से नहीं रुकता है। तो चलिए सुनते हैं ये मधुर गीत।

श्रोताओं, बहुत से दोस्त हमारे साथ मेल पर जुड़ चुके हैं। आइए इन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से श्रोता मेल ने हमें मेल भेजी है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, इन्होंने हमें मेल किया है शांति नगर सोनीपत से। और अगला जो मेल आया है वो है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और अगला जो मेल आया है वो भी इन्हीं का आया है। और इससे अगला जो मेल हमें भेजा है वो मोहम्मद कमर ने हमें भेजा है, और आदिल कमर गुन्नौर से भी इन्होंने हमें मैसेज किया है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और हर्षित ने हमें मेल किया है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। और अगला मैसेज जो हमें किया है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो ने। अगला मैसेज आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप गिल, गुरनूर गिल, गुरलाल गिल सिंह और अविराज सिंह का। अगला मैसेज आया है जी, इन्होंने लिखा है कि एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज प्रसिद्ध गायक मुकेश

जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है मुकेश। ये मैसेज हमें भेजा है तरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा ने। और अगला जो मैसेज आया है वो फिर से रिपीटेड मैसेज है, और ये मैसेज हमें फिर से तुलसी मस्किन जी ने भेजा है। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। ये थे मेल हमारे श्रोताओं द्वारा भेजे गए। आइए अब सुन लेते हैं ये गीत।

अब सुनते हैं 1963 में आई फिल्म पारस मणि का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार थे असद भोपाली। दोस्तों, ये गीत हिंदी सिनेमा के सबसे दर्द भरे और मधुर युगल गीतों में गिना जाता है।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

उर्दू मजलिस के सभी सामेईन की खिदमत में नसरीन बेगम का पुरखलूस आदाब। पेश है प्रोग्राम अक्से अदब। सामेईन, उर्दू अदब और हिंदी अदब दोनों में प्रेमचंद का नाम नुमाया है। उर्दू अफसाने की दागबेल प्रेमचंद ने डाली, नावल निगारी में भी उनका अहम मकाम है। हकीकत निगारी प्रेमचंद के नावल और अफसाने की सबसे अहम खसूसियत है। वो जिंदगी की सच्चाई को वाज़े और मौसर ज़बान में पेश करने की पूरी सलाहियत रखते थे। उनकी ज़िंदगी देहात में गुजरी, लिहाजा देहात को करीब से देखा। उन्होंने जो देखा परखा वही

भी ज्यादा फारुकुल भाल थे। अब कोई क्या खिलाएगा, अब तो सबको किफायत सोचती है। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ खर्च किफायत सोचती है, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी एक रुपया मांगता है। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। उन दोनों की सूरतों से नफरत करते थे, कई मर्तबा उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी की इल्लत में, वादा पर काम पर ना आने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है, अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती, अब मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहते। जमींदार साहब रामदिल आदमी थे, जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती। गांव की रकीकुल कल औरतें आकर लाश देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिरा के चली जाती थीं। मिस्कीन इतने के वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे, दुनिया के मकरों से आज़ाद कर्ज से लदे हुए। मस्कूरा इक्तबासात प्रेमचंद के मुफक्किराना इजहार की झलक पेश करते हैं। इस माने में कफन प्रेमचंद के दौर के किसी हिंदुस्तानी देहात की कहानी मानी जा सकती है, मगर वो जिंदगी की हकीकतों का ही अक्स है। इस अक्स में इस्तेहसाल के मुख्तलिफ ताने बाने नजर आते हैं। कहानी की साख्त में माहौल निज़ाम का अंदाज़ा इन इबारात से जाहिर होता है, एहसास बेगानगी के सियाक व सबाक की शक्ल में। पहला इक्तबास इशारा करता है कि गांव के हाशिए पर छूत छात की वजह से उन्हें अलग कुंबे में रहने पर मजबूर कर दिया गया है। दूसरा इक्तबास गांव के माशी निज़ाम को पेश करता है। तीसरे इक्तबास में निज़ाम का पिरामिड सामने आता है। किसानों से अच्छी हालत उनकी थी जो किसानों की कमजोरियों का फ़ायदा उठाना जानते थे। वो हालात के थपेड़े से बेहाल किसानों से कहीं ज़्यादा कामयाब और आसुदा थे। चौथे इक्तबास में माशी तकलीफ से खौफजदा मुतगैर रुझान की तफसील है, तो 10वें इक्तबास में कर्जदारी का बयान है। 5वें, 6ठे और 8वें इक्तबास में हिजमनी की तफसील है। 6ठा ओझा की ताकत का एहसास दिलाता है और 8वां काबिल तकरीर महाजनी हमदर्दी का है। 9वां इक्तबास इस निज़ाम में खवातीन की एम्पैथी का खफीफ इशारा है, जो जाहिर करता है कि औरतें एक दूसरे के दर्द व गम से कैसे जुड़ती हैं। थोड़े वक्त के लिए सही बुधिया की लाश पर आंसू बहाने वाली सिर्फ औरतें ही थीं। जिन 2 मर्दों के लिए उसने जान दी, अनथक मेहनत की, वो तो उसके मरने के बाद दूसरी दुनिया में थे। इस तरह हम देखते हैं कि हल्के हल्के बरस से कफन में हिंदुस्तान देहात आम आवाम निज़ाम के साथ कहानी के सामाजिक मंजर और पस मंजर को पेंट किया गया है। देखना ये है कि किस तरह ये पस मंजर एहसास बेगानगी के एहसास को उभारता है। जद्दोजहद और हिजरत एहसास बेगानगी की अलग अलग दाखिली और हर कदम पर किस्मत की नफी करते हुए बातनी कैफियात हैं, मगर एहसास कमाईगी की मनफी सोच घेसु माधो और बुधिया को जोड़ती है और गैर वाजिद होकर भी मजबूती से कारीन पर चोट करती है। दोनों बेगैरतों का दोजक भरने वाली, शौहर के ख़ानदान में रिश्तों के निज़ाम की बुनियाद डालने वाली और किसी को अपना दुख न सुनाने वाली मेहनतकश बुधिया का खावंद उसके आखिरी वक्त में जिन दाखिली कैफियात से गुजरता है वो जग जाहिर है। वही औरत आज जज़्गी की तकलीफ से मर रही थी और ये दोनों शायद इस इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। हुआ भी यही, आलू खाकर पानी पीने के बाद वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे 2 बड़े अजदह कुंडलियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। कफन अफसाने में बुधिया के शौहर माधव के बर्ताव और दिली तासुरात को समझना सबसे ज़रूरी है। अफसाने में उसके दिली तासुरात को बारीकी से पेश किया गया है। दिली तासुरात की तशरीह बाप बेटे के मकालमे से होती है। दोनों निकम्मे मतलबी और नाकारा हैं। बुधिया से दोनों को कोई लगाव नहीं है, जिसका इजहार अफसाने के मकालमे से होता है। इक्तबास मुलाहजा कीजिए, येसु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ, माधव दर्दनाक लहजे में बोला। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई, मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलुओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूं ही ना, तो तुम ही जाकर देखो ना, अनकोट। प्रेमचंद ने यहाँ मुफाद पर जिंदगी की बेरहमी के जिम्न उस भूख की तस्वीर कशी की है जिसकी तड़प

0: में इंसान मुफाद की बेरहम सतह पर पहुंच जाता है। ये वो सतह है जहां पहुंचकर खून के रिश्ते भी झुलस जाते हैं। कफन के सिलसिले में ये कहना ज़रूरी है कि घेसू और मादो जिन हालात की वजह से दर्जे जह में मुबतला बुधिया को नज़रअंदाज करके आलू खाने में मगन है, उसमें किसी भी ज़ात बिरादरी का आदमी होता तो वही करता जो उन दोनों ने किया। आखिर में ये कि प्रेमचंद के दलित किरदारों में मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़्यादा बाहिम्मत और जुरतमंद नज़र आती हैं। गंगी, मुलिया, सुखिया, दुंकी और कफन की बुधिया इसकी उम्दा मिसालें हैं।
1: समीन, अभी आप जनाब इरशाद नियाजी से उनकी तकरीर सुन रहे थे। मौजू था कफन की एक और किरात। आइए समीन, जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है मेराज का।

0: सामीन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मेराज का। सामीन, इंसानी ज़िंदगी हमेशा हरकत में रहती है, मुसलसल बदलती रहती है। शायरी भी इन्हीं तब्दीलियों की खूबसूरत तर्जुमान है। हर दौर का शायर अपने ज़माने के हालात और इंसान के जज्बात को अपनी शायरी में समो देता है। इसीलिए शायरी हमेशा ज़िंदा रहती है और हर अहद में दिलों को मुतासिर करती है। तो आइए सामेईन, प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब शिव कुमार बिलग्रामी से उनका कलाम सुनते हैं।
1: मैं एक अपनी गज़ल पेश करता हूँ। हमारे पांव डरते हैं तुम्हारे साथ चलने में, हमारे पांव डरते हैं तुम्हारे साथ चलने में। ज़रा सा वक्त लगता है कभी नीयत बदलने में, ज़रा सा वक्त लगता है कभी नीयत बदलने में। तुम्हें शायद पता हो या न हो शायद पता तुमको, तुम्हें शायद पता हो या न हो शायद पता तुमको, कि सालों साल लगते हैं चुभा कांटा निकलने में, कि सालों साल लगते हैं चुभा कांटा निकलने में। किसी पत्थर की मूरत से न करना प्यार तुम हरगिज, किसी पत्थर की मूरत से न करना प्यार तुम हरगिज। हजारों साल लगते हैं बुतों का दिल पिघलने में, हजारों साल लगते हैं बुतों का दिल पिघलने में। ज़रा सा वक्त तो दे ज़िंदगी मुझको संभलने का, ज़रा सा वक्त तो दे ज़िंदगी मुझको संभलने का। बुरा हो वक्त तो कुछ वक्त लगता है संभलने में, बुरा हो वक्त तो कुछ वक्त लगता है संभलने में। न जाने क्यों बुझी आँखों में जुगनू से चमकते हैं, न जाने क्यों बुझी आँखों में जुगनू से चमकते हैं। अभी तो वक्त बाकी है अंधेरी रात ढलने में, अभी तो वक्त बाकी है अंधेरी रात ढलने में।

चारों साल लगते हैं बुतों का दिल पिघलने में, हमारे पांव डरते हैं तुम्हारे साथ चलने में। एक और गज़ल पेश कर रहा हूँ, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे, दिल की सरहद से जबां तक उसे लाएं कैसे, दिल की सरहद से जबां तक उसे लाएं कैसे, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे, एक तस्वीर जो इस दिल में छुपा रखी है, एक तस्वीर जो इस दिल में छुपा रखी है, चीर कर दिल को वो तस्वीर दिखाएं कैसे, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे। बड़ी हसरत से इन आँखों ने तेरे ख्वाब भरे, बड़ी हसरत से इन आँखों ने तेरे ख्वाब भरे, हम इन आँखों से तेरे ख्वाब हटाएं कैसे, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे। सभी नफ़रत के तरफदार हैं महफिल में तेरी, सभी नफ़रत के तरफदार हैं महफिल में तेरी, हम मोहब्बत की कोई बात उठाएं कैसे, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे। एक बेनाम सा रिश्ता है अभी तक तुमसे, एक बेनाम सा रिश्ता है अभी तक तुमसे, इस हकीकत को छुपाएं तो छुपाएं कैसे, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे, दिल की सरहद से जबां तक उसे लाएं कैसे, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे। एक और गज़ल पेश कर रहा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे मिलने की बेकरारी है, तुझसे मिलने की बेकरारी है, बेकरारी दबाए बैठा हूँ, बेकरारी दबाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तेरे दीदार की तमन्ना में, तेरे दीदार की तमन्ना में, चंद सांसें बचाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ, मुझमें मेरा न कुछ रहा बाकी, मुझमें मेरा न कुछ रहा बाकी, अपनी हस्ती मिटाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ, आ भी जाओ अगर मगर छोड़ो, आ भी जाओ अगर मगर छोड़ो, कब से पलकें बिछाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ। एक गज़ल और पेश कर रहा हूँ, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, कुछ तो आंसू पी लिए कुछ एक आंसू बह गए, कुछ तो आंसू पी लिए कुछ एक आंसू बह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, उम्र भर आँखों में पाला था जिन्हें अपना समझ, उम्र भर आँखों में पाला था जिन्हें अपना समझ, ख्वाब वो ऐसे गए हम देखते ही रह गए, ख्वाब वो ऐसे गए हम देखते ही रह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, कुछ तो आंसू पी लिए कुछ एक आंसू बह गए।

0: रफ्ता रफ्ता रात दिन हमको मिटाया वक्त ने, रफ्ता रफ्ता रात दिन हमको मिटाया वक्त ने, रेत का हम घर न थे जो एक पल में ढह गए, रेत का हम घर न थे जो एक पल में ढह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, कुछ तो आंसू पी लिए, कुछ एक आंसू बह गए। आप उनके दर्द को हरगिज न कमतर आंकिए, आप उनके दर्द को हरगिज न कमतर आंकिए, वक्त की यह दास्तां जो मुस्कुरा कर कह गए, वक्त की यह दास्तां जो मुस्कुरा कर कह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए। क्या बताऊं मैं तुम्हें अब जख्म कैसे हैं मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें अब जख्म कैसे हैं मेरे, भर गए हैं जख्म लेकिन दाग फिर भी रह गए, भर गए हैं जख्म लेकिन दाग फिर भी रह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, कुछ तो आंसू पी लिए, कुछ एक आंसू बह गए।
1: सामेन, अभी आप प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब शिव कुमार बिलग्रामी से उनका कलाम सुन रहे थे। तो सामेन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्स-ए- अदब। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि चर्चा यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए और जितनी लंबी चाहे चल सकती है।
2: देखिए, जो ओपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में आज श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के प्रत्येक मुद्दे को सुनने और उसका समाधान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए विद्यार्थियों और युवाओं का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर

0: के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले सदन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कादम्बा नौसेना अड्डे पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दोपहर पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत कनाडा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बातचीत दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा निर्धारित संबंधों के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित थी। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। उत्तराखंड, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में शुक्रवार तक तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day over various issues, including the NEET paper leak case and student protest. When the Lok Sabha reassembled after the second adjournment at 2 p.m., the opposition again started sloganeering over the NEET issue. Amid uproar, the House passed a resolution to suspend Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the rest of the monsoon session. Presiding Officer Krishna Prasad Teneti said Kalyan Banerjee made objectionable and unparliamentary remarks targeting women MPs, which was formally brought to the notice of the chair. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal moved the resolution, which was passed by a voice vote. As the ruckus continued, the presiding officer adjourned the House till tomorrow. Earlier, speaking in the House, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules. Rajya Sabha also witnessed similar scenes. When the House reassembled after the third adjournment at 3 p.m., the opposition parties protested over the NEET and other issues. Deputy Chairman Harivansh said that the government is ready for the discussion on the NEET issue and the opposition should cooperate in running the House. Speaking in the upper house, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress party of creating obstacles in conducting the discussion in the House by imposing new conditions. Amid uproar, Deputy Chairman adjourned the House till tomorrow. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying that centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by the students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi.
2: और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
3: इट इज डीपली अनफॉर्चुनेट दैट सम पीपल आर ट्राइंग टू यूज द स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑफ आवर कंट्री एज पॉलिटिकल टूल्स टू सर्व देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आवर गवर्नमेंट इज फुली कमिटेड टू फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल एंड एंश्योरिंग देयर वेलफेयर लिसनिंग टू एवरी कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स

0: उन्हें एड्रेसिंग देम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस।
1: उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: BJP has condemned leader of opposition Rahul Gandhi's sit-in outside the gate of the Prime Minister's residence yesterday without permission and termed it as irresponsible. Talking to media in New Delhi, BJP MP Ravi Shankar Prasad said that despite knowing the dignity associated with the Prime Minister's residence, Mr. Gandhi displayed irresponsible conduct. BJP MP stressed the importance of security protocols, stating that the Prime Minister's security is of paramount importance. The Indian Navy on Wednesday commissioned INS Malvan, the second vessel in the indigenous Mahi-class anti-submarine warfare shallow watercraft series at Karwar in Karnataka, strengthening its coastal anti-submarine warfare capabilities. The commissioning ceremony was presided over by Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Air Staff. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that in this era of volatility and disruption, the most visible stress is on supply chains. In his opening remarks at ASEAN Post-Ministerial Conference with India 2026 in Manila, Philippines today, Dr. Jayashankar said that energy, food and health security can no longer be taken for granted. India, Japan, Australia and United States have reaffirmed their commitment to strengthen a free and open Indo-Pacific and their unwavering support for ASEAN unity and centrality. The four countries stated this during Quad Foreign Ministers meeting held on the sidelines of the East Asia Summit and ASEAN Region Forum meetings at Manila. On the sidelines of the Quad meeting, Dr. Jayashankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio. Dr. Jayashankar said that the meeting focused on areas which are priority for the India-U.S. Comprehensive Global Strategic Partnership, including trade, tariffs, energy, defense, security, critical minerals, and artificial intelligence. The External Affairs Minister also met his Russian, Canadian, Philippines and Singaporean counterparts at Manila. In Assam, the flood situation remains critical with 16 districts affected by the deluge. 21 more people have reportedly lost their lives in the flood across the state, taking the toll to 31 till now. Relief and rescue operations are continuing in the affected areas. The IMD has issued a red alert for very heavy rainfall over parts of Gujarat, parts of Maharashtra, Konkan and Goa till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। प्राची शर्मा पुत्री अनिल शर्मा, ये गिरधरपुर सुनारसी से लापता है। इनकी उम्र है 22 वर्ष, इकहरा बदन, कद 5 फुट 2 इंच। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। कीर्ति वाइफ ऑफ मनीष कुमार, ये ग्रामगढ़ी थाना सेक्टर 42 से लापता है। इनकी उम्र है 21 वर्ष, आंख कान नाक औसत है, कद 5 फुट 2 इंच। इन्होंने फ्रॉक व पैंट पहनी है, पैरों में चप्पल पहनी है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 142 गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। आनंदी पुत्री पुष्पेंद्र सिंह चौहान, ये गली नंबर 15 गेसा सेक्टर 93 से लापता है। इनकी उम्र है 19 वर्ष, शरीर औसत है, कद 5 फुट। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। निशा सुपुत्री रूप सिंह, ये अंबेडकर नगर सूरजपुर से लापता है। इनकी उम्र है 20 वर्ष, इकहरा बदन, कद 5 फुट 3 इंच। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दादरी गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। अक्षय प्रताप उर्फ अंशु पुत्र कृष्णराज राय, पुत्र श्री केदारनाथ राय, निवासी 448 आर के पुरम सेक्टर 8 नई दिल्ली, हलवा जिला सिवान बिहार से लापता है। इन्हें अंतिम बार 16 फरवरी 2026 को देखा गया था। इनकी उम्र है 22 वर्ष, शरीर सामान्य है, कद 5 फुट 7 इंच। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कोतवाली दादरा गौतम बुद्ध नगर थाना से संपर्क करें। गौरव सैनी, जिनकी उम्र है 21 वर्ष, ये गलगेटिया दनकौर में बीपीटी दूसरी वर्ष के छात्र हैं। ये दिनांक 13 मई 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 21 वर्ष, इकहरा शरीर, लंबा चेहरा, रंग सांवला है, आँख कान नाक औसत है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कोतवाली दनकौर कमिश्नर गेट गौतम बुद्ध नगर थाना से संपर्क करें। संजीव 10 मई 2026 सुबह 6 बजे से लापता है। इनकी उम्र है 20 वर्ष, रंग गेहुआ है, शरीर मजबूत, कद 5 फुट, इनके माथे पर निशान है। ये ग्राम बरचऊ बदायूं उत्तर प्रदेश से लापता है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष थाना सेक्टर 126 नोएडा गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। शालिनी पुत्री ज्ञान प्रकाश, ये साईं धाम कॉलोनी ग्राम चिप्पी पाना से लापता है। इन्हें अंतिम बार 8 मई 2026 को देखा गया था। इनकी उम्र है 19 वर्ष, शरीर सामान्य। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना बिसरक गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारियां। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ तृप्ति प्रिया मिश्रा और रेडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:15 और वक्त हो चुका है आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का, जहाँ हम रोज लाते हैं आपके लिए कुछ नया, कुछ दिलचस्प और कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए।
1: आवाज हमारी, एहसास आपका, सफर हमारा, साथ आपका। कुछ बातें दिल से होंगी, कुछ सपनों की उड़ान होगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये शाम सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, आपके सपनों के नाम होगी। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका होस्ट अजीत। आज का दिन है बुधवार, यानी वो दिन जहां हम बात करते हैं आपके करियर की और आपके उन सपनों की जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। अगर आप एक छात्र हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में है, या अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आज का शो आपके लिए बहुत खास है। अरे
0: वैसे अजीत, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ?
1: वाह, शुरुआती सवाल से पूछिए।
0: आपको क्या लगता है, वॉट मैटर्स मोर इन अ करियर, फॉलोइंग योर पैशन और चूजिंग स्टेबिलिटी?
1: मेरे हिसाब से बिना स्टेबिलिटी के पैशन आखिरकार

0: डायरेक्शन के बिना स्टेबिलिटी खाली लगने लगती है। असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने पैशन को डिसिप्लिन और स्मार्ट चॉइस के साथ काम करते हैं, तो वो आपकी स्टेबिलिटी भी बन जाती है।
1: एग्जैक्टली कई बार हम करियर चुनते नहीं, बस भीड़ के साथ चल पड़ते हैं। दोस्त किसी प्रोफेशन में जा रहा है तो हम भी वही राह चुन लेते हैं। कोई किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो हम भी वही करने लगते हैं। क्या कभी आपको भी लगा है कि आप किसी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं? एक्चुअली सक्सेस तब ज़्यादा सर्टेन होती है जब आप अपने गोल्स के हिसाब से काम करते हैं।
0: आज का पूरा कार्यक्रम इसी बात को डेडिकेटेड है, किसी और की कॉपी करना नहीं, बल्कि अपना खुद का रास्ता खोजकर अपने आप को बेहतर बनाना।
1: बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द गोल इज नॉट टू बिकम अ कॉपी ऑफ समवन एल्सेस बेस्ट, इट्स टू बिकम द ट्रूएस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट फुलफिल्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ।
0: अब वक्त हो चुका है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। किशोर कुमार का एक गाना पेश है, जिंदगी एक सफर है सुहाना।

0: गाना है। अब चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की ओर, आज की बात। इस सुहाने सफर में हम आपको ले चलेंगे रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में।
1: एक साधारण परिवार का बच्चा जिसके घर में बिजली की सुविधा नहीं थी, वो लड़का रात को सड़क के लैंप की रोशनी में पढ़ता था।
0: सिर्फ 8 साल की उम्र में अपने परिवार का सहारा बनने के लिए वो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर अखबार बांटने लगा।
1: किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन देश का राष्ट्रपति बनेगा। उनका नाम था APJ अब्दुल कलाम।
0: बड़े होकर कलाम सर DRDO और इसरो में साइंटिस्ट बने और उनका सपना था भारत को आसमान में अपनी जगह दिलाना।
1: अपनी लगन, मेहनत और अनुशासन से उन्होंने भारत के मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
0: उनकी सोच, उनका जुनून और उनका देश के प्रति अटल समर्पण उन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति की कुर्सी तक लेकर गया। नो डाउट ही क्रिएटेड विंग्स ऑफ फायर। वैसे इस कहानी से आप क्या सीखते हैं अजीत?
1: तृप्ति, मैं तो ये समझता हूं कि करियर सिर्फ नौकरी का नाम नहीं होता। करियर है आपकी सोच, आपकी पहचान, आपका योगदान और वो काम जिसे करके आपको लगे आप कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं। और सफलता कभी भी सुविधाएं या हालातों की मोहताज नहीं होती, वो मिलती है उन्हें जो अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहते हैं और हर कठिनाई के बाद भी उठना नहीं छोड़ते। किसी ने सच कहा है, जहाँ चाह वहाँ राह।
0: जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री से ज़्यादा ज़रूरी है सीखने की इच्छा, नई तकनीक अपनाने की क्षमता और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का संकल्प।
1: आज का हमारा पहला संकल्प, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखेंगे, चाहे कोई भाषा हो, कोई स्किल, कोई किताब या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स।
0: बिल्कुल, क्योंकि आगे बढ़ते रहने में ही जीवन है।
1: तो चलिए, घड़ी की सुई के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गाना। किशोर कुमार का एक गाना पेश है, चला जाता हूँ।

0: दिल को छू गया ये गाना। तो चलिए रेडियो की धुन में हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट मन से माइक्रोफोन की ओर।
1: मन से माइक्रोफोन के सेगमेंट में हम सुनेंगे करण महंगी, यूपीएससी मेंटोर जिनसे बात की है संतोष द्विवेदी जी ने।
2: नमस्कार युवा साथियों, आज की मन से माइक्रोफोन तक के सेगमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं करण महंगी जी, जो कि यूपीएससी मेंटोर हैं। करण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच।
2: जो युवा साथी हमें सुन रहे हैं, मैं उन सबके भी आप पे सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि यूपीएससी प्रिपरेशन जो अपने आप में एक तपस्या है, क्या सही समय है कि जब उसे इस तैयारी में लगना चाहिए?
3: जी संतोष जी, मेरा मानना है कि ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि स्कूल तक तो आप एक क्लोज शेल में होते हैं, जो सब कुछ सीख रहे हैं, दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलता है। 3 साल के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मतलब आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप वहाँ पे फुल फ्लेश तरीके से एक्सपोजर लें, सीखें दुनिया कैसी चलती है, फिर उसके बाद इस प्रिपरेशन में आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप दुनिया के बारे में जानेंगे नहीं, फिर आप इस एग्जाम में बैठ जाएंगे तो फिर से वापस उस क्लोज शेल में जाना, एक कमरे में बंद होकर पढ़ना, तो वो सही नहीं है, मेरा मानना ये है।
2: जी करण जी, जैसे आपने कहा कि आप थोड़ा दुनिया को देखें, समझें, जानें, फिर इस तपस्या में आप कूदें। और तपस्या में बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर साल लाखों नए विद्यार्थी उसमें जुड़ते हैं। अगर हम अनुमानता माने तो 1000 सीट्स के आसपास का एक एवरेज है जिसमें बच्चे जाते हैं और तैयारी करने वाले 12-15 लाख हर साल अपीयर होते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति ने मान लीजिए तय कर लिया कि उसे अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न उसके समक्ष आता है वो होता है कि विषय चयन।
0: समाचार सेवा प्रभाग से पढ़ता रहा है अभी तक,
2: उस विषय का चयन करे या पढ़ाई के दौरान वो ये तय करे कि किस विषय में उसकी अधिक अभिरुचि है, कैसे?
3: देखिए, सबसे पहले मेरा मानना है कि यूपीएससी का सिलेबस देखिए। हर साल यूपीएससी एक नोटिफिकेशन निकालता है, उसमें 30+ ऑप्शन होते हैं, जो विषय होते हैं उसमें आप देख सकते हैं। एक एक ऑप्शन को, एक एक सब्जेक्ट विषय को आप पढ़े, समझे उसकी गहराई क्या है, फिर आप उसमें रुचि देखें। तो देखिए, यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसे कहते हैं कि आपके भाई बंधु की तरह है, क्योंकि अगर आप इसको अंदर बाहर से नहीं समझेंगे तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। हमारे यूपीएससी में ट्रिनिटी का प्रिंसिपल होता है कि ऑप्शनल, एथिक्स एंड एसे। तो अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक रह जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस भाई को आपको समझना पड़ेगा, उसको मित्र बनाना पड़ेगा। तो पहले सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, किस में आपकी रुचि है। फिर दूसरा स्टेप ये रहेगा कि उसका कोई पढ़ाने के लिए कोई है व्यक्ति, कोई एक एक्सपर्ट आदमी है जिसमें आपको गाइड कर सके। फिर तीसरा देखिए आप उसके नोट्स, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं है। फिर फोर्थ आप देखिए कि आप उसको टाइम स्लॉट में कवर अप कर पाए। एक ऐसा विषय ना चुन लें जो बहुत बड़ा हो, जैसे हिस्ट्री कहते हैं कि काफी बड़ा ऑप्शन है, लोग उसको ले तो लेते हैं कि चलो स्टैटिक है कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसको रिग्रेट करते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप पहले देखें रुचि है, इंटरेस्ट है, फिर देखें कि यूपीएससी की क्या डिमांड्स आ रही है, मेरे को, मैं उसको फुलफिल कर पा रहा हूं, तभी आप उसको चुन के आगे बढ़े।
2: अच्छा करण जी, मैंने भी कई बार ये देखा है कि जब जब रिजल्ट आता है तो एक चलन सा चल पड़ता है कि कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भीड़ चलती है, जैसे आपने कहा कभी हिस्ट्री की तरफ, कभी पॉलिटिकल साइंस। तो जिस तरह का रिजल्ट आता है उस तरफ चल पड़ती है और अगले साल फिर ये चलन बदल जाता है। इस चलन के हिसाब से तो मुझे लगता है कि विषय चयन ना हो, अपनी अभिरुचि के हिसाब से ही हो। अच्छा, एक दूसरी और विषय इसमें कोचिंग का बहुत बड़ा रोल आजकल देखने को मिल रहा है। कोचिंग का चयन भी कैसे करे व्यक्ति, कोचिंग का कितना रोल है और क्या कोचिंग अनिवार्य है?
3: देखिए, जैसे चंद्रगुप्त को भी एक चाणक्य की जरूरत पड़ी थी, तो वैसे ही एक मार्गदर्शक की आपको जरूरत पड़ती है कि आपको इस एग्जाम में फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है। तो मेरा मानना यह है कि कोचिंग या मेंटरशिप, जो अगर आपको एक व्यक्ति मिल जाए जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि देखिए आजकल सारे रिसोर्सेज मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाइए या सोशल मीडिया पे जाइए या कहीं भी आप गूगल पे करिए, आपको सब कुछ मिल सकता है। बट आपको पढ़ना कैसे है, किस दायरे में पढ़ना है, क्या लिमिट्स रहनी चाहिए, किस एंगल से पढ़ना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है, तो वो उसके लिए एक गाइड होना जरूरी है। तो कोचिंग जो है आपको उसमें हेल्प कर सकती है, एक हेल्पिंग एड की तरह ले सकते हैं। देखिए, यूपीएससी की डिमांड बहुत क्लियर है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि जितने हमारे सरकारी संस्था एनसीईआरटी हो गई या हमारे ऑल इंडिया रेडियो के ब्रॉडकास्ट हो गए या हमारे पीआईबी के ब्रॉडकास्ट हो गए, तो वो सबसे

0: बेहतर रिसोर्सेज माने जाते हैं। तो यूपीएससी कहता है कि पहले उन्हें फॉलो करें। कोचिंग एक एड की तरह काम कर सकता है, आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन पढ़ना, तपस्या करना और उसके अंदर आपको झिझोड़ देना, अपने अंदर से गोल्ड कैसे निकालना है, सोना कैसे निकालना है, वो आपको ही करना पड़ेगा।
1: जैसे करण जी ने कहा कि आप विश्वसनीय स्रोतों की तरफ जाएं, जैसे PIB है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इनके जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इन पे आप जाएं तो आपको विश्वसनीय जानकारी मिलेगी और आप भटकाव से बचेंगे। करण जी, हमें और आपको लाखों करोड़ों युवा इस समय सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कोई रियल लाइफ इंसिडेंट साझा करें जिसमें कि कोई व्यक्ति एकदम मीडियोकर था पढ़ाई लिखाई में, पर आगे चल करके उसे सफलता अर्जित की।
0: मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस फील्ड में मेडियोकर रहे हैं, मतलब कॉलेज में, स्कूल में उनके 50% 60% मार्क्स भी नहीं आए हैं। एक तो स्वीटी उपाध्याय मैम ही आई थी, उनका आपने लास्ट टाइम देखा ही था आकाशवाणी पे, उनके खुद ही रिवील किया था कि मेरे कितने मार्क्स हैं ग्रेजुएशन के अंदर, फिर भी उन्होंने UPPCS क्रैक किया। मेरा एक स्टूडेंट है जो आसाम में SDM है अभी, उनके भी मार्क्स बहुत कम थे। वो बहुत ही एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनका फाउंडेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था, बट स्टिल उन्होंने बहुत मेहनत करी। आज वो SDM है, APSC उन्होंने क्रैक कर लिया, UPSC की फिर से वो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक बहुत फेमस IPS ऑफिसर भी हैं, अभी इस साल इनका चयन हुआ है, उनका भी यही था कि कॉलेज में उनके मार्क्स 55% मार्क्स थे। तो UPSC कभी क्राइटेरिया नहीं देता कि आप टॉपर्स यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस है, इसमें हर कोई इंसान अगर अच्छे से पढ़े, मनन करें, चयन करें, तो सिलेक्शन जरूर होगा उसका।
1: जी बिल्कुल, आप मनन करें, चिंतन करें और आपका चयन अवश्य होगा, ये मूल मंत्र है करण जी का। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे करण जी कि जैसे कि आपके पास मेंटोरशिप के लिए अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं,
0: जी
1: कोई साइंस स्ट्रीम का होगा, कोई कॉमर्स स्ट्रीम का होगा, कोई ह्यूमैनिटीज का भी होगा, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं आप? मतलब किस तरह की स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होती है आपकी?
0: देखिए, हर बच्चा अलग दिमाग लेके पैदा हुआ है, मेरा ये मानना है। तो मैं पहले उस बच्चे को समझता हूँ कि वो किस एरिया में स्ट्रांग है, किस फील्ड में स्ट्रांग है, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जैसे एक साइंस का बच्चा है तो उसका एनालिटिकल स्किल ज्यादा अच्छा होगा, तो पहले मैं उनको एनालिसिस वाले सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी हो गया या साइंस वाले सब्जेक्ट्स पहले कराता था कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, फिर धीरे धीरे स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे ला जाता। अब एक आर्ट्स फैकल्टी का व्यक्ति है तो वो हिस्ट्री में स्ट्रांग होगा, पॉलिटी में स्ट्रांग होगा, लेकिन इनके अंदर भी देखिए यूपीएससी की डिमांड बहुत वर्सेटाइल होती जा रही है आजकल। उसमें क्या है कि रट्टाफिकेशन वाले बच्चे नहीं चाहिए, उनको समझने वाले बच्चे भी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले। तो दोनों को, हर एक व्यक्ति को उस लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेके आना कि वो कॉन्सेप्ट भी समझे, फैक्ट्स भी रटे और आगे बढ़े। भारत एक विकसित भारत बनने जा रहा है 2047 में, तो उसकी डिमांड करेगी कि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो और फैक्ट्स पे हमें पकड़ रखे, कि कल को हम कहीं बाहर जाते थे, IFS ऑफिसर है कहीं बाहर, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि मेरे देश में क्या चल रहा है। तो उसके लिए उसको फैक्ट्स भी पता होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि डिप्लोमेसी के सारे कॉन्सेप्ट क्या है। तो यूपीएससी की डिमांड ये है, तो दोनों एरियाज पर यूपीएससी टेस्ट करता है, तो दोनों माइंडसेट डेवलप करने पड़ते हैं इस एग्जाम के लिए, उसका मिश्रण ही आपको आगे ले जा सकता है।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले भारत को बेहतर तरीके से जाने, यहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य सबको समझें, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को समझें, तब जाकर के एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आप कार्य कर पाएंगे। करण जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे यूपीएससी नेशनल लेवल पर सिलेक्शन करती है, ऐसे स्टेट लेवल पर भी सिविल सर्विसेज के लिए PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, तो एक व्यक्ति एक समय में क्या दोनों के लिए तैयारी कर सकता है या उसे एक बार में एक ही पे फोकस करना चाहिए? हमारे बहुत सारे श्रोता मुझे लगता है इस बात को जानना।
0: जी, मेरा मानना बिल्कुल ये है कि आपको यूपीएससी करना तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रेडी होना चाहिए। जैसे मैं हर व्यक्ति जो भी मेरे साथ जुड़ता है, एस्पिरेंट जुड़ता है, मैं उसको हमेशा प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी की तैयारी साथ साथ कराता हूँ। तो प्लान बी में हमेशा मेरा स्टेट PCS रहता है। देखिए, 70 से 80% जो डिमांड है स्टेट PCS की वो एकदम सिमिलर है UPSC की, 20 से 30% डिमांड अलग होती है। हाँ, यहाँ पे फैक्ट्स तैयार ज्यादा करने पड़ते हैं जो कि आपको यूपीएससी में भी काम आते हैं, तो वो भी आप साथ साथ क्रैक कर सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपीएससी नहीं निकाल पाए लेकिन पहले दूसरे अटेम्प्ट में स्टेट PCS क्रैक करके बैठे, आसाम में, ओडिशा में, तमिलनाडु में, आंध्रा, यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर। प्लान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: करण जी, चलते चलते मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जो बच्चे अभी कॉलेजेस में हैं और जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहते हैं, एकदम जीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा, जो कॉलेज में एस्पिरेंट्स हैं, आप पहले कॉलेज लाइफ जिए, उसको एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें। जब आप आखिरी साल में हो तो तब एक यूपीएससी का सिलेबस जरूर निकालें, प्रिंट आउट करके अपनी दीवार पे से चिपकाएं और पढ़ें कि क्या है इसमें, पेपर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3, 4 ऑप्शनल कैसे होते हैं, CSAT क्या होता है, पहले समझिए कि गेम क्या है। कहते हैं ना कि पहले गेम खेलने से पहले गेम को समझिए, उसके नियम समझिए,
1: नियम समझिए,
0: पहले नियम समझिए कि क्या चाहिए, कितने मार्क्स से कट ऑफ हो सकती है, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या मेरी वीकनेस है। एक SWOT एनालिसिस, मैं हर एस्पिरेंट को बोलता हूँ अपना SWOT एनालिसिस करिए। SWOT में क्या, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। आपको एक पेज पे लिखना होगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या किसमें लैक कर रहा हूँ। तो पहले उन एरियाज जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं, पहले उस पर काम करें। मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं इंटरेस्ट के लिए डेवलप करता हूँ, क्योंकि जब आपकी वो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी जो मैंने पढ़ी है, जो मेरे को इंटरेस्ट है, तो वो आप ऑटोमेटिकली आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि वीक पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली कवर अप कर लेंगे। तो सिलेबस सबसे पहला, फिर साथ साथ ऑप्शनल का चयन जो सब सब्जेक्ट की हमने बात करी शुरुआत में, फिर उसके बाद आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल शेड्यूल आपको सेटअप करना पड़ेगा। नहीं है तो एक गाइड लीजिए, वो आपको जरूर हेल्प करेगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल जमाना है, आपको हर चीज इंटरनेट में मिल जाती है, AI टूल्स का जमाना है और आप सीख सकते हैं कैसे।

0: बुनियादी बातें सीखें कि
1: जी
0: क्या नहीं करना है,
1: जी
0: क्या करना है, तो उसका सिर्फ एक ही नाम है, वो है परिश्रम।
1: परिश्रम
0: और जीवन में पढ़ाई का और पढ़ाई में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। करण
1: बिल्कुल
0: जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे युवा श्रोताओं के लिए इतनी बहुमूल्य जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऑल इंडिया रेडियो का, संतोष जी आपका पर्सनली आपने मुझे बुलाया और मैं अपने जो विषय है, मतलब अपनी जो नॉलेज है शेयर कर सका। आई होप सबको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू अगेन।
2: अभी आप सुन रहे थे करण महंगी जी, यूपीएससी मेंटोर को, जिनसे बात की संतोष द्विवेदी जी ने। आशा करती हूँ आपको इस बातचीत से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और करियर गाइडेंस में भी हेल्प मिली होगी।
3: और बिना किसी देर के सुनते हैं एक सुनहरा गीत, पेश है अपना दिल तो आवारा।

0: वाह, इस गीत को सुनकर ये हमारा दिल कह रहा है अब अपने वीकली सेगमेंट की ओर बढ़ने के लिए। दोस्तों, कभी सोचा है किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है?
1: उसकी यूथ, क्योंकि यही है जो नए आइडिया लाते हैं, नौकरी और इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं और समाज में बदलाव की शुरुआत करते हैं।
0: जब देश का युवा एजुकेटेड हो, अवेयर्ड हो, एम्प्लॉयड हो, तो वही बनते हैं उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, सब कुछ युवाओं के दम पर ही आगे बढ़ता है।
1: और सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, समाज में जो भी बदलाव आता है

0: अपॉर्चुनिटी की बात हो या एनवायरनमेंट की, सबसे आगे देश का युवा ही खड़ा होता है।
1: क्योंकि आज की यूथ ही कल के लीडर्स हैं जो आने वाले सालों में देश की दिशा तय करेंगे। अगर आज की यूथ एम्पावर्ड होगी तभी कल का भारत विकसित भारत बन पाएगा।
0: और दोस्तों, ये विकसित भारत की जिंदा मिसाल हम देख चुके हैं, हैदराबाद का एक स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस।
1: जी हाँ, 18 जुलाई को स्काई रूट ने अपना रॉकेट विक्रम 1 सक्सेसफुली ऑर्बिट तक पहुंचाया और भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन चुका है जहां एक प्राइवेट कंपनी ने सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाया हो।
0: और ये कंपनी शुरू किसने की थी?
1: दो एक्स इसरो इंजीनियर्स पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका ने 2018 में सिर्फ 10 लोगों की टीम के साथ।
0: एक छोटी सी टीम से आसमान तक का ये सफर कितना खास रहा होगा ना?
1: बिल्कुल। और अजीत, तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊं?
0: बताओ बताओ।
1: तुम्हें पता है जो करने में स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनी को 4 अटेम्प्ट्स लगे, उसे स्काई रूट ने एक बार में ही कर दिखाया।
0: क्या बात है, स्काई रूट की कहानी सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च की नहीं है, ये एक संदेश है कि अगर सपना बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो भारत आसमान की ऊंचाई तक भी पहुंच सकता है।
1: और कभी भी कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं
0: क्या
1: होती।
0: बात है, आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, छूकर मेरे मन को।
2: तुम्हें
3: हाँ
2: क्या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है

0: पहला गाना है। अजीत, ये सुन के मेरे मन में भी एक बात आई है।
1: जी बताइए।
0: आपने ध्यान दिया है, बचपन में लोग पूछते थे, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? और हम बड़े गर्व से कहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। लेकिन आज आज बच्चे कहते हैं, गेम डेवलपर, एआई इंजीनियर, कंटेंट क्रिएटर, ड्रोन एक्सपर्ट। यानी दुनिया बदल रही है और करियर भी बदल रहे हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, वो है मेहनत। कोई भी रास्ता चुनिए, मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, आज लाखों युवा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ पहली बार इंटरव्यू देंगे, कुछ कई बार रिजेक्ट हो चुके होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि शायद अब मुझसे नहीं होगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज की बात सिर्फ आपके लिए है।
0: याद रखिए, रिजेक्शन आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक परिणाम है। आपकी पहचान आपकी मेहनत, आपका व्यवहार और आपकी सीखने की इच्छा है। अगर इसे एक शायरी में बयां करूँ तो, लेकिन नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली, ये बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है, ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे।
1: क्या बात बोली है तृप्ति। एक चीज़ बताऊं दोस्तों, सरकार की कई योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं है। अगर सही जानकारी हो तो वे सच में करियर बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप नई स्किल सीख कर बेहतर नौकरी पाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है।
0: इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र मिलता है, जो रोजगार पाने में मदद करता है।
1: अगर आप अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी प्रशिक्षण केंद्र से जानकारी लें।
0: अगर आपके पास कोई नया बिजनेस आइडिया है, तो स्टार्टअप इंडिया योजना आपके सपनों को उड़ान दे सकती है।
1: ये पहल युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए मार्गदर्शन, आसान नियम और विभिन्न सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।
0: नई सोच, सही योजना और मेहनत के साथ आपका आइडिया भी सफल उद्यम बन सकता है। शुरुआत करने का साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपके लिए उपयोगी हो सकती है।
1: इस योजना के माध्यम से छोटे उद्यमियों को व्यवसाय के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
0: सही योजना, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आपका छोटा व्यवसाय भी बड़ी सफलता की कहानी बन सकता है। आज की पूरी बातचीत का सार एक लाइन में।
1: जरूर, डिग्री आपको पहचान दिला सकती है, लेकिन स्किल्स आपको आगे बढ़ाती है।
0: और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अगर अभी आपकी मंजिल दूर है तो निराश मत होइए, क्योंकि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, हार भी हरा नहीं सकती।
1: तो चलिए सुनते हैं अपना अगला गाना।

0: क्या सुरीला गाना है। चलिए अब चलते हैं अगले सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री की ओर।
1: चल तो टुडे इन हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे तीन रंग का नई वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हम भारतीयों के दिल का यही तो स्वाभिमान है, यही गंगा यही हिमालय यही हिंद की जान है, तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है।
0: श्रोताओं, 22 जुलाई को भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन को नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 हफ्ते पहले ये एक निर्णायक मोड़ रहा होगा, एक ऐसा पल जिसने इस देश की दिशा ही बदल दी। इस घटना ने सभी सेनानियों के दिलों में एक नए भारत की चिंगारी पैदा की होगी, एक ऐसी उम्मीद जगाई होगी जो आने वाले समय में पूरी क्रांति बनकर उभरेगी।
1: पिंगली वेंकैया जी द्वारा निर्मित यह तिरंगा जब आसमान में लहराता है तो करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि इस ध्वज का हर रंग हर चक्र अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है।
0: केसरिया, ये रंग साहस, शक्ति और बलिदान का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है उन वीर सेनानियों का जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सफेद, ये शांति, सच्चाई और पवित्रता का संदेश है, एक ऐसा रंग जो हमें हमेशा ईमानदारी और अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है।
1: हरा, ये हरियाली विश्वास और समृद्धि का परिचय है, जो इस देश के उपजाऊ धरती और उसकी खुशहाली को दर्शाता है। गहरा नीला, बीच में अशोक चक्र का रंग, यह गतिशीलता और न्याय संतुलन का प्रतीक है।
0: Thousands of people have happily given their lives for this Indian flag. Our brave soldiers who stand guard day and night at the borders, protecting our nation so that we can sleep peacefully every night. Keeping their immense sacrifice and dedication in mind, it becomes our responsibility to be good, responsible, and true citizens. As a token of appreciation and heartfelt gratitude for their unparalleled contribution, we now present a song, Mera Rang De Basanti Chola.

0: multilingual film Jananayagan releases globally in theaters on July 23rd, 2026.
1: आज वर्ल्ड वर्ल्ड ब्रेन डे है और इस साल का थीम है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल।
0: देश में मॉनसून ने दी दस्तक, कई राज्यों में मॉनसून अलर्ट।
1: पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, चीन की चैन यूफेई को हराकर जापान ओपन 2026 के फाइनल में पहुंची। मैं हूं अजीत,
0: मैं तृप्ति। अब हम लेते हैं आपसे अनुमति, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम नए जोश के साथ। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 5 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। उन्होंने इस घटना को आपत्तिजनक और सदन की गरिमा तथा मर्यादा के विरुद्ध बताया। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
3: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

0: न्यायालय ने अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition parties' protest over various issues, including NEET paper leak case and student protests. When the Lok Sabha assembled after the second adjournment at 2 p.m., the opposition again started sloganeering over the NEET issue. Amid uproar, the House passed a resolution to suspend Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the rest of the monsoon session. Presiding Officer Krishna Prasad Tenneti said Kalyan Banerjee made objectionable and unparliamentary remarks targeting women MPs, which was formally brought to the notice of the chair. Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal moved the resolution, which was passed by voice vote. As the ruckus continued, the presiding officer adjourned the House till tomorrow. Earlier, speaking in the House, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules.
2: Sarkar NEET paper leak.
3: The government is fully prepared to discuss the NEET paper leak issue. I request that the Honorable Speaker discuss with the floor leaders of all parties and decide when the discussion should take place, how long it should continue and under which rule it should be conducted. The government is completely ready to discuss the NEET paper leak issue.
2: Paper leak pe charcha karne ka tayar hai.
1: The Rajya Sabha also witnessed similar scenes. When the House reassembled after the third adjournment at 3 p.m., the opposition parties protested over the NEET and other issues. Deputy Chairman Harivansh said the government is ready for discussion on the NEET issue and the opposition should cooperate in running the House. Speaking in the upper house, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress party of creating obstacles in conducting the discussion in the House by imposing new conditions. Amid uproar, the Deputy Chairman adjourned the House till tomorrow. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi.
4: और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
3: इट इज डीपली अनफॉर्चुनेट दैट सम पीपल आर ट्राइंग टू यूज द स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑफ आवर कंट्री एज पॉलिटिकल टूल्स टू सर्व देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आवर गवर्नमेंट इज फुल्ली कमिटेड टू फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल एंड एंश्योरिंग देयर वेलफेयर लिसनिंग टू एवरी कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स एंड एड्रेसिंग देम इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस।
4: उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: The BJP has condemned Leader of Opposition Rahul Gandhi's sit-in outside the gate of the Prime Minister's residence yesterday without permission and termed it irresponsible. Talking to media in New Delhi, BJP MP Ravi Shankar Prasad said, despite knowing the dignity associated with the Prime Minister's residence, Mr. Gandhi displayed irresponsible conduct. The BJP MP stressed the importance of security protocols, stating that the Prime Minister's security is of paramount importance. In Kashmir, a policeman was killed today in a terrorist attack at the Lal Chowk area of Anantnag district. According to senior police officials, security forces immediately cordoned off the entire area after the attack and a search operation is underway to apprehend the terrorists. Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Omar Abdullah paid tributes to the slain policeman and assured that those responsible will be brought to justice. The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on alleged use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. A bench of Chief Justice D.K. Upadhyay and Justice Tejas Karia directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The matter would be heard next on the 11th of September this year. Railway Minister Ashwini Vaishnav today said rail safety has been strengthened through modern technology, infrastructure and enhanced maintenance. In a written reply in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the expenditure on safety-related activities has increased from around 39,000 crore rupees in 2013-14 to over 1,20,000 crore rupees in 2026-27. And with that, we end this news bulletin.
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो लोकेंद्र भाई हम हाजिर हो गए हैं लोकरंजनी कार्यक्रम लेकर के। जी
1: बिल्कुल, और इस कार्यक्रम का हमारे भाई बेसब्री से इंतजार भी करते हैं अतुल भाई।
0: तो
1: तो सबसे बार पहले आप किसको सुनवाएंगे?
0: सुनवाते हैं वीणा ढिल्लो और उनकी सखियों की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: तो अतुल भाई,
1: जी लोकेंद्र
0: अभी
1: भाई।
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे वीणा ढिल्लोर और सखियाँ की आवाज़ में ये लोकगीत।
1: और अपने भाइयों को सुनवाते हैं लक्ष्मीचंद और रामकला सैनी की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: अतुल भाई,
1: जी लोकेंद्र भाई।
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये प्यारा सा लोकगीत और कलाकार थे लक्ष्मीचंद और रामकला सैनी से।
1: बिल्कुल, और अब सुनवाते हैं सुनीता माहेश्वरी की आवाज में ये लोकगीत।

0: अतुल भाई,
1: जी लोकेंद्र भाई,
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे सुनीता महेश्वरी की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।
1: और अब चलते चलते अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं जयमाला गुप्ता और उनकी सखियों की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: लोकेंद्र भाई अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे जयमाला गुप्ता और उनकी सखियों की आवाज़ में ये लोकगीत और इसी लोकगीत के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: पारंपरिक मजबूत खेल इस बार प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। ऐसे में भारतीय पदक तालिका पर इसका सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। इसके बावजूद भारतीय दल पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर रहा है। भारत की सबसे बड़ी उम्मीदें एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, पैरा स्पर्धाओं, जूडो, तैराकी, कलात्मक जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, 3x3 बास्केटबॉल और लॉन बॉल से रहेंगी। अनुमान है कि भारत 40 से अधिक पदक जीत सकता है। हालांकि खेलों की सीमित संख्या के कारण पिछले संस्करणों की तुलना में कुल पदकों की संख्या कम रह सकती है।
1: अगर सबसे मजबूत दावेदारी की बात करें तो निगाहें एक बार फिर एथलेटिक्स पर होंगी। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय एथलेटिक्स ने लगातार नई ऊंचाइयों को छुआ है। पुरुष भाला फेंक में नीरज चोपड़ा दुनिया के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब रहे तो स्वर्ण पदक के बड़े दावेदार होंगे। इसके अलावा लंबी कूद, ट्रिपल जंप, रिले और पैदल चाल जैसी स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ी

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब रहे तो स्वर्ण पदक के बड़े दावेदार होंगे। इसके अलावा लंबी कूद, ट्रिपल जंप, रिले और पैदल चाल जैसी स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। अब भारतीय एथलेटिक्स किसी एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कई स्पर्धाओं में पदक जीतने की क्षमता विकसित कर चुका है। भारोत्तोलन भी भारत की सबसे मजबूत विधाओं में से एक रहा है। मीराबाई चानू के अनुभव और बड़े मंच पर उनके लगातार प्रदर्शन ने भारतीय भारोत्तोलन को नई पहचान

0: की जा रही है।
1: ट्रैक साइकिलिंग में भारत अभी विकास के दौर में है। कुछ युवा खिलाड़ियों ने एशियाई स्तर पर अपनी क्षमता दिखाई है। यदि भारतीय साइकिलिस्ट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराने में सफल रहते हैं तो पदक की संभावना भी बन सकती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के बीच ये चुनौती आसान नहीं होगी। 3x3 बास्केटबॉल में भारतीय टीम के सामने कड़ी परीक्षा होगी। तेज गति वाले इस प्रारूप में किसी भी दिन कोई भी टीम बाजी पलट सकती है। भारत को यहां सफलता के लिए सामूहिक खेल और बेहतर रणनीति की जरूरत होगी। पदक की राह कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं।
0: लॉन बॉल्स में भारत के पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास रचा था। इस बार भी अनुभवी खिलाड़ी उस सफलता को दोहराने की कोशिश करेंगे। यदि वे संयम और लय बनाए रखते हैं तो एक और यादगार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इस बार पैरा खेल भी विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। रिकॉर्ड संख्या में पैरा स्पर्धाएं शामिल की गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पैरा खेलों में उल्लेखनीय प्रगति की है। पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा तैराकी और पैरा एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे पदकों की उम्मीद है। यही स्पर्धाएं भारत के कुल पदक संग्रह को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
1: हालांकि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि उसके पारंपरिक मजबूत खेल इस बार कार्यक्रम में शामिल नहीं है। बैडमिंटन, कुश्ती और हॉकी जैसे खेलों में भारत हर संस्करण में बड़ी संख्या में पदक जीतता रहा है। इनके

0: ध्वजवाहक चुना गया है। यह सम्मान पूरे भारतीय दल के लिए प्रेरणा का प्रतीक भी माना जा रहा है। यदि खेलवार संभावनाओं पर नजर डालें तो एथलेटिक्स, भारोत्तोलन और मुक्केबाजी भारत के सबसे बड़े पदक स्रोत साबित हो सकते हैं। पैरा स्पर्धाओं में भी उल्लेखनीय सफलता मिलने की उम्मीद है। वहीं जूडो, लॉन बॉल्स, तैराकी और जिम्नास्टिक से कुछ अतिरिक्त पदक मिल सकते हैं तो भारत का अभियान काफी सफल माना जाएगा।
1: जी हाँ अनु, तो कुल मिलाकर ग्लासगो 2026 भारत

लिए सिर्फ पदकों की लड़ाई नहीं है बल्कि बदलते भारतीय खेल परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण परीक्षा भी है। जिन खेलों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है वहां उस प्रदर्शन को कायम रखना होगा और जिन खेलों में अभी विकास की जरूरत है वहां भविष्य की मजबूत नींव रखनी होगी। भले ही इस बार खेलों का कार्यक्रम छोटा है और भारत के कई पारंपरिक पदक दिलाने वाले खेल इसमें शामिल नहीं है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा, तैयारी और आत्मविश्वास ये भरोसा दिलाते हैं कि तिरंगा एक बार फिर कई बार पोडियम पर लहरा।

तो बात करें अगर चीन के चांगझाऊ में खेले जा रहे विक्टर चाइना ओपन की, जहां आज राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खेले गए और भारत के लिए अब तक का दिन मिला जुला रहा। दुनिया के कई शीर्ष खिलाड़ी आज पहले दौर की चुनौती पार कर प्री क्वार्टर फाइनल यानी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। पुरुष एकल में अगर बात करें तो भारत के लिए अच्छी खबर है, आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को 3 गेम तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 21-17, 5-21 और 21-17 से हराकर शानदार अंदाज में अगले दौर में प्रवेश किया। पहले गेम में आयुष ने बढ़त बनाई लेकिन दूसरे गेम में फरहान ने एक तरफा जीत दर्ज कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में आयुष ने बेहतरीन संयम और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 21-17 से जीत दर्ज की और भारत को पुरुष एकल में पहली सफलता दिलाई। दूसरी ओर भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला भी जापान के योशी तनाका से आज शाम खेला जाएगा भारतीय समयानुसार 6:10 पर। इस मैच पर भी भारतीय प्रशंसकों की खासी नजर रहेगी। बात करें महिला एकल की तो वहां से भी आज एक अहम मुकाबला खेला गया जिसमें दो भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे। भारतीय बैडमिंटन प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा के बीच खेले जाने वाला मुकाबला रहा। हाल ही में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली अनुभवी सिंधु ने यहां पर भी शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्नति हुड्डा को 21-14, 21-9, 9-21 और 21-10 से हरा कर टूर्नामेंट में आगे अगले राउंड में प्रवेश किया। और बात करें अनु पुरुष युगल की तो वहाँ पे भारत के हरिहरन अमसा करुणन और अर्जुन की जोड़ी भी आज टूर्नामेंट में थी आमने सामने और वहाँ से क्या स्कोर रहा वो भी अपने श्रोताओं को बता देते हैं। हालांकि इस मैच में हार का सामना करना पड़ा 21-16 और 21-7 से और भारतीय मेंस जोड़ी का जो है सफ़र टूर्नामेंट में यहीं पर समाप्त हो गया। महिला युगल में इस बार राउंड ऑफ 32 में भारत की कोई भी चुनौती नहीं थी लेकिन मिक्स डबल्स की बात करें तो वहाँ पे भारत के लिए निराशाजनक का दिन रहा। भारत की दोनों जोड़ियाँ अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। पहले मुकाबले में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो की जोड़ी को चीन की गुओ शिनवा और चेन फांगहुई की जोड़ी ने सीधे गेमों में 21-18, 21-18 से हराया। इसके बाद रोहन कपूर और ऋत्विका गड्डे की भारतीय जोड़ी को भी चीन की फेंग यानझे और हुआंग डोंगपिंग की मजबूत जोड़ी के खिलाफ सीधे गेमों में 21-9, 21-16 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही मिक्स डबल से भारत की चुनौती पहले ही दौर में समाप्त हो गई। यानी कुल मिलाकर बात करें तो आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु राउंड ऑफ 16 में आगे पहुंच गए हैं और शाम को जो मैच खेला जाएगा लक्ष्य सेन का तो उसके बाद निश्चित होगा कि अगर लक्ष्य सेन भी अगले राउंड में पहुँचते हैं। तो ये तो बात हुई अनु बैडमिंटन की जो कि चाइना ओपन इस समय खेला

0: अर्जुन अवार्डी संजीव भास्करन जी से हमारे साथी अजय तोमर ने क्या बातचीत की, आइए सुनते हैं।
1: दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान संजीवन भास्करन जी, जो पावर लिफ्टिंग के अर्जुन अवार्डी हैं। सर, आकाशवाणी पर आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: सर, इक्विप्ड और क्लासिक मास्टर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का

0: वो कोई मतलब की बात नहीं है। तो ये जो अभी के जनरेशन के और अभी ओल्ड जनरेशन में बहुत फ़र्क है, और इस तरह से अगर जाएगा तो इंडिया एक दिन इतना हेल्दी इंडिया होगा कि आज का तारीख में गवर्नमेंट जो बोल रहा है कि 47-48 सब जो बोल रहे हैं 2047-48, उस हिसाब से देखो तो हम लोग का इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन हेल्थ।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे सुनने वालों के लिए?
0: नहीं, सुनने वालों का यही है कि आप अपने बाकी जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी गेम के हैं, उनको उनका जो परफॉर्मेंस के ऊपर से उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको एनकरेज करके उसको ऊपर लेने का और अपना देश का नाम रोशन करने का प्रयास करना है।
1: थैंक यू सर। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में खेली गई मास्टर्स नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अनइक्विप्ड के मुकाबले पूरे हो चुके हैं। हमने बात की अनइक्विप्ड में 84 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी रंजीता मिश्रा से, और उनसे जानना

0: थे के बाद जब मैं मुंबई में आई तभी मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया।
1: एक छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से, टाउन से निकलकर आप जब मुंबई आए और पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में आपने नाम कमाया, आज आप आकाशवाणी पर हैं, देश के कोने कोने में लाखों करोड़ों लोग इस समय आपको सुन रहे होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे सुनने वालों के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि अक्सर सोचते हैं कि पावर लिफ्टिंग तो मसल्स का खेल है, इसमें तो पुरुषों के लिए ज्यादा पावर लिफ्टिंग अच्छा है, लेकिन आपने खेल में अपना नाम कमाया, तो क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारी महिलाओं को, हमारे श्रोताओं को जो आपको इस समय सुन रहे हैं?
0: एक्चुअली मैं फर्स्ट थिंग बोलना चाहती हूँ कि वुमेन्स पावर, और दूसरा चीज है कितना भी लेटर एज हो जाए, कितने भी हम

0: रोजा, नादिर बेग, अब्दु सत्तारोव, हंस नीमन, दिमित्री आंद्रेकिन, निहाल सरीन और एम प्रनेश शामिल हैं। यहाँ हर खिलाड़ी 7 मुकाबले खेल रहे हैं और सर्वाधिक अंक हासिल करने वाला धुरंधर ही चैंपियन बनेगा। शतरंज की बिसात पर धैर्य, रणनीति और मानसिक दृढ़ता की इस सबसे कठिन परीक्षा में खेली गई एक सटीक चाल कभी कभी कई घंटों की कड़ी मेहनत को पलट कर रख देती है। टूर्नामेंट के राउंड 6 ने इस जंग को और भी सांस रोका और सबसे बड़ा मुकाबला टूर्नामेंट लीडर अली रजा फिरोजा और भारत के अर्जुन इरिगेसी के बीच खेला जाएगा। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, मोहरे सज चुके हैं और शह और मात का ये आखिरी दाव तय करेगा कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 का असली सुल्तान कौन बनेगा। जी हाँ, शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, लेकिन हम अपने श्रोताओं को लेकर चलते हैं मस्कट ओमान की तरफ, जहां पर यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप चल रही है और सुनने में आ रहा है कि कुछ भारतीयों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो सुनते हैं हमारे साथी अतुल की रिपोर्ट यूथ एशियन चैंपियनशिप की।
1: यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारत के युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। ओमान के मस्कट में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में मंगलवार को भारतीय सब जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने एलीट पूल चरण में अपने अभियान को दमदार अंदाज में आगे बढ़ाया। पुरुष टीम ने मेजबान ओमान और पाकिस्तान दोनों को हराया, जबकि महिला टीम ने पहले चीन के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेला और एक गोल कर भारत की बड़ी जीत में अपना योगदान दिया। गौरतलब है कि यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 केवल महाद्वीपीय खिताब की लड़ाई नहीं है, बल्कि यही टूर्नामेंट पहले FIH यूथ हॉकी 5S विश्व कप के लिए एशियाई क्वालिफायर की भूमिका भी निभा रहा है। बात करें कल के मुकाबलों पर, तो एलीट ग्रुप में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों के सामने एक बार फिर कड़ी चुनौती होगी। भारतीय महिला टीम का मुकाबला कजाकिस्तान से भारतीय समयानुसार शाम 6:30 पर खेला जाएगा और इसके बाद भारतीय पुरुष टीम बांग्लादेश के खिलाफ रात 8 मैदान में उतरेगी। ऐसे में 23 जुलाई भारतीय हॉकी के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है और इन मुकाबलों पर भारतीय खेल प्रेमियों की खास नजर रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल खास नजर रहेगी हॉकी से कल 23 जुलाई को जब मुकाबले खेले जाएंगे, और खास नजर रहने वाली है स्क्वैश से भी, जहाँ पे स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप ओंटारियो कनाडा में चल रही है और वहाँ पे राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। वहाँ से भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे क्या रिपोर्ट है, आइए सुनते हैं।
0: कनाडा के ओंटारियो स्थित नियाग्रा ऑन द लेक के व्हाइट ओक्स रिजॉर्ट एंड स्पा में आयोजित WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। 20 से 31 जुलाई 2026 तक चलने वाले जूनियर स्क्वैश के इस सबसे बड़े वैश्विक मंच पर दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ अंडर 19 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। टूर्नामेंट के दूसरे दिन यानी 21 जुलाई को खेले गए मुकाबलों में भारत की स्टार स्क्वैश खिलाड़ी और विमेन्स सिंगल्स के टॉप सीड अनाहत सिंह ने अपने शानदार विजय अभियान को आगे बढ़ाया। उन्होंने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में हांगकांग की पुई यिन चोले लो को बेहद एक तरफा

0: हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद ट्रिनिटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने

0: विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
1: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक

0: की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है। इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार सुरंग में 25 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament were adjourned for the day today, following repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day over various issues, including the NEAT paper leak case and student protests. In the Lok Sabha, amid the uproar, the House passed a resolution by voice vote suspending Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the remainder of the monsoon session. Presiding Officer Krishna Prasad Tenneti said Mr. Banerjee made objectionable and unparliamentary remarks targeting women MPs, which was formally brought to the notice of the chair. Earlier in the day, Speaker Om Birla appealed to opposition members to allow the House to function smoothly and said the government was ready for a discussion on the NEAT issue. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju also reiterated that the government was prepared for a meaningful debate involving all sides under established parliamentary rules and keeping in mind the future of the country's youth. The Rajya Sabha also witnessed repeated disruptions over the NEET issue and other matters. Speaking in the upper house, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Leader of the opposition Mallikarjun Kharge demanded the resignation of the Union Education Minister, saying the discussion could not proceed without it. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by the students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi.
2: और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
3: इट इज डीपली अनफॉर्चुनेट दैट सम पीपल आर ट्राइंग टू यूज द स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑफ आवर कंट्री एज पॉलिटिकल टूल्स टू सर्व देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आवर गवर्नमेंट इज फुल्ली कमिटेड टू फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल एंड एंश्योरिंग देयर वेलफेयर लिसनिंग टू एवरी कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स एंड एड्रेसिंग देम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस
2: उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: The Delhi High Court today sought responses from the centre and Delhi police on alleged use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. The matter would be heard next on the 11th of September this year. Railway Minister Ashwini Vaishnav today said rail safety has been strengthened through modern technology, infrastructure and enhanced maintenance. In a written reply in the Lok Sabha,

0: हिंदी वार्ता कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आज का विषय है तिरंगा, राष्ट्रीय चेतना और एकता का प्रतीक। वार्ताकार हैं श्री जी एन भट्ट, वरिष्ठ मीडियाकर्मी।
1: आज 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल 3 रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता, स्वतंत्रता, त्याग, बलिदान, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता का सजीव प्रतीक है। जब तिरंगा आकाश में लहराता है तो करोड़ों भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यह हमें हमारे गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और राष्ट्र निर्माण के संकल्प की याद दिलाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसके मूल स्वरूप का निर्माण महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने किया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब पहली बार यही तिरंगा स्वतंत्र भारत की पहचान बनकर लहराया। तब से आज तक यह देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक है। तिरंगे में 3 समान आकार की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग है। मध्य की सफेद पट्टी में गहरे नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र अंकित है। इन चारों तत्वों का सम्मिश्रण अपना विशिष्ट संदेश और महत्व देता है। केसरिया रंग त्याग, साहस, पराक्रम और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। देश के सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी और अनेक महान व्यक्तित्व इसी भावना से प्रेरित होकर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते रहे। सफेद रंग सत्य, शांति, ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रतीक है। यह हमें जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने, सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सम्मान रखने तथा समाज में सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हरा रंग समृद्धि, विकास, कृषि, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हरित रंग हमें प्रकृति के संरक्षण तथा सतत विकास का संदेश देता है। तिरंगे के मध्य स्थित अशोक चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ के धर्म चक्र से लिया गया है। इसकी 24 तीलियां जीवन में निरंतर गतिशील रहने, कर्तव्य पालन, न्याय, नैतिकता और प्रगति का संदेश देती हैं। यह बताता है कि जीवन और राष्ट्र दोनों तभी आगे बढ़ते हैं जब उनमें निरंतर गति बनी रहती है। ठहराव विकास का शत्रु है, जबकि कर्म ही सफलता का मार्ग है। तिरंगा

भारत की अनेकता में एकता की भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत में अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं हैं, लेकिन तिरंगा इन सभी को एक सूत्र में बांधता है। जब राष्ट्रीय पर्वों पर या किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में तिरंगा लहराता है, तब सभी भारतीय अपने मतभेद भुलाकर केवल भारतीय होने का गर्व अनुभव करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में तिरंगा प्रेरणा और संघर्ष का प्रतीक था। अनेक क्रांतिकारियों ने इसे हाथों में लेकर अंग्रेजी शासन का विरोध किया। असंख्य वीरों ने तिरंगे की शान के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इसी कारण तिरंगा हमारे लिए केवल एक ध्वज नहीं है, बल्कि उन अमर बलिदानों की स्मृति भी है जिनकी बदौलत हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आज भी जब सीमा पर कोई सैनिक शहीद होता है, तो उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचता है। यह दृश्य पूरे राष्ट्र को भावुक कर देता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सैनिक दिन रात अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। तिरंगा उनके सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज केवल युद्ध या राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित नहीं है। खेल, शिक्षा, संस्कृति, अंतरिक्ष, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में जब भारत नई उपलब्धियां हासिल करता है, तब भी तिरंगा विश्व मंच पर हमारी सफलता का प्रतीक बनकर लहराता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतें या भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां प्राप्त करें, हर सफलता के साथ तिरंगा पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। हाल के वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों के सम्मान और जुड़ाव को और अधिक मजबूत किया है। इस अभियान ने प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव कराया है कि तिरंगा केवल सरकारी भवनों का नहीं, बल्कि हर भारतीय के घर और हृदय का गौरव है। इससे राष्ट्रभक्ति, जनभागीदारी और राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य है। हमें ध्वज संहिता का पालन करते हुए तिरंगे का सदैव सम्मान करना चाहिए। उसे कभी भूमि पर नहीं गिराना चाहिए। फाड़ना, गंदा करना या उसका अपमान करना राष्ट्रीय सम्मान के विरुद्ध है। आज के युवाओं के लिए तिरंगा केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। यह उन्हें ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे, सामाजिक समरसता बनाए रखे, पर्यावरण की रक्षा करे और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, तो यही तिरंगे के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमें यह सिखाता है कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में निहित है। जब सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के मिलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं, तभी भारत विश्व में एक सशक्त, समृद्ध और सम्मानित राष्ट्र बन सकता है। तिरंगा भारत की आत्मा है। यह स्वतंत्रता, स्वाभिमान, लोकतंत्र, एकता और अखंडता का अमर प्रतीक है। इसकी हर लहर में हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समर्पण और सेवा की प्रेरणा मिलती है। तिरंगे के बीच का गोल चक्र अशोक चक्र कहलाता है। अशोक चक्र का मूल स्रोत उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ पर बना धर्म चक्र है। इस चक्र को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया। इसके पहले ध्वज के मध्य में चरखा होता था, जिसे बाद में अशोक चक्र से बदल दिया गया। अशोक चक्र का रंग गहरा नीला नेवी ब्लू है और इसमें 24 तिलियां होती हैं। यह धर्म, न्याय, सत्य, कर्तव्य और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है। इसका संदेश है कि राष्ट्र को कभी ठहरना नहीं चाहिए, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रचलित व्याख्या के अनुसार 24 तिलियां मालवीय मनों का प्रतीक मानी जाती हैं। इनमें जैसे प्रेम है, साहस है, धैर्य है, शांति है, महानता है, दया है, सद्भाव है, नैतिकता है, संयम है, आत्मसंयम है, निस्वार्थता है, सत्य है, न्याय है, करुणा है, विनम्रता है, सहानुभूति है, आध्यात्मिक ज्ञान है, नैतिक शक्ति है, धर्मपालन है, आशा है, विश्वास है, कर्तव्य है, सतत प्रकृति है और जन कल्याण की भावना निहित है। स्वतंत्रता के बाद देश के अनेक खादी केंद्रों से राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर दिल्ली भेजे गए थे। मान्यता है कि राजस्थान के दौसा जिले के आलूदा गाँव के बुनकर चौथमल को उस तिरंगा का निर्माता माना जाता है, जिसे स्वतंत्रता के बाद पहली बार लाल किले पर फहराया गया था। चौथमल ने खादी से तैयार तिरंगा, जिसे बनाने में लगभग 2 महीने लगे, यह तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से दिल्ली पहुंचाया गया।
हालांकि इतिहासकार यह भी बताते हैं कि उस समय विभिन्न स्थानों से कई तिरंगे दिल्ली भेजे गए थे, इसलिए यह दावा कि लाल किले पर सबसे पहले फहराया गया तिरंगा निश्चित रूप से तोथमल द्वारा बनाया गया वह वही तिरंगा था, यह एक व्यापक रूप से

0: प्रचलित परंपरा और स्थानिक ऐतिहासिक मान्यता है। राजस्थान के दौसा जिले के बारे में यह दावा अक्सर किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराए गए शुरुआती तिरंगे में से एक तिरंगा दौसा में निर्मित था। यह बात राजस्थान के कई लेखों, स्थानीय इतिहासकार और जनश्रुतियों में मिलती है। विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाता है कि दौसा के खादी कार्यकर्ताओं और बुनकरों द्वारा तैयार तिरंगे दिल्ली भेजे गए थे। हालांकि इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक अभिलेख या व्यापक रूप से स्वीकार किया गया ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आज क्षितिज में फहराता तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान को दर्शाने वाला है, इसलिए आइए हम आज, जब तिरंगा को आधिकारिक रूप से अंगीकार किया गया था भारत के संविधान ने, हम हमारे राष्ट्र की स्वाभिमान के प्रतीक को वो श्रद्धा के साथ उसका नमन करें और यह भावना देश के युवाओं के मन में भरें कि यह तिरंगा हमारे देश के स्वाभिमान का, हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है।
1: अभी आप सुन रहे थे तिरंगा राष्ट्रीय चेतना और एकता का प्रतीक। वार्ताकार थे श्री जी एन भट्ट, वरिष्ठ मीडिया कर्मी। प्रस्तुतकर्ता संतोष द्विवेदी, मनुज।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिनशर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीयसर्वकारः संसदि नीटप्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गविषये सारगर्भां चर्चां विधातुम् अङ्गीकृतवान्। तथापि विपक्षस्य श्रान्तं कोलाहलेन प्रावृट्टसत्रस्य तृतीयेऽपि दिने उभयोः सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्। सोमवासरे संसद्भवनं प्रति आन्दोलनं कुर्वत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिकबलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे देहली उच्चन्यायालयः केन्द्रसर्वकारात् देहली आरक्षकविभागाच्च स्पष्टीकरणम् आहूतवान्। फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे समायोजिते क्वाड मञ्चस्य वैदेशिक मन्त्रिणाम् उपवेशने मन्त्रिभिः मुक्त उन्मुक्त समावेशी हिन्द प्रशांत क्षेत्राय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनरावर्तिता। असमराज्ये भीषण जलप्लावेन स्थितिः अद्यापि अत्यन्तं गभीरा वर्तते, यत्र जलौघे मृतकानां आहत्य संख्या संवर्ध्य 31 सम्प्राप्ता। अपि च चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायाम् अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां पराजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणम् अथ च छात्राणां विरोध प्रदर्शनम् समेत्य विभिन्न प्रकरणेषु विपक्षिणां तृतीय दिवसेपि सदस्यानां अविरत कोलाहलत्वेन संसदः उभय सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीय स्थगनात् परं यदा लोकसभायाः कार्याचरणं पुनरारब्धं तदा विक्षेपेण नीट प्रकरणमधिकृत्य उच्चैः कोलाहलो विहितः। अत्रांतरे सदनेन तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदः कल्याण बैनर्जी इत्यस्य वर्षाकालीन सत्रस्य शेषावधेः निलंबन प्रस्तावोपि पारितः। पीठासीनः कृष्णा प्रसाद टेनेटी न्यगादीत् यत् कल्याण बैनर्जी इत्यसौ महिला सांसदानां विरुद्धं आपत्तियुक्ताम् असंसदीय टिप्पणीं विहितवान्। घटनेयम् आपत्तियुक्ता सदनस्य मर्यादायाः विरुद्धा च इत्यपि सः प्रावोचत्। संसदीय कार्य राज्यमन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन एषः प्रस्तावः उपस्थापितः, यश्च ध्वनिमतेन पारितः।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। तो लोकेंद्र भाई हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के।
1: बिल्कुल अतुल भाई, देखिए इस कार्यक्रम में हम भाइयों की जानकारी भी सुन करवाएंगे, भाइयों का मनोरंजन भी करवाएंगे और
0: बिल्कुल
1: महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे भाइयों से।
0: बिल्कुल। और देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, और बरसात के मौसम में भाई लोकेंद्र भाई क्या ये बीमारियां जो है हमारे शरीर को छू जाती हैं या लग
1: हाँ
0: जाती हैं, कई बार
1: बिल्कुल
0: देखा जाता है। और मानसून जो है, ये मौसम जो होता है, ये थोड़ा सा बदला बदला ऐसा लगता है कभी कभी। तो इस मौसम में देखिए क्या होता है कि नमी और गंदगी के कारण, जैसे कि देखा जाता है कि जो हमारी आँखों में संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ जाता है।
1: हाँ
0: और इस मौसम में विशेष सावधानियाँ रखना बहुत ही आवश्यक हमारे लिए हो जाता है।
1: और
0: जैसे
1: देखिए
0: जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर आपने कोशिश करें भाई, हमारे जो है लोकेंद्र भाई कहना चाहेंगे कि जो गंदे हाथ हैं
1: हाँ
0: भाई उनको ना छुएं, गंदे हाथों से दूषित पानी का या धूल मिट्टी का संपर्क जो है वो कम करें, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हमारे जो भाई बहन है वो बचें। और देखिए गंदे तौलिया, रुमाल या मेकअप का जो साझा उपयोग करते कई बार कर देते हैं हमारे
1: हाँ
0: बहन भाई,
1: हाँ
0: तो उसके उपयोग से बचें।
1: और देखिए इसके

0: के उपाय भी हैं, हम ये भी बताते थे कि हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोकर आंखों को छुएं, आंखों को बार बार रगड़ें ना, क्योंकि आंखें रगड़ने से लाल हो जाती हैं, और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके साथ साथ संक्रमण के जो लक्षण हैं, हम अपने भाइयों को ये भी बता दें कि आंखों का लाल होना है, खुजली या जलन होना है, आंखों से पानी और कुछ पीला पीला पदार्थ निकलना है, और आंखों में सूजन आ जाती है, ये तो संक्रमण के उसके वो हैं।
1: बिल्कुल। और देखिए, जब बारिश की हो रही है, तो अब देखिए वर्षा के जल का संरक्षण करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन
0: जी
1: जाता है।
0: हाँ
1: और ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि देखिए, जो हम कई बार कई जगह तो ऐसी भी होती हैं लोकेंद्र भाई, कि जहाँ वर्षा का जो जल है वो साल भर इकट्ठा करके उसको पूरी साल प्रयोग में लाया जाता है। तो भाई, तालाब की आपने सब साफ सफाई करें, और कोशिश करें कि भाई आप अपना गड्ढा बना करके जो वर्षा का जल है उसे एकत्रित करें, जिससे आप उसे उपयोग में जो है ला सकें, और अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, आप अपने प्रयोग में पशुओं के लिए भी जो है उसे ला सकते हैं।
0: बिल्कुल वो अतुल भाई, और देखिए संचार, उसको मैं ये भी बता दूं कि कैसे कैसे करना है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जो संचारण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसका हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए इसमें जो ज़मीन की नमी होती है वो उसमें मदद देती है, और पानी की कमी को कम करती है, सिंचाई और घरेलू उपायों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपलब्धता कराती है, और साथ साथ बाढ़ और जल भराव की समस्याओं को कम करती है, पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों का संतुलन बनाए रखती है।
1: बिल्कुल। तो ये तो रही जानकारी, देखिए वर्षा जल संरक्षण के बारे में, और देखिए थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने भाई मौसम के जो आँखों में जो संक्रमण हो जाता है उसकी और विस्तृत जानकारी भी हम लेकर के आए हैं, कि मानसून में आँखों के संक्रमण से कैसे बचाव हमारे भाई बहन कर सकते हैं। और इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरीश गांधी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो लोकेंद्र भाई, ले लेंगे थोड़ी सी
0: हाँ
1: जानकारी।
0: बिल्कुल, सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार। बरसात का मौसम शुरू होते ही कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विशेष तौर पे बहुत से हमारे भाई शिकायत करते हैं कि हमें आंखों में दिक्कत हो रही है। हालांकि गर्मी से तो राहत हो जाती है, लेकिन दूसरी परेशानियां बढ़ जाती हैं। और मानसून के मौसम में किस तरीके से आंखों को संक्रमण से बचाया जाए, इस पर हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश चंद्र गांधी जी, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ रह चुके हैं डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, मानसून के मौसम में आंखों के संक्रमण का क्या क्या खतरा रहता है?
3: मानसून के मौसम में आमतौर पर जो हम देखते हैं कि हर साल आई फ्लू के बहुत सारे केसेस होते हैं।
2: जी
3: आई फ्लू, या फिर जो आम भाषा में हम कहते हैं कि जो आंख को आना है,
2: जी जी जी
3: इसकी वजह यह होता है कि मानसून में, बरसात के मौसम में, हम देखते हैं कि हुमस का मौसम होता है, पसीना बहुत आता है,
2: वो आंखों में भी
3: तो
2: जाता
3: आंखों
2: है।
3: में भी जाता है, तो जो कीटाणु होते हैं, जिसको हम वायरसेस कहते हैं या वायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो बहुत जल्दी फैलता है। काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं। जैसे हमने बात की है कि मानसून का मौसम है, ह्यूमस ज़्यादा है,
2: जी
3: एक से दूसरे बहुत जल्दी फैल जाता है। मेन तो ये प्रॉब्लम होती है
2: मतलब आई फ्लू की।
3: आई फ्लू की।
2: लेकिन मान लीजिए किसी की आंख लाल हो गई, तो वो कैसे पता चलेगा कि इसको आई फ्लू है या कोई दूसरा कारण है?
3: अक्सर क्या देखा जाता है कि किसी एक को आई फ्लू होता है तो दूसरे को भी हो जाता है। इसके लक्षण यह कि आंख में, जैसे आपने कहा, लाली आ जाती है,
2: जी
3: अचानक आ जाती है, कोई चोट की हिस्ट्री नहीं होती, कोई चोट का कारण नहीं होता, लाली आती है, आंख में चुभन, ऐसे महसूस होता कि आंख में कुछ पड़ा हुआ हो,
2: खुजली जैसी महसूस होती है।
3: खुजली जैसे तो होती है, साथ में चुभन भी महसूस होती है। अक्सर मरीज सोचता कि आंख में कुछ पड़ा हुआ है, पर कुछ मिलता नहीं है, और साथ ही साथ में इसमें गिद्ध या मैल आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर क्या होता है, मरीज को सुबह के टाइम पर जब उठता है, आंख चिपकी हुई मिलती है गिद्ध या मैल की वजह से।
2: जी
3: कभी कभी क्या हो जाता है कि पलक में सूजन भी आ जाती है, पहले एक आंख में आती है, प्रॉब्लम एक आंख में शुरू होती है, फिर दूसरी आंख में भी चली जाती है। और जैसे ये वाली बात है, ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि वो वाली बात है कि घर में कोई रहते हैं, लोग काम पे जाते हैं,
2: जी जी
3: तो
2: जी
3: एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैल जाती है।
2: जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि बरसात में जब गर्मी होती है पसीना निकलता है, वो आंखों में जाता है, लेकिन घर से काम पे भी जैसे आपने कहा निकलते हैं, तो
3: निकलते हैं।
2: बारिश में भी कभी कभी भीगते हैं, वो आंखों में पानी भी जाता है, तो क्या उसके कारण भी फैलने की संभावना रहती?
3: नहीं, डायरेक्टली अगर आंख में पानी जाता है बरसात का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी लोग गंदे पानी में जाते हैं जहाँ पे ये कीटाणु होते हैं, तो एक को शुरू होती है, फिर वो वाली बात है कि दूसरे को भी हो जाती है। इसमें मरीज ये सोचता है कि भी दूसरे की आंख देखने से होता है, देखने से नहीं होता है। बहुत सारे लोग गॉगल्स पहन लेते हैं, मेरी आंख में कोई देखे ना इसलिए,
2: जी,
3: पर इसमें यह है तो कि भी आमतौर पे ये प्रॉब्लम फैलती है इसलिए क्योंकि आंख को हमने हाथ लगाया, उसमें से जो मैल या जो गिद्ध होती

0: या उसी गंदे हाथ से हमने किसी मेज़ पे या किसी दरवाजे के हैंडल पे हाथ लगाया। दूसरा जो है सज्जन वही वहीं पे हाथ लगाता है और गलती से अपनी आंख में लगा जाता है, तो ये एक से दूसरे जो है ये कॉन्टेजियस हो जाता है।
1: कहने का मतलब यह है कि जो लोग कहते हैं कि दूसरे की आंख में देखने से होती है बीमारी, वो नहीं
0: वो
1: होती
0: नहीं होती है, वो ही नहीं होती है।
1: जी।
0: आमतौर मरीज यही सोचता है या जो लोग यही सोचते हैं, पर ऐसे होता नहीं है। इसलिए जो प्रिकॉशंस होते हैं वो ये
1: जी
0: वाली बातें, सफाई मेंटेन करने की प्रिकॉशंस हम सलाह देते हैं।
1: यानी अगर आपको इससे बचना है तो आपको सावधानी रखनी है।
0: सावधानी रखनी है आपको,
1: सावधानी में क्या क्या रखना है?
0: सावधानी जैसे मान लिया कि आप जानते कि किसी को आप आंख आई हुई है, कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, तो उसको अपनी तरफ से अपना रुमाल अलग रखना चाहिए, अपना तौलिया अलग रखना चाहिए। हाथ अगर आंख को लगाता है तो किसी दरवाजे के हैंडल पे ना लगाए, पहले हाथ धो के रखें। मेज़ पे ऐसे हाथ ना लगाएं, किसी जो कॉमन जगह है कॉमन जगह पे बिना हाथ को साफ किए उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहीं से दूसरा आदमी पकड़ लेता है और वहीं उसको दूसरे को हो जाती है। घर में अगर जैसे रहते हैं, घर में
1: जी
0: हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे तौलिया अपना अलग, अपना रुमाल अलग, और हाथ जहाँ भी लगाए पहले हाथ साफ होना चाहिए।
1: यानी कहने का मतलब जब आपके आंख में कोई दिक्कत है उस समय आपको किसी से हाथ भी नहीं मिलाना है।
0: बिल्कुल बात सही कही आपने, लोग हाथ में ला लेते हैं जो कि गलत बात है, और बताने में कोई हर्ज नहीं है कि
1: जी
0: भाई मुझे प्रॉब्लम है इसलिए मैं हाथ नहीं मिला रहा। लोग शर्माते हैं, ये सोचते हैं क्या ऐसी क्या बात है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो आम हर सीजन में, हर हर मानसून के मौसम में एक राउंड एक हम कहते हैं ये बीमारी फैलती फैलती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे बड़ों में फैलती है, क्या बच्चों में उसी तरीके से फैलती है कि बच्चों में, क्योंकि बच्चे तो जब बरसात होती है पानी में भी

0: में नहाने से नहीं है, वो एक से दूसरे को फैलती है। तो हमको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। बच्चों को अगर प्रॉब्लम होगी, आपने बड़ी सही बात की, बच्चे ऐसे तो घूमते फिरते रहते
1: जी
0: बच्चों को अगर प्रॉब्लम होती है तो उनको स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर ये 4-5 दिन में सेटल अपने आप हो जाती है।
1: यानी कहने का मतलब बच्चे हों या बड़े, अगर बड़ों की भी आंख आते हैं
0: बिल्कुल
1: तो उन्हें भी मतलब ऑफिस या कार्यालय नहीं जाना
0: नहीं
1: चाहिए।
0: जाना चाहिए, ऑफिस कार्यालय नहीं जाना चाहिए, कॉलेज नहीं जाना चाहिए, तो अपने आप को थोड़ा सा अलग रखें तो बेहतर होगा।
1: तो ये तो बचाव की बात। और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को ये दिक्कत हो ही गई है तो फिर वो क्या नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए?
0: जरूरी नहीं कि शुरू शुरू में दिखाया जाए, जैसे मैंने कहा आमतौर पर ये जो है ये सेल्फ लिमिटिंग, या ये जिसको कहते हैं कि भी 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा, एक हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाती है। हाँ, कुछ पोजीशन होती है, कोई कंडीशंस होती है जहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है। जैसे हमने पहले बात की इसके लक्षण क्या हैं, लाली आती
1: जी
0: है, गिद्ध
1: जी
0: आती है, पलक में थोड़ी सूजन हो सकती है, सुबह के टाइम आँख चिपकी हो सकती है। आमतौर पर ये बात है कि नॉर्मल जो ऑर्डिनरी ड्रॉप्स होते हैं, जिसको हम लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं, वो डाल सकते हैं, थोड़ा ठंडे पानी का या बर्फ़ का टकोर कर सकते हैं, और 4-5 दिन में ये ठीक हो जाता है। मान लो कि आंख में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा दर्द है, देखने में कोई दिक्कत है,
1: जी
0: या चुभन बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में तो नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। मरीज़ क्या करते हैं, थोड़ी यही रहता है कि लोकल अपने केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से दवाई ले लेते हैं। वो दवाई जो अक्सर है, बहुत सारे केमिस्ट जो है उनको स्टेरॉयड ड्रॉप्स एडवाइस कर देते हैं, जो कि गलत है। उसमें क्या होता है, ये बीमारी और बढ़ती है, फैलती है, और उसका नुकसान भी हो सकता है, आंख में और बीमारी जैसे कॉर्नियल अल्सर की तरह भी हो सकता है। तो लक्षण ध्यान रखने पड़ते हैं, सेटल नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, 3-4 दिन बीत गए हैं, सूजन बहुत ज़्यादा है, सुबह आंख बिल्कुल चिपकी होती है
1: जी
0: और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फिर जाके नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए।
1: और जैसे विशेषज्ञ मान लीजिए जो दवा लिखते हैं वो डाला है, और बहुत से लोग क्या होते हैं जब कोई आंख में दिक्कत होती है, घर में कोई ड्रॉप रखा हुआ है उसको डाल लेते हैं।
0: नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अगर घर में कोई ड्रॉप रखा हुआ है, वो किस कारण किसी को दिया गया है, वो ज़रूरी नहीं कि उसके काम आएगा, उसके लिए स्पेसिफिक आपको ड्रॉप डालना चाहिए। और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि भी हर जो आँख आई है उसमें जो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत होती है, ये वायरल कंडीशन है, इसमें नॉर्मली एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ पोजीशन होती है कि कुछ दिनों के बाद क्या बात है, वायरल के ऊपर जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तब एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालने की या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट डालने की ज़रूरत पड़ती है।
1: तो इस दौरान दिनचर्या जो होती है आम व्यक्ति की, मतलब उसमें क्या बदलाव करना चाहिए या उसको रेस्ट ही करना चाहिए?
0: वो अपना थोड़ा बहुत काम कर सकता है, जैसा कि नहीं कि घूमने फिरने में बिल्कुल मनाही है, पर जैसे
1: जी
0: अपने हाथ साफ रखने चाहिए, इधर उधर हाथ बेवजह नहीं लगाने चाहिए, दरवाजे के हैंडल हैं अगर खोलते हैं तो भी कोशिश करें कि भी अपने हाथ से नहीं, अपनी कोहनी से दरवाजे खोल दे, ताकि दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बाकी ये जैसे कि आंख में कोई रोशनी कम हो जाए अचानक,
1: जी
0: दर्द बहुत ज़्यादा हो, लाली बढ़ती जाए, आँख से बहुत ज़्यादा पानी आए, तो फिर नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए।
1: और डॉक्टर साहब, उससे लोग मान लीजिए जो नंबर वाला चश्मा पहनते हैं, और क्योंकि जब आँख में फ्लू या कोई भी संक्रमण या बीमारी होती है तो उस समय आँख से पानी तो जरूर आता है, और जब चश्मा लगाते हैं तो उस समय उसको और भी दिक्कत होती है, तो उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: चश्मा अगर दूर का नंबर उसका है, उसको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली बात है कि पानी जो थोड़ा बहुत आता है तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर पानी बहुत ज़्यादा है, चुभन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बर्फ़ का टकोर या साफ ठंडे पानी से आंख धो सकते हैं, उससे उनको थोड़े टाइम के लिए राहत मिलेगी। चश्मा अगर लगाने की मजबूरी है, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो लगाएगा। चश्मा अपना साफ रखें, चश्मा उतार के किसी मेज़ पे ना रखें, अगर रखना भी है तो पहले अपना चश्मा साफ करके तब रखें, क्योंकि हाथ गलती से लगता है चश्मे को उतारने में पहनने में, उससे भी एक दूसरे को कंटेजन हो जाती है।
1: चश्मा केवल अपना ही यूज करना
0: अपना ही यूज़
1: चाहिए,
0: करेंगे चश्मा,
1: कहीं
0: तो
1: के किसी को दें भी नहीं इस बीच।
0: नहीं, नॉर्मली तो चश्मा किसी को देना भी नहीं चाहिए, प्रॉब्लम है या
1: जी
0: नहीं है,
1: जी
0: या
1: जी
0: फिर हर एक को अपना चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए, किसी और को चश्मा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे बरसात में हमारे किसान भाई या ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी लोग हैं वो काम करते हैं, कभी कभी उनके आँख में कोई चोट भी लग गई, मतलब जैसे इस समय धान की रुपाई हो रही है
0: बिल्कुल,
1: और सारे लोग क्योंकि उसको एकदम झुक के उसमें लगाते हैं, तो आँख में पानी जाना, छींटे पड़ना, और कहीं लकड़ी भी लग गई या कुछ भी है, ऐसी दिक्कत आती है, तो उसमें क्या सावधानी बरतनी?
0: इस मौसम में जैसे चोट लगती है, आंख में पूला होने का डर होता है, और इस मौसम जैसे बरसात का मौसम है, जो इसको हम फंगल अल्सर्स कहते हैं, फंगल कॉर्नियल अल्सर होते हैं, उनका होने का बहुत चांस होता है। चोट लगी हो तो उसमें मेरा तो यही एडवाइस है कि भी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाया जाए। हम सोचते हैं कि थोड़ी सी चोट लगी है, कुछ नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, अगर फंगल अल्सर हो जाता है तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता, बहुत टाइम लगता।

0: उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि भी आंख में पानी आया, दर्द हुआ, लाली आ गई। कभी कभी क्या होता है, पुतली के ऊपर सफेद सा धब्बा दिखाई देता है, और अगर पुतली के बीच भी होगा तो शुष्मय से ही इसमें रोशनी में कमी हो सकती है। इसका इलाज ठीक से होना चाहिए। दोबारा ये कहता हूँ कि लोकल केमिस्ट के पे जाके स्टेरॉयड ड्रॉप्स ना लें। स्टेरॉयड ड्रॉप से ये और फैलता है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, और रोशनी में भी कमी आ सकती है हमेशा के लिए।
1: बरसात के मौसम में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग लोग हैं, उनको अपनी आंखों से रोशनी उनकी सही बनी रहे, उसके लिए उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: बरसात के मौसम या जैसे किसी भी मौसम में होता है
1: जी जी जी
0: भी वाली बात है कि भी आंख में अगर पानी आता है या एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो उसकी दवाई ले। अगर आंख धोना भी चाहे, जैसे कुछ लोगों को आदत है कि आंख में पानी के छींटे डालते हैं, ये ध्यान रखें कि साफ पानी के छींटे डालें, ठीक है, ना कि कहीं भी से भी पानी लेके छींटे डालें। और छींटे भी अक्सर लोग की हमने देखा है कि भी वो 10-15-20 बार छींटे डाल देते हैं, 2-3 बार से ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई खुजली है, कोई पानी आता है, तो एलर्जी की दवाई होती है, वो भी खुद ना डालें, दिखा के ही डालें।
1: डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे जो श्रोतागण हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, बरसात में उन्हें आंखों से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, और अगर दिक्कत होती है तो क्या करें?
0: भी आंखें में दिक्कत ना हो तो सफाई मेंटेन करें। लोगों की आदत है कि गंदे हाथ से अपनी आंख में हाथ लगा देते हैं, खुजली कर लेते हैं। दिक्कत होती है, छोटी मोटी दिक्कत है तो कोई दिक्कत की बात, अगर प्रॉब्लम ज्यादा लगता है उसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस वैसे जो होता है 4-5 दिन 7 दिन में सेटल हो जाता है, ठीक हो जाता है, पर कभी कभी ये परेशान करता है। और कभी कभी ये कि कुछ 15-20 दिन के बाद रोशनी में भी कमी हो सकती है। एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम केराटाइटिस कहते हैं, वो भी हो सकती है। तो ये सावधानी रखें कि अगर 4-5 दिन में ठीक नहीं हुआ

0: तो फिर आके सर रोजा के नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं,
1: मतलब अपने आप इलाज ना
0: अपने
1: करें,
0: आप इलाज ना करें।
1: क्योंकि आंख ऐसी चीज है कि बहुत नाजुक होती है, और अगर आंख में कोई दिक्कत हुए तो आपको बहुत बड़ी परेशानी आगे हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किस तरीके से मानसून के मौसम में अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। और निश्चित ही आप द्वारा दी गई जानकारी का हमारे श्रोतागण फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अतुल भाई
3: जी, लोकेंद्र भाई,
2: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये जानकारी। जानकारी का विषय था मानसून में आंखों के संक्रमण से बचाव। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरीश गांधी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: बहुत ही अच्छी जानकारी लोकेंद्र भाई अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने ली है कि मानसून के सत्र में किस प्रकार से हम अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं और उनका बचाव भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल।
3: और भाई अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं योगेश कुमार, उनके साथी की आवाज़ में हरिश्चंद्र तारावती, किसी की ये रागनी।

0: लोकेंद्र भाई हमारे भाई बहन सुन रहे थे योगेश कुमार, उनके साथी की आवाज़ में ये रागिनी ऑर्केस्ट्रा था हरिश्चंद्र तारावती का।
1: बिल्कुल
0: और देखिए योजनाएं भी काफ़ी चलाई हुई हैं सरकार ने हमारे सभी किसान बहन भाइयों के लिए।
1: देखिए, बिल्कुल अतुल भाई, बिल्कुल इसमें से एक योजना है कैच द रेन, मतलब ये भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई थी और इसका जो उद्देश्य है पानी का अधिकतम संग्रह और भूजल का मतलब इकट्ठा करना है। इसकी शुरुआत की गई थी 22 मार्च 2021 में विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में, और इसका जो मतलब है जहाँ बारिश हो वहीं और उसी समय वर्षा जल का संरक्षण करें।
0: बिल्कुल, और देखिए अभियान के मुख्य जो उद्देश्य हैं लोकेंद्र भाई वही है कि जो वर्षा का जल है उसका संचयन को बढ़ावा देना, भूजल स्तर में सुधार करना और पारंपरिक जल स्रोतों जैसे तालाब हुए, कुएं, बावड़ी आदि का संरक्षण और पुनर्जीवन जो करना। और यही है कि देखिए भूजल स्तर में सुधार होगा तो देखिए लोगों की भागीदारी से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है, जल संकट वाले क्षेत्रों में जल उपलब्धता को भी बढ़ाना है।
1: बिल्कुल, ये तो रही योजना के बारे में। अब अपने भाइयों का सुनवाते हैं एक और रागनी।
0: सत्येंद्र यादव की आवाज़।

0: लोकेंद्र भाई, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे सत्येंद्र यादव की आवाज़ में ये रागनी, और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: बा
0: राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोतो, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर

0: चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
1: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के

करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स मुकाबले में आज सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे किसान बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम
0: अतुल भाई, कार्यक्रम
1: जी लोकेंद्र भाई।
0: लेके हाजिर हैं और आज के हम का हमारे कार्यक्रम में जानकारी भी होगी और साथ साथ होगा मनोरंजन।
1: बिल्कुल, और देखिए भाई, बरसात का मौसम चल रहा है लोकेंद्र भाई, और बरसात के मौसम में भाई हम तो अपने किसान भाइयों से यही कहेंगे कि भाई अपने पशुओं की जो देखभाल है भाई वो ज़रूर करें, क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में ही कई बार पशुओं को अनेक बीमारियां जो है वो लग जाती हैं।
0: बिल्कुल, देखिए इसमें महत्वपूर्ण हम अपने भाइयों को बता दें कि सावधानियां भी रखें, पशुओं को साफ साफ सुथरे और हवादार स्थान में रखें, पशुशाला जो होती है पानी उसमें जमा ना होने दें और उसकी नियमित रूप से साफ सफाई रखें। इसके साथ साथ अतुल भाई पीने के लिए हमेशा स्वच्छ और ताज़ा पानी उपलब्ध कराएं, हरा चारा साफ सुथरा होना चाहिए, फफूंदी ना लगा होना चाहिए और साथ ही गाढ़ा सलाह ना होना चाहिए, और संतुलित आहार के साथ साथ नमक भी दें उनको और मच्छर मक्खी जैसे बीमारियां वो कीड़े हैं उनको से बचाव करें।
1: यानी आप कह रहे हैं कि जो हमारे पशु हैं उनको मिनरल मिक्सचर भी आप दें,
0: हाँ
1: और भाई जब देखें कोशिश करें कि भाई आपके पशुओं पर जो है भाई मक्खी या मच्छर बैठ रहे हैं, तो उसका स्प्रे भी आप जो है अपने
0: बिल्कुल।
1: पशुओं पर करते रहें। और एक बात और कहना चाहेंगे भाई लोकेंद्र भाई,
0: हाँ
1: हम अपने सभी किसान भाइयों से कि भाई कोशिश करें, देखिए बरसात का मौसम है और आपने अगर आपकी पशुशाला पक्की है,
0: हाँ
1: अगर आपने अपने पशुओं के नीचे पक्का करा किया हुआ है, तो भाई कोशिश करें कि भाई चूने का एक बार हफ्ते में छिड़काव आप अवश्य कर दें, और अगर कच्चा है तो भी करें,
0: तो भी करें।
1: क्योंकि आपने देखा होगा कि मिट्टी और जब गारा बनती है ना उसमें गोबर भी
0: हाँ
1: उस पशु का जब मिल जाता है
0: मैं
1: तो
0: हाँ
1: उसमें छोटे छोटे कीड़े
0: कीड़े आ
1: उत्पन्न
0: जाते हैं।
1: हो जाते
0: हाँ
1: हैं, और जब कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं तो वो पशुओं के खुर में या पशुओं के मुंह में भी कई बार
0: चले जाते हैं।
1: चले जाते हैं, और बीमारी का पशु जो है वो शिकार हो जाता
0: हाँ
1: है। तो कोशिश करें भाई आप चूने का भी जो है आप छिड़काव समय समय पर करते हैं, ताकि जो कीड़े हैं
0: वो उत्पन्न
1: या
0: ना हो।
1: हाँ वायरस है वो खत्म हो जाए।
0: बिल्कुल
1: और भाई जब बरसात का मौसम आप बता रहे हैं शुरू हुए, हम भी देख रहे हैं, हम भी भीगते हुए, आप भी भीगते हुए
0: हाँ
1: हैं बारिश में,
0: बिल्कुल।
1: तो भाई कोशिश करें कि भाई
0: उनको
1: अगर
0: बचाव रखें।
1: आपको पशुओं में कहीं खुरपका या मुंहपका कोई लक्षण भी दिखाई देता है, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा
0: बहुत
1: बीमारी
0: होता
1: है
0: है।
1: फैलती है, तो कोशिश करें भाई अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जा करके अपने पशु की टीकाकरण कराएं,
0: देख।
1: और चिकित्सक को जरूर दिखाएं,
0: बिल्कुल
1: और समय समय पर सलाह भी आप लेते रहें।
0: बिल्कुल। तो ये तो रही जानकारी, अब अपने भाइयों को हम जानकारी सुनवाते हैं कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत एक मोती उत्पादन किसानों के लिए। जो अनुभवी किसान थे उन्होंने
1: जी
0: संध्या गुप्ता से क्या अपने अनुभवों को साझा किया, तो आइए सुनते हैं मोती उत्पादन किसान उत्पादक किसान।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका

0: स्वागत करती हूँ कृषि समाचार दर्शन के आज के अंक में। मोती उत्पादक किसान और प्रशिक्षक मोती की खेती के विषय में अपने अनुभव और विचार साझा कर रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं कुलंजन दुबे मनवानी। मोती पालन करीबन मैंने 2002 से शुरू किया था। मैंने मुंबई में CIFE करके है, वहाँ किरण दुबे मैडम के अंडर में मैंने ये ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद जो हमने शुरुआत की, दिक्कतें बहुत आई। पहले तो सीप भी नहीं मिल रहे थे, सीप मिलते भी थे तो छोटे छोटे मिलते थे। जो था उसी में अपना जो रिसर्च है शुरू कर दिया, और पहली बार हमारा मुरबाड़ में मोती आया था, जिसके बाद जो हमारा कॉन्फिडेंस है बहुत आगे बढ़ा। और फिर जो हम बढ़ते चले गए जगह जगह, हर एक राज्य में भारत में, पहले महाराष्ट्र से शुरू किया, फिर बिहार, बेगूसराय, ऐसे करते करते बहुत सारे राज्य हमने, गुजरात भी कवर किया, कर्नाटक में भी हम गए थे। हर जगह हम जाते थे वहाँ पे, क्योंकि करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ किसी ने किया नहीं था। लोगों के लिए जानकारी ही नहीं थी कि मोती पालन होता है। जो हर गांव में नदी तालाब मिलता है, इसमें मोती पालन होता है, लोगों को जानकारी नहीं। तो हमें खुद भी करना पड़ता था कि इस क्षेत्र में कैसे आएगा मोती, सीप कौन सी मिल रही है, ये सब हमें रिसर्च के तौर पे, हमने हर स्टेट में दो दो साल रह के वहाँ पे मोती उगाए। और खुशी की बात यह है कि जहाँ भी हम रुके, जहाँ भी हमने ट्राई किया, हर जगह मोती आया। तो वो ही हमारा लक्ष्य और आगे बढ़ाती थी। पहले तो फेलियर में थे, फिर जो सक्सेस हुआ तो वो सक्सेस ही छूता चला गया। जो पहले प्रोजेक्ट में जो केवल 10% मोती आए, उसने हमें हौसला दिया कि हम आगे कर सकते हैं। और फिर जो बढ़ते गए, हम कदम हमारे पीछे नहीं गए। और यही देख के भारत सरकार से भी हमें कई अवार्ड मिले इसके लिए कि हमने मोती पालन किया। एक लड़की होने के बावजूद जंगल में रुकना, पहली महिला मैं हूँ जो मोती पालन में किया है। तो उसके लिए मुझे पहले अवार्ड मिला था 2011 में, महाराष्ट्र के सरकार के तरफ से ही। वहाँ पे साइंटिस्टों को बुलाया था, लेकिन उसमें मुझे एक अवार्ड मिला। और फिर जो हमें अवार्ड मिलते चले गए, हम लोग एग्जीबिशन भी करते थे, लोगों को जागरूक भी करते थे कि भाई मोती पालन होता है। और आज देखिएगा, सर ने कहा था 2016 में, आज हम 2026 में खड़े हैं। हमारा मोती बिकता भी है, लोग हमें जानते भी हैं, और हम मोती उगा भी रहे हैं। लोगों को फोन पे भी कंसल्टेंसी हम करते हैं बिना चार्ज के। किसी को कोई दिक्कत है पॉल फार्मिंग के इसमें, तो हम सबको गाइड करते कि इस तरीके से किया जा सकता है, इसमें जो नुकसान है वो आप लोग ना झेल पाए। हमें 13 साल, हमारा मोती नहीं आया था, 13 साल हमने

लोगों को 13 साल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बता दे रहे कि ये चीज आप न करें, जिससे उनको वो दिक्कतें नहीं आती जो हमने झेला। करते हैं पॉल फार्मिंग तो उनको मोती सही तरीके से मिल जाती है। कॉलेज के एग्रीकल्चर बीएससी बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं, हमने स्किल कॉलेज में भी जाके ट्रेनिंग दिया है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी दिया है, एनजीओज में भी दिया है। जहाँ जहाँ हमें मौका मिला ये अवेयरनेस फैलाने का हमने किया। इसमें हमने इनोवेशंस भी किए। मशीन, इसको खोलने वाला जो यंत्र था ये अपने इंडिया का नहीं था, फॉरेन के सीप को खोलने वाले, जो फॉरेन के सीप अगर आप देखेंगे तो हथेलियों से भी बड़े होते थे, उन सीप को खोलने के औजार से हम भारत की छोटी छोटी सीपियां जो 10-12 सेंटीमीटर की होती थी उसको खोलते थे। तो इसमें मौत की संख्या ज्यादा हो जाती थी, तो उससे बचाने के लिए हमने छोटे छोटे शेल के कवर के, जब ये मर जाते हैं तो उसी को हम एरलडाइट में मिक्स करके एक ओपनर बनाते हैं, जिससे छोटी से छोटी सीप भी हम खोल सकते हैं। और इस मशीन, ये सारे टूल्स भी बनाने के लिए हमें अवार्ड मिल चुका है। आज हमारे पास सब है, हम मोती पालन करते हैं, हमने टूल्स बनाए हैं, मोती के पेंडेंट्स कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीख लिया, पर्ल्स को कैसे कट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पर्ल फार्मिंग में वैल्यू एडिशन हमने किया है, जो सीपियां मर जाती हैं उसके हैंडीक्राफ्ट हमने बनाए हैं, जैसे दिया है। कहते हैं कि दिया तले अंधेरा, लेकिन हमारा अगर सीप का दिया आप देखेंगे, अंधेरा नहीं होता उस दिए के नीचे। जो भी कलर उस सीप को आप लगाएंगे वो नीचे धरती पे आ जाता है। ये करामात हमने पर्ल फार्मिंग में की है, जो कई लोग जानते हैं कि ये पति पत्नी मिलके 26

साल से पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं। भारत में हर जगह सीप है, बस ये है कि पानी पोल्यूशन होने के साथ अब ऐसा है कि पहले मोती 2 साल में आ जाता था, अब दिक्कत ये हो जा रही कि 2 साल में नहीं आएगा, 4 या 5 साल लेगा एक मोती। बहुत अच्छा मोती अगर आपको चाहिए, उम्दा मोती, तो वो 4 5 साल लेगा आने के लिए। जो मोती उगा रहे हैं ना हम लोग, वही मोती नेचुरल मोती है जो हर इंसान पहन सकता है। ये मोती हम नहीं बनाते हैं, मोती सीप बनाता है। क्यों ना हम भारत में उगे मोती को पहने, हमारा किसान जो उगा रहा है उसी से खरीद के पहने, तो और अपने भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा। जो किसान अब पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि हाँ, जो भारतीय लोग है भारतीय मोती पहन रहे, भारत के लोगों से लेके। पहले होता था कि समुन्द्र में सीपियों को मार के मोती निकाले जाते थे, आज हर सीप में हम अपने कोई भी मोती उगा सकते किसी डिजाइन का।

एक तालाब है मछली का, तो उसी में मैंने डाला था। पहली बार पे मैं असफल हो चुका था, 500 पीस डाला था। फिर दूसरी बार जब उसमें डाला तो मुझे सफलता 1.5 साल के बाद को निकाला है, तो वो हमको मिला है। स्ट्रगल है लेकिन फिर भी लग रहा है कि अब हम सफल हो जाएंगे। कोई किसान शुरुआत करता है तो सीप अगर वो उपलब्ध करा लेता अपने क्षेत्र में, ढूंढ करके सीप अगर खोजेंगे तो मिल जाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे खरीदने के बाद तो काफी महंगा पड़ता है। उसमें कोई 50 रुपये के लगभग में लोग लेते हैं एक सीप का, और उसमें कितना परसेंटेज मरेगा जिएगा इस पर कोई गारंटी नहीं है। तो इसके चलते अगर जो भी किसान करना चाहेंगे, मैं उनको कहूंगा कि अपने आसपास के तो जो तालाब हैं या डैम हैं या नदियां हैं उससे वो ढूंढें। हमने 2-3 साल तक इस पर

जो है वो ज्यादा मिलेगा। हमने 1.5 साल पर एक किया था, 2-3 महीने पर, तो वो हमें प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन जब हम 1.5 साल उसको रखें तो उसमें लाइटिंग है, शाइनिंग है, वो अच्छा आता है। मोती की खेती में सावधानियां ये रखनी पड़ेगी कि जो पानी आपका है वो एल्गी होना चाहिए, जो हरापन है, जो सीप का भोजन है, तो उस तरह का होना चाहिए। और चुनौतियां हैं कि बहुत सारे सीप जो हैं आप बाहर से अगर लाते हैं तो आपके वातावरण में वो सेट कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, उनका डेथ परसेंटेज कितना है, ये सब देखना पड़ता है। अगर वो आपके पानी में वो सेट कर जाता है तो आपकी सफलता निश्चित है कि हो जाएगी। पहली बार तो मैं हतोत्साहित हो गया था, शुरू बार में एक भी नहीं आया तो, और मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का आदमी हूँ कि जिसको ठान लेता हूँ उसको करता ही करता हूँ। फिर दोबारा प्रयास किया, हमने सोचा कि नहीं, इसको कुछ लंबे समय तक छोड़ना चाहिए।

मिल जाती है। तो मैं इस किसान भाइयों से चाहूंगा कि इस नई प्रकार की खेती के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने रोजगार को आगे बढ़ाइए, जिस तरह से हम कर रहे हैं। भारत को मोतियों की बहुत आवश्यकता है। 25 से 30 करोड़ डॉलर्स का हमारे देश में प्रति वर्ष, हजारों करोड़ का, 26 हजार करोड़ का मोती जो है विदेश से हमारे को लाना पड़ता है। तो हमारे देश में सीपियां बहुत है, सिर्फ ज्ञान की कमी है। ज्ञान में कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ जो हमारा रिसर्च सेंटर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है,

0: साझा किया, और हमारे साथ थी संध्या गुप्ता।
1: बिल्कुल। और देखिए, अब सरकार ने बहुत सी योजनाएं हमारे सभी किसान बहन भाइयों के लिए चलाई हुई हैं लोकेंद्र भाई, उन्हीं में से एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।
0: बिल्कुल।
1: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जो हमारे किसान भाई हैं, कई बार देखा जाता है कि भाई हम अपनी फसल में लागत पूरी लगा रहे हैं,
0: हाँ, लागत लगा रहे हैं, लागत लगा रहे हैं, उसका भरपूर फायदा भी मिल रहा है। और देखिए, ये इस योजना की शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 से। ये एक कृषि प्रधान योजना है और इसका उद्देश्य किसानों को उनकी

कि सिंगल विंडो प्रणाली पर उपलब्ध 84 सरकारी सेवाओं में आवेदन के निपटारे का समय कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों और कारोबार से जुड़े लोगों को सरकारी सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अविनियम प्रक्रिया के दूसरे चरण के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र 21 पर विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें 18 विभागों को शामिल किया गया और सिंगल विंडो प्रणाली पर उपलब्ध 95 प्रमुख सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल तकनीक और बेहतर कार्य प्रणाली के जरिए लोगों तक तेज, आसान और नागरिक केंद्रित सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी हुई। जी हाँ श्रोताओं, महिलाओं का श्रृंगार केवल बाहरी सुंदरता का प्रतीक नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि ये श्रृंगार एक महिला की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और व्यक्तित्व की भी पहचान होता है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें या प्राचीन काल की बात करें, तो तभी से भारतीय नारी अपने पूरे 16 श्रृंगार और कई सारे प्रकार के आभूषणों से खुद को सजाती हुई नजर आती है। और ये आज भी हम देखते हैं कि तीज हो, त्योहार हो, पर्व हो, तो महिलाएं किस तरह से 16 श्रृंगार में सजी हुई नजर आती है। ये श्रृंगार केवल बाहरी नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास, सौंदर्य और गरिमा को और भी निखारता है। तो आइए कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में ये गीत।

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नारी के श्रृंगार की। प्रेम है, प्रतीक्षा है और अपनत्व का भाव भी इस गीत के माध्यम से नजर आता है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि श्रृंगार और गहने किस तरह से भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध बनाते हैं। महिलाओं के बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ, पायल, कितने सारे आभूषण जिनकी अपनी चमक है, अपनी खनक है और वहीं अपनी महक भी है। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अब एक और श्रृंगार से ही जुड़ा हुआ ये गीत।

जख्मी दिल फिल्म से लिया गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। श्रोताओं, पायल की मधुर आवाज़ जो मन को छू जाती है, इसके घुंघरुओं का घर आंगन में बजना मानो किसी उत्सव उल्लास और प्रेम का भाव अपने साथ लेकर आया हो। फिर वो घर में गूंजी किलकारी हो, उसके पैर में बजने वाले पायल

घुंघरू हो या फिर घर आंगन को अपनी मौजूदगी से महकाने वाली प्रेमिका या फिर स्त्री हो। आइए श्रोताओं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

श्रोता, वंश फिल्म से लिया गीत अभी आपको सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत से संवारा था आनंद मिलिंद ने। नारी के आभूषण जिनकी अपनी भाषा है, अपनी बोली है। कई बार श्रोताओं, ऐसा होता है ना कि शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके भाव, और मन के भाव को अपने साथी तक खामोशी से पहुँचाना हो तो फिर पायल की आवाज़, चूड़ियों की खनक और गजरे की महक आपके मौन का स्वर बन जाते हैं। श्रोता, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत से सजा कार्यक्रम गीत मालिका। आइए अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल स्वर में सुनते हैं ये गीत।

श्रोता, लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और अपने कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं महिला के श्रृंगार से जुड़ी हुई। और ये श्रृंगार जो है वो महिलाओं का ना केवल सौंदर्य है बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, उसके कई सारे भावों को भी प्रकट करता हुआ नज़र आता है। और बात जब भारतीय महिला के श्रृंगार की हो तो उससे भारतीय सिनेमा कैसे अछूता रह जाता। और यही जुगलबंदी आज हमने आपके साथ पेश की है, जहाँ हमने देखा कि कई सारे हिंदी फिल्म में ऐसे गीत लिए गए जिसमें नारी का श्रृंगार तो है ही और उसके साथ साथ उसके भाव भी प्रदर्शित किए गए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि महिला का जो श्रृंगार और हिंदी फिल्मों के जो गीत रहे हैं उनका गहरा और अटूट रिश्ता रहा है। समय कोई भी रहा हो, गीतों में हमने अक्सर देखा है कि नायिकाओं का जो रूप, सौंदर्य और उनके आभूषण और साथ ही साथ जो 16 श्रृंगार है, हमेशा गीतकारों की कल्पनाओं में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं। और यही है भारत की परंपरा, भारतीय संस्कृति। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अब आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। आवाज़ है कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: और श्रोताओं, अब त्योहारों का मौसम भी आ रहा है, तो खूब श्रृंगार कीजिए, चहकिए, दमकिए, महकिए और खूब सारा श्रृंगार करते रहिए। इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं।

0: हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएचपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएचपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिय शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़क कर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिडकैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines.

0: के अंदर इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के सबब इन लाशों को निकाला नहीं जा सका। अहलकारों ने कहा है कि कम दूरी तक दिखाई देने और मीथेन गैस के रिसाव ने बचाव कार्रवाई को ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अब तक 13 लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि सुरंग के अंदर कुछ अफराद फंसे हुए हैं। सिक्किम हुकूमत और कौमी पनबिजली पावर कारपोरेशन के सीनियर अहदेदारान मकाम पर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: NHPC टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियां आज लगातार तीसरे दिन भी कोशिशों में लगी रहीं। बचाव कार्रवाई 24 घंटे जारी है, ताहम कम बसारत और मीथेन गैस के रिसाव ने लाशों को निकालने में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। 8 लाशें टनल के दहाने से 2 किलोमीटर दूर हैं। इस दौरान सिक्किम हुकूमत ने हादसे में फौत होने वालों की लाशें आज उनके कुंबों को सौंपी। मरकज के अलावा सिक्किम हुकूमत और NHPC ने मुतासिरा कुंभों के लिए माली मदद का ऐलान किया है। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक मीटिंग हुई, जिसमें मंदिर के इंतजाम, अतियात के निज़ाम, तकरियों और इंतजामी असलाहत जैसे मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तकररी खाली अहदों को पुर करने और इसकी मजहबी कमेटी की नई सिरे से तश्कील पर तबादला ख्याल किया। ट्रस्ट ने कहा कि खसूसी तहकीकती टीम की हतमी रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई है और मीटिंग के दौरान इस मामले पर बातचीत नहीं हुई। हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान नाजेबा मवाद नशर करने की बिना पर 50 OTT प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है। लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में इतलात और नशियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुर्गन ने बताया कि हुकूमत शिकायतों की बुनियाद पर इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदगी से कार्रवाई करती है। जनाब मुर्गन ने कहा कि हुकूमत ने डिजिटल मीडिया पर हालात हाजरा और ऑनलाइन मवाद के नाशरीन के लिए इदारा जाती मैकेनिज्म वजह करने के खातिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जवाबित 2021 को नोटिफाई कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात और वस्ती महाराष्ट्र में कल इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। भारतीय महकमा मौसमियात ने शमाल मशरक़ी भारत में आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरह के मौसमी हालात की पेशगोई की है। अमरीका ने यमन के हूसी बागियों को उस ऐलान की मजम्मत की है, जिसमें हूसियों ने बहर अहमर में सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने और तजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सऊदी अरब के खिलाफ हूसी बागी ग्रुप की इस धमकी के लिए ईरान को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया। चाइना ओपन बैडमिंटन में 2 मरतबा की ओलंपिक तमगा याफ्ता PV सिंधु अपने हमवतन उन्नति हुडा को हराकर ख्वातीन के सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज दोपहर प्री क्वार्टर फाइनल में हुडा को 21-14, 9-21 और 21-10 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी आलमी नंबर 11 इंडोनेशिया के अलवी फरहान को 21-17, 5-21 और 21-17 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत नज़रिए को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया है, जिसमें नौजवान एक कलीदी रोल अदा करें। हुकूमत ने ये बात दोहराई है कि वो पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर बामाना बहस के लिए तैयार है। इसने नौजवानों के एहतजाज को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों की नुक्ताचीनी की। अपोजिशन ने दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखनांदाजी की। इसने बहस से पहले तालीम के महकमे के वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहरीन पर मुबैना तौर पर ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरख्वास्तों पर मरकज़ और पुलिस से जवाब तलब किए हैं। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में

0: प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटा सा गांव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहां कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियां। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
2: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या Tier 2 cities पर आधारित है या Tier 3 cities पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा अपना नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड, लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ ही नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो इस समय देश भर में, और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर, उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और Tier 2, Tier 3 cities में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृति

0: करोड़ों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा। क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
1: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अब भी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा, जो बड़े ब्रांड, बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे, छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल उसकी बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपने उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरह की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरह की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है, उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की, जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेंड करने तक, मार्केटिंग के तक, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन इसमें हुए हैं, तो ये अपने आप में, या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों के थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है। तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है, इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं, और बड़े हुए हैं लोग।
0: जी
1: इस तरीके के उदाहरण, जैसे दो उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया, जिस तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके के तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनके जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश

0: उनकी तरफ ना जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें हमारी जो जीडीपी का करीब 7%, 7% ये सेक्टर बन गया है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि PMFME योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार, और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया, और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
2: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2 से 3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है, और हम जो है मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड हैं पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूम कर आइए आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल

0: सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहाँ मिलेट्स होते हैं। तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है,
1: जी
0: लेकिन इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है। मैं
1: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निफ्टम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए, वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं। क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वहीं कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेके मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसेस जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है, और इसको क्योंकि बात ही इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरह बढ़ाना है हमें, उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये अभी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में, और बहुत सारी है, जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे एक कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद हैं वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही है। आपको क्या लगता है, जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
0: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती। हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती। फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना हैं, तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाएं, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मान कर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है, तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती हैं आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मान, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक्स को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी में उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मेरा जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव-गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, उसमें उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है, तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इतने आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEMA के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है, और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है, और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन्स बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग का क्लस्टर बन रहा है, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस है, उनको गाँव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सकें, उसको जब आप इस PM FME से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना चाहिए।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए, एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर अब ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे जो बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर्ड कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासनी जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया, उनको एक मेंबर बना करके किया गया काम। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं, जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं, तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
3: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स वर्ग में सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया। आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को और लक्ष्य सेन ने योशी तनाका को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Vikasit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Vikasit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues including the NET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as a political tool to serve their own political interests.
5: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interest. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
4: The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on pleas alleging use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. The matter will be heard next on the 11th of September this year. Railway Minister Ashwini Vaishnaw today said train accidents have declined sharply in the country due to improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. In a written reply in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnaw said the number of consequential train accidents has reduced from 135 in 2014-15 to just 2 accidents in this financial year so far. He said the expenditure on safety-related activities has increased from around 39,000 crore rupees in 2013-14 to over 120,000 crore rupees in 2026-27. The United States has condemned Iran-backed and Yemen-based armed group Houthi rebels for threatening commercial shipping in the Red Sea after the group announced a naval blockade against Saudi Arabia. Speaking on the sidelines of a regional summit in the Philippines, U.S. Secretary of State Marco Rubio expressed hope that the situation would be de-escalated. Mr. Rubio said anything that restricts shipping through the Red Sea would be problematic for the same reasons that the Strait of Hormuz is problematic. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered the singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda 21-14-9, 21-21-10 in a round of 32 clash this afternoon. And with that, we end this news bulletin.
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम माटी के रंग, जिसमें आज हम सुनेंगे गढ़वाली गीत। कलाकार हैं पद्मेंद्र सिंह रावत जी, साथ में संगत कलाकार हैं ढोलक पर पुनीत और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं दामोदर लाल घोष। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, जिसमें आज हमने सुने गढ़वाली गीत पद्मेंद्र सिंह रावत जी की आवाज़ में। साथी कलाकार थे ढोलक पर पुनीत और हारमोनियम पर संगत दे रहे थे दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन। आज हम सुनेंगे शहनाई वादन। सत्येंद्र नाथ जी कलाकार हैं और राग है चंद्रप्रभा। धुन निबद्ध है राग मिश्र किरवानी में। संगत कलाकारों में तबले पर हैं राशिद नियाजी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज आपने सुना शहनाई वादन, कलाकार थे सत्येंद्र नाथ, राग था चंद्रप्रभा और धुन राग मिश्र किरवानी में निबद्ध थी। तबले पर संगत कर रहे थे राशिद नियाजी। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as political tool to serve their own political interests.
5: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interest. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
4: The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on pleas alleging use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy today said the government has earmarked nearly 40,000 crore rupees for the scientific closure of abandoned coal mines with a target of closing over 147 identified coal mines by 2027-28. Addressing the release of India's first annual report on scientific mine closure titled Aroh in New Delhi, Mr. Reddy said the government no longer views mine closure as the end of mining activity, but sees it as the beginning of new opportunities for communities and the environment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Canadian counterpart Anita Anand this afternoon on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash this afternoon. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। श्रोताओं, सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म भाभी से। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की। और इसी के साथ चलते हैं मैसेजेस की सिलसिले की तरफ। लेकिन इससे पहले कि मैं मैसेजेस शामिल करूं, मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने जीमेल अकाउंट पे जाना है, वहाँ से हमें एक ईमेल लिखना है। हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com। एक बार पुनः बता दूँ, iprad

podcast@gmail.com। और बढ़ते हैं मैसेजेस की तरफ, जो कि आया है। सबसे पहला मैसेज किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नारायण खर्चे जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, हमारे साथ ही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सिद्धार्थ गोंडाने जी ने हमारे पास मैसेज भेजा है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। साथ में है अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज आया है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सलामो आदाब, आज के खूबसूरत गीतों में हमें भी शामिल करें जी, इनायत होगी। हाय, इतने प्यार के साथ आप हमें कहेंगे तो हम आपका मैसेज कैसे नहीं शामिल करेंगे, आप बताइए। मैसेज है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू का। लिखते हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है हमारे पास गांव व डाकघर निमनाबाद जींद हरियाणा से। जसबीर सिंह अरोड़ा जी, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है मनकारा मंदिर BDA कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से। बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शुगन, सारांश, अयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साहिमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत सादिया के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा जी सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम। साथ में है ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, CT दीवाना जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सन्नी भावसार भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। साथ में हैं गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर और अर्जुन गवाणकर टुक टुक भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, एकांश सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर परी भी साथ में हमारा कार्यक्रम सुन रही है। अगला मैसेज हमारे पास आया है गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी भी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। थैंक्स के साथ बिहारी बाबू हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे आपके हैं, लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, पहले सुनते हैं।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म दूज का चांद से। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर जी की। आइए चलते हैं मैसेजेस की तरफ, जो कि बहुत सारे हमारे पास आ चुके हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा जी, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से आया है। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाँव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। साथ में है प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी

0: निवासी अनम यशफ अब्बासी रसीदवारसी किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान और सबीहा अंजुमन खान भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगला मैसेज हमारे पास आया है शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी का। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आया है अगला मैसेज। पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। किशन वंजानी जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गुड इवनिंग, रात की तन्हाई में आपकी फरमाइश कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। हवाओं और सेवाओं में तैरते हुए आपकी आवाज़ दिलों को सुकून दे रही है। नाइस प्रेजेंटेशन किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। बरसात सिर्फ मौसम नहीं, दिल की आवाज़ भी है। हर बूंद अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। बारिश जमीन नहीं, यादों को भी भिगो देती है। बादलों की खामोशी बारिश की सबसे सुंदर जुबान है। बरसात में भीगता तन है मगर खिलता मन है। कुछ रिश्ते बारिश जैसे होते हैं, छूकर भी गहरे उतर जाते हैं। बारिश की हर बूंद प्रकृति की मुस्कान है। बरसात आती है तो उदासी भी महकने लग जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलते हैं अगले मैसेज की तरफ। इस प्यारे से मैसेज के बाद, आपकी पसंद कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है। एक से बढ़कर एक गीत बज रहे हैं। किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल करें। ये किशन वंजानी जी हमारे हमसे फरमाइश कर रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ हम चलते हैं जो कि आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगला मैसेज आया है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी जी भी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रचना साहिबा जी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, अर्ज हो। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, पहली पेशकश बेहतरीन, लाजवाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कार्यक्रम को सुनने के लिए और पसंद करने के लिए भी। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संबलपुर कांकेर से हमारे पास मैसेज आया फागुराम यादव जी का जो कि साथ में सुन रहे हैं ज्योति यादव, ओजस्वी यादव के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास लगातार और मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी जी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। श्रोता नजफगढ़ जय विहार से शाहरुख, फारूक, शबनम और शहनाज भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज, गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपके इतने सारे मैसेजेस और पढ़ूँ, चलते हैं आपकी फरमाइश के अगले गीत की तरफ।
1: ये रातें ये

0: बिहार, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।
1: श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म दिल्ली का ठग से। आवाज़ थी किशोर कुमार और आशा भोसले जी की। चलते हैं मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं आपके। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रचना दीदी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, अपने अपने मेरे नाम शामिल किया, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी जी कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के साथ लगातार बने रहने के लिए। पंजाबी सॉन्ग की फरमाइश के साथ हमारे पास एक मैसेज आया है, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार जाटव, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया, जालंधर से अशोक जाटव, उमर खेड़ से भाई रजाक खान, शबाना बेगम और जावेद खान जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी जी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है फिल्म सिटी मुंबई से अदीबा नाज, आलिया और सबा अंसारी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी भी साथ में।

शामिल हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर से नारायण खर्चे जी लगातार हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार बने रहने के लिए। अगले मैसेज की तरफ, इस रात की तन्हाई में आपको सुन रहे हैं, आपसे एक गीत की गुजारिश है, जैसी आपकी मर्जी। ये कहना है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फादिया और ताहिरा का आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपकी मर्ज़ी से नहीं, आपकी मर्ज़ी से चलते हैं, इसलिए आपकी मर्ज़ी तो हमें रखनी ही पड़ेगी। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि अस्तुपुरा जिला मऊ से आया है। मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना मराठा, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति प्रज्ञा चौधरी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और लगातार बने रहने के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही अगला मैसेज हमारे पास आया है, गांव सुल्लर जिला पटियाला से सन्नी कंबोज आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ को सलाम के साथ। प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं जी, इंद्रप्रस्थ रेडियो को बहुत सारा प्यार के साथ। सन्नी कंबोज जी का मैसेज भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुका है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपके मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि और मैसेजेस मैं शामिल करूँ, पहले सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म भूल ना जाना से, और आवाज़ थी मुकेश जी की। जी हाँ, इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले मैसेजेस की तरफ।

कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को स्नेहपूर्ण सत श्री अकाल। हमें हिंदी कम आती है, इसलिए अगर कोई गलती हो तो माफ़ी, आपको माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप हमेशा खुश रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस दुआ के लिए। नदी का किनारा और आशा भोसले, किशोर कुमार की सुरीली आवाज़ें, नाइस प्रेजेंटेशन के साथ हमारे पास मैसेज आया है। सुनील कुमार गुंद, नैनीश गुंद उर्फ नील माधव संगरूर पंजाब से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत और अंकिता भटकर भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रचना साहिबा जी, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज़ काबिले तारीफ है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ़ के लिए। हर गम और परेशानी दूर रहे आपसे, हर तरह की खुशियां कदम चूमे आपके, आपकी इतनी सारी दुआओं के साथ हम कहां परेशानी में रहने वाले, और हम चाहते हैं हमारा कोई भी श्रोता परेशानी में, दुख में ना रहे, कष्ट में ना रहे। आदिल कमर गुन्नौर जी की तरफ से ये मैसेज आया था। चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है। चिरमिरी कुरासिया कालर से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज आया है। नमस्कार रचना बहना जी, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कुछ श्रोताओं के चार चार बार ईमेल शामिल किए जा रहे हैं और हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। रचना बहना, इधर भी ध्यान दीजिए। देखा, हमने आपकी तरफ ध्यान दिया। ये मैसेज आया था चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगला मैसेज गोलक प्रधान बरगद उड़ीसा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ, मुजफ्फरनगर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ पढ़ते हैं। बहुत सारे मैसेजेस एक साथ हमारे पास आ रहे हैं एक ही श्रोता के, इसलिए ऐसा ना करें। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आए हैं नियमित श्रोता हैं ए के पांडे जी मध्य प्रदेश से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी फरमाइश का आनंद उठा रहे हैं, आपकी फरमाइश में एक या दो वर्षा गीत सुनवा दें, प्रसारक मैडम को आनंद में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, हम बरसात के ऊपर आपके लिए मैसेज हम ज़रूर सुनवाएंगे। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है। नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह जिला मोतिहारी बिहार से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, पूजा वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेजेस की तरफ हम बढ़ें, इससे पहले हम बढ़ते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ, है ना।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से। आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी की। इसके साथ ही चलते हैं मैसेजेस की तरफ, जो कि लगातार हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। अगला मैसेज की तरफ जो कि आया है पुराना तालाब डुमराव से, वली उल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी और शबनम बानो का, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी और फातिमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैसेजेस की तरफ अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, पूजा वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, जिला बेगूसराय बिहार से संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह और जिला मोतिहारी बिहार से बोल रहे हैं, हमारे पास मैसेज भेजा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन लगातार वही नाम आ रहे हैं। अगले मैसेज जो कि आया है रिगार्ड्स के साथ अश्विनी चुग जी का, आज तो लगता है सारे श्रोता खुश होंगे, सबके नाम आ रहे हैं, पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवाना, राधे भाविक ढिंगरा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, हम किसी का भी नाम लेना नहीं भूलेंगे, आप सभी को शामिल करेंगे कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है सोनी दीक्षित का, ये हमारे पास मैसेज आया है गांव उधरनपुर छिबरामऊ से। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि आया है इंद्रप्रस्थ सबसे अच्छा आकाशवाणी केंद्र है, सभी उद्घोषक बहन हमारे ईमेल को शामिल करते हैं, यहाँ हमारे ईमेल शामिल होना ही होना है, इसलिए हम लोग भेजते हैं, ये कहना है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह और साथियों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम की तारीफ करने के लिए और लगातार कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और मैसेज हमारे पास आया है सरगुजा में पाठ से, अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा का, छत्तीसगढ़ से मिश्री देवी साहू का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है छोटी बलिया करजत मुंबई।

इसे अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन और उमर खेर से भाई सिराज खान, शबाना बेगम और फरदीन खान जी का आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। खंडवा से संदीप कौर और दुर्गा कौर भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा और बाला साहिब करवा जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। खंडवा से संदीप कौर जी लगातार हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। रिस्पेक्टेड रचना अग्निहोत्री जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी वेडनेसडे, गुड नाइट, ऑन योर रिक्वेस्ट, ऑन आर रिक्वेस्ट काइंडली प्ले सॉन्ग। हमारे पास सॉन्ग की फरमाइश आपने भेजी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन कार्यक्रम के लिए, सॉन्ग के लिए टाइम अब थोड़ा सा कम बचा है, इसलिए चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। और मैं चाहती हूँ किसी का भी मैसेज हमारे पास बिना पढ़े ना रहे। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, अंतरा देवी और प्रभा देवी साहू भी, उमरखेड़ से भाई रजाक खान और सिराज खान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेजेस की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया गोलक प्रधान बरगद उड़ीसा से, लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मैसेजेस मैं चाहती हूँ कोई भी आपका ऐसा ना रहे जो कि मैं ना पढ़ पाऊँ। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा भी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। वीरमगाम से अजीता पॉल और हेमा पॉल, बुलंदशहर से उमेश गौर जी भी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार स्टेट डुमराव से असमा अंसारी, आमना परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी, वलीउल्लाह अंसारी और गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी ईद, डोंडी छत्तीसगढ़ से मास्टर शमशुल हक और राधिका पूजा डोमीन भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदर्श नगर मलौर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ हम बढ़ते हैं। पुराना तारा डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। फजिलका पंजाब, भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लड्डी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, जीवन गीत झुमका गिरा रे की फरमाइश के साथ हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। शुक्रिया के साथ ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे पास मैसेज भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज श्रोता नजफगढ़ जय बिहार से शाहरुख, फारूक, शबनम और शहनाज हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू और चंपा साहू जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। और जिन श्रोताओं के मैसेजेस हम शामिल नहीं कर पाए उनका, उनके लिए मैं क्या कहूँ, आपका मैसेज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ तो अगले मैसेज, अगले कार्यक्रम में तो ज़रूर शामिल होगा। इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाज़त दीजिए कार्यक्रम को समेटने की, और आपके लिए छोड़े जा रही हूँ कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: श्रोताओं, हमने ये गीत लिया था फिल्म अनुपमा से और आवाज़ थी लता मंगेशकर जी की। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाज़त दीजिए कार्यक्रम को यहीं पर समेटने की। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को हैं। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब प्रसारण होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
2: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। अनुराग जैन वर्ष 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. The government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day yesterday over various issues, including the NEET paper leak case and students' protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi last evening, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion. Railways Minister Ashwini Vaishnaw has said train accidents have declined sharply in the country due to improved

साथियों, समय हुआ है 12:10 और अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम सुरों को सफ़रनामा। और आज हम सुरों के सफ़रनामे में याद कर रहे हैं एक ऐसी सिंगर को जिन्होंने अपनी आवाज़ से अपनी पहचान बनाई, क्योंकि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो एक पल में आपको झूमने पर मजबूर कर दें और अगले ही पल वही आवाज़ आपके दिल की खामोशी को छू जाए। कुछ आवाज़ें सिर्फ गीत नहीं गाती, वो गीतों में भावनाएं भर देती हैं, और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर आप बिना नाम जाने भी कह उठते हैं कि ये आवाज़ तो इस सिंगर की है। तो वो जो सफ़र होता है उनका, वो बड़ा ही बेमिसाल होता है। आज की जो हमारी सिंगर हैं उनका नाम है सुनिधि चौहान, जिनका सफ़र शुरू हुआ था दिल्ली से और उनकी ये यात्रा बड़े बड़े मंचों तक पहुँची है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत से और फिर उसके बाद उनकी यात्रा पर बात करेंगे।

अभी आपने ये जो गीत सुना वो सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म फिदा से था, और बात हम कर रहे थे इनके सफ़र के बारे में। तो इनका सफ़र शुरू हुआ था दिल्ली से, यानी कि दिल्ली से शुरू हुई सुनिधि चौहान की ये यात्रा मुंबई के बड़े मंचों तक पहुंची, फिर फिल्मों के गीतों से होती हुई देश विदेश के मंचों तक पहुंची। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सफलता के हर मुकाम के पीछे एक छोटी बच्ची की वही आवाज़ आज भी सुनाई देती है जो कभी

मंच पर खड़ी होकर पूरे आत्मविश्वास से गाया करती थी। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि बड़े सपनों की शुरुआत अक्सर छोटी उम्र में ही होती है, बस उन्हें पहचानने वाली नज़र चाहिए। और बचपन से ही सुनिधि को गाने का बड़ा शौक था, और ये शौक सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों और स्थानीय आयोजनों में गाना शुरू कर दिया। 4 साल एक ऐसी उम्र जब बच्चे ठीक से शब्दों को समझना शुरू करते हैं, लेकिन सुनिधि उस उम्र में सुरों को समझ रही थी। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची, सामने बैठे लोग, मंच पर रोशनी और हाथ में माइक्रोफोन। जहाँ किसी बच्चे को मंच पर खड़े होने में भी झिझक हो सकती है, वहीं सुनिधि के लिए मंच जैसे उनका अपना संसार था। उनके पिता थिएटर से जुड़े हुए थे, घर का वातावरण कला से जुड़ा था, और धीरे धीरे संगीत सुनिधि के जीवन का हिस्सा बनता गया। उन्होंने सिर्फ गाना नहीं सीखा, उन्होंने सुनना सीखा, उन्होंने अभ्यास किया, अलग अलग आवाज़ों को सुना, और सबसे ज़रूरी बात वो ये कि उन्होंने अपनी आवाज़ को पहचाना। क्योंकि हर गायक के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे ये समझना होता है कि वो दूसरों जैसा बनने की कोशिश करेगा या अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। सुनिधि ने दूसरी राह चुनी। किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि दुनिया में सबसे कठिन काम है अपनी आवाज़ को पहचानना, और सबसे बड़ी सफलता उसी आवाज़ पर भरोसा करना। सुनिधि ने बहुत कम उम्र में अपनी आवाज़ पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। साल 1996 की बात है, और उस समय संगीत प्रतियोगिताओं का दौर आज के जैसा बड़ा नहीं था, लेकिन दूरदर्शन पर एक ऐसा कार्यक्रम आया जिसने देश भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कार्यक्रम का नाम था मेरी आवाज़ सुनो, और इस कार्यक्रम में शामिल हुई एक यंग लड़की, सुनिधि चौहान। उनकी आवाज़ में उम्र से कहीं अधिक आत्मविश्वास था। वो सिर्फ सुरों पर ध्यान नहीं देती थी, बल्कि गीत के भाव को भी समझती थी। और उन्होंने गाया तो लोगों ने उनकी आवाज़ को सुना, ध्यान से सुना, और फिर उन्हें चुना। सुनिधि चौहान ने मेरी आवाज़ सुनो प्रतियोगिता जीती, और ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये उस आवाज़ की पहली बड़ी पहचान थी जो आगे चलकर करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाली थी। उस समय सुनिधि बहुत छोटी थी, लेकिन उनकी आंखों में सपना बहुत बड़ा था। और शायद यही सपनों की खूबसूरती होती है कि वो आपकी उम्र नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप उन्हें पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, आप कितने ज़िद्दी हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला कभी छोटा नहीं होना चाहिए। सुनिधि ने ये बात अपने सफ़र से साबित भी की।

कार्यक्रम है सुरों का सफरनामा और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। और बात हम कर रहे हैं सुनिधि चौहान की, जिनका सफ़र दिल्ली से शुरू हुआ और अब वो धीरे धीरे मुंबई की तरफ बढ़ने लगा। मुंबई वो शहर जहाँ हर दिन हज़ारों लोग सपने लेकर पहुँचते हैं। कोई अभिनेता बनना चाहता है, कोई संगीतकार, कोई लेखक और कोई गायक। सुनिधि भी अपने सपने के साथ मुंबई पहुँची, लेकिन मुंबई में सपना देखना आसान है लेकिन सपना पूरा करना नहीं। यहाँ हर दिन परीक्षा होती, हर दिन खुद को साबित करना पड़ता और एक यंग लड़की के लिए फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन सुनिधि की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उन्हें भीड़ से अलग करता था। उनकी आवाज़ में ताकत थी, ऊर्जा थी और एक अलग पहचान थी। इसी दौरान उन्हें फिल्मों में गाने का मौका मिला। साल 1996 में आई फिल्म शस्त्र से उनकी फिल्मी गायन का सफ़र शुरू हुआ। एक यंग लड़की और एक माइक्रोफोन, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो और सामने था भारतीय सिनेमा का विशाल संसार। किसी नए गायक के लिए पहला गीत हमेशा से खास

होता है, क्योंकि वो गीत सिर्फ एक गीत नहीं होता, बल्कि वो होती है एक नई शुरुआत, एक उम्मीद और एक सपना। और सुनिधि के लिए वो सपना अब सच हो गया था। फिल्म का जो गीत था रुकी रुकी सी जिंदगी, आवाज़ जिसे देश ने पहचाना, धीरे धीरे साल बीतते गए और सुनिधि लगातार गाती रही। लेकिन हर कलाकार की यात्रा में एक ऐसा गीत ज़रूर आता है जो उसकी पहचान को एक अलग आयाम देकर आकार देता है। सुनिधि के सफ़र में वो गीत था रुकी रुकी सी जिंदगी। फिल्म थी मस्त, ये गीत लोगों के दिल तक पहुंचा और दिल्ली से चली आवाज़ मुंबई तक पहुंची। सुनिधि की आवाज़ में वो करिश्मा था जिसे लोगों ने पहचाना। अब लोग सिर्फ गीत नहीं सुन रहे थे, वो आवाज़ भी पहचानने लगे थे। वो आवाज़ किसकी है? और फिर जवाब सामने आता कि सुनिधि चौहान। और ये वही समय था जब सुनिधि चौहान का नाम संगीत प्रेमियों के बीच तेज़ी से पहचाना जाने लगा। उनकी आवाज़ में एक अलग तरह की गहराई थी। वो आवाज़ कभी बहुत ऊंची उड़ान भरती तो कभी धीरे से दिल को छू जाती, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। वो सिर्फ एक तरह के गीतों की गायिका नहीं थी, उनकी आवाज़ में कई रंग थे, कभी खुशी, कभी दर्द, तो कभी शरारत, कभी प्रेम, कभी जुनून और कभी बगावत।

0: दोस्तों बात हम कर रहे हैं सुनिधि चौहान की और उनकी आवाज़ की कि कैसे उनके उनके आप उनकी आवाज़ ने जो सफ़र तय किया है उसमें कितनी मेहनत है। और ये धीरे धीरे सफ़र साल 2004 तक आया और उस समय फिल्म आई धूम और गीत निकला धूम मचा ले। ये गीत आते ही जैसे पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर गई। सुनिधि की आवाज़ तेज़ थी, जोशीली थी या है, और इतनी प्रभावशाली है कि गीत शुरू होते ही माहौल बदल जाता है। यही तो किसी आवाज़ की असली ताकत होती है। वो सिर्फ आपके कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि वो पूरे माहौल को बदल देती है। सुनिधि की आवाज़ में वो शक्ति है और यही वजह थी कि एक के बाद एक उन्हें अलग-अलग तरह के गीत मिलने लगे। वो कभी रोमांटिक गीत गाती तो कभी नृत्य गीत गाती, कभी दर्द भरा गीत तो कभी ऐसा गीत जिसे सुनकर लोग अपने कदम नहीं रोक पाते। और ऐसा ही गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए।
1: Right.

तो अभी आपने सुना धूम टू की फिल्म से सुनिधि चौहान की ही आवाज़ में ये गीत। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की, तो दोस्तों आवाज़ के कई रंग होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि सुनिधि चौहान किस तरह के गीत गाती हैं, तो शायद इसका एक जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक तरह की गायकी नहीं है, या उनकी आवाज़ में क्रेजी कियारे का जुनून है, डांस पे जांच की मस्ती है, चोर बदारी की शरारत है, उड़ी का भाव है और कमली की ऊर्जा है। हर गीत में उनकी आवाज़ का एक अलग ही रूप सामने निकल कर आता है, और यही विविधता उन्हें बहुत खास बनाती है। एक कलाकार की असली पहचान तब बनती है जब वो खुद को एक ही दायरे में सीमित नहीं करता। सुनिधि ने भी वही किया, उन्होंने खुद को बार बार नए रूप में पेश किया। कभी आवाज़ को नरम किया तो कभी उसमें ताकत भरी, कभी उसमें शरारत लाई तो कभी उसे दर्द से भर दिया। और एक सच्चा कलाकार वही है जो हर बार खुद को दोहराने की बजाय खुद को एक नए रूप में खोजता रहे।

दोस्तों बात हो रही है सुनिधि चौहान की, तो उन्हें बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और ऊर्जावान पार्श्व गायिकाओं में से एक माना जाता है और उन्होंने अपने शानदार गायन के लिए दो फिल्मफेयर पुरस्कार और एक आरडी बर्मन पुरस्कार और कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मान जैसे आईफा और जी सिने अवार्ड्स भी जीते हैं। बात अगर हम करें उनके पहले फिल्मफेयर आरडी बर्मन पुरस्कार की, तो उन्हें वो 2001 में मिला फिल्म मस्त के गाने रुकी रुकी सी जिंदगी के लिए। इसके बाद उन्हें मिला 2007 में फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और फिल्म थी ओमकारा और उसका गीत था बीड़ी जलाई ले। फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक गायिका 2011 में उन्हें ये पुरस्कार मिला फिल्म 30 मार्खा में गाए एक आइटम सॉन्ग के लिए जिसके बोल थे शीला की जवानी। और इसके अलावा उन्हें धूम फिल्म के धूम मचाले और आईफा अवार्ड भी मिले। तो बहुत सारे उन्हें अवार्ड मिले हैं क्योंकि उनकी आवाज़ में वो खनक है, वो सुनने के लिए जो तत्परता रहती है, लोगों में जो पहचान बना बनाती है, वो उनकी आवाज़ में मिलता है हमें सुनने को, क्योंकि उनकी आवाज़ अब देश भर में गूंज उठी है। और कहते हैं ना कि सफलता के बाद भी किसी कलाकार की यात्रा समाप्त नहीं होती, असल में वहीं से एक नई यात्रा भी शुरू हो जाती है। तब तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपको लोग पहचानने लगते हैं और एक हर नया गीत जो होता है वो आपसे कुछ नया ही मांगता है। और सुनिधि ने हर बार इस चुनौती को बड़े ही प्यार से स्वीकार किया, तो क्यों ना उनका ये गीत सुना जाए।

दोस्तों कार्यक्रम है सुरों का सफ़रनामा और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। और बात हो रही है सुनिधि चौहान की। हम यहाँ तक तो आ चुके हैं कि उन्होंने गीत जो गाए फिल्मों में उनसे उन्हें बहुत प्रसिद्धि भी मिली, लोगों ने उनकी आवाज़ को पहचाना भी। लेकिन धीरे धीरे फिल्मों के गीतों से वो आगे निकल गई, यानी कि उनकी आवाज़ अब बड़े मंचों तक पहुँच गई। लाइव कार्यक्रमों में गाना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाने से बहुत अलग अनुभव होता है। स्टूडियो में गलती हो भी जाए तो उसे दोबारा गाया जा सकता है, लेकिन मंच पर सामने हज़ारों लोग होते हैं और वहाँ आवाज़ सीधे लोगों के दिल से संवाद करती है। और सुनिधि चौहान मंच की भी एक शानदार कलाकार हैं। साल था 2015, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में आयोजित ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में उन्होंने प्रस्तुति दी। ये उनके सफ़र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। कभी दिल्ली के छोटे मंचों पर गाने वाली एक छोटी बच्ची अब दुनिया के बड़े मंचों में से एक पर अपनी आवाज़ से लोगों को जोड़ रही थी। और यही बात सुनिधि की खासियत थी। उनके गीतों को एक ही शब्द में बांधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी आवाज़ हर गीत के साथ अपना रंग बदलती है।

दोस्तों, कार्यक्रम है सुरों का सफ़रनामा और हम बात कर रहे हैं सुनिधि चौहान की और उनकी आवाज़ की, जो कि कई रंगों के साथ है। और कभी आपने ये ध्यान दिया है कि कभी कुछ आवाज़ें सुनते ही हमारे अंदर कोई पुरानी याद जाग जाती है? कोई ऐसा गीत, या फिर कोई सफ़र, कोई दोस्त, कोई शाम, या फिर कोई आपका सपना। सुनिधि चौहान की आवाज़ भी कुछ ऐसी ही है। उनका कोई गीत किसी के लिए कॉलेज के दिनों की याद हो सकता है, किसी के लिए दोस्तों के साथ बिताया हुआ पल या लम्हा, या फिर किसी के लिए पहली बार किसी मंच पर नाचने की याद, या फिर किसी के लिए बस एक ऐसा गीत जिसे सुनकर मन हल्का हो जाता है। यही संगीत की ताकत है और यही एक सच्ची आवाज़ की ताकत है। सुनिधि की आवाज़ लोगों के जीवन के अलग-अलग पलों का हिस्सा बनी, कभी खुशी में, कभी अकेलेपन में, और कभी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में। तो चलते चलते एक और ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में सुनते हैं।

नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि एक गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार

0: मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बेटियों के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है। राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि देश में जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये अनुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है। हांगकांग में चल रही सीनियर विश्व तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय खिलाड़ी तनिक्षा खत्री और प्राची लोहान ने महिला व्यक्तिगत एपे वर्ग के मुख्य दौर में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वे इस चैंपियनशिप के मुख्य दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एपे खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government has prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
2: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rule should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
1: Defence Minister Rajnath Singh has flagged in Samudra Pradakshina, the first ever tri-service all-women circumnavigation sailing expedition through video conferencing. 9 women officers from the Army, Navy and Air Force returned to Mumbai aboard the Indian Army sailing vessel Triveni after completing a 314-day voyage covering more than 25,000 nautical miles across 4 oceans. Union Minister of State for Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, has said that the government has drawn up a roadmap to achieve 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047 under the Nuclear Energy Mission. In a written reply to the Lok Sabha, Dr. Singh said the country's installed nuclear power capacity is expected to increase from the present 8.78 gigawatts to around 22 gigawatts by 2031-32. Union Minister of State for Communications Dr. Chandrasekhar Pemasani has informed the Lok Sabha that the Bharat 6G Alliance, an industry and academia-led body, has expanded to 90 members as of the 15th of this month. In a written reply, Dr. Pema Sahni said,

0: कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता।
1: जी, मैं
2: पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो।
1: मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी।
2: जी
1: जी, मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पे बहुत गुस्सा आया था
2: और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी इस कड़ाके की सर्दी में।
1: अंदर आइए ना।
2: जी, आपका गुस्सा उतर गया?
1: मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। लाइए, आपके कपड़े दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। शर्ट भी दे दीजिए।
2: जी

0: मेरे घर के लाती हूँ।
1: जी सुनिए।
0: जी
1: अगर मुझे निमोनिया हो गया तो?
0: इलाज हो जाएगा, डॉक्टर का घर है ना।
1: और आप?
0: मैं उनकी बेटी हूँ।
1: तो एक प्याला गर्म चाय भी हो जाए?
0: चाय जरूर।

तो अभी आपने ये गीत सुना लता माफ कीजिएगा किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म थी आराधना। और आइए अब बढ़ते हैं किशोर कुमार की ही आवाज़ में ये अगला गीत सुनते हैं, फिल्म लावारिस से।

जिसे गाया था गायक किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और मुकेश ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म सरगम से ये अगला गीत। गायक हैं मोहम्मद रफ़ी और गायिका लता मंगेशकर।

0: अभी आपने सुना फिल्म सरगम से ये गीत, और गायक थे मोहम्मद रफ़ी और गायिका लता मंगेशकर। और आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: बरसों बाद यूं खेलने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुमारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म रोटी कपड़ा मकान और गायक लता मंगेशकर, मुकेश, चंचल और जानी बाबू की आवाज़ में।

उल्फत तेरी, उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी, उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी, एक हम

0: से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएले को सौंपी। इस सहायता में पीपी किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप भी अगले कुछ दिनों में पहुंचाई जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच

0: Bounding the Strait of Hormuz. In China Open badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated world number 1 Alvi Farhan of Indonesia by 21-17, 5-21, 21-17 to reach the round of 16. In another round of 32 match last evening, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And that is the end of this news bulletin.
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का EIL लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 3:10 और 15 सेकंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कलाकार हैं जगजीत सिंह, बोल हैं राजेश रेड्डी के और संगीत भी दिया है जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

ये जो गज़ल अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे जगजीत सिंह। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गज़ल। जो बोल हैं, गुलूकार हैं मिर्ज़ा गालिब साहब, और संगीत दिया है निहारिका सिन्हा ने, और गायक कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा।

और AIR लाइव न्यूज 24/7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत। और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं सोनू निगम। गुलुकार यानी कि जो रचना है वो है हर्ष ब्रह्म भट्ट की और संगीत दिया है अनूप जलोटा ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: और इसी के साथ आज का गज़ल गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:20 और 14 सेकंड। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं तालवाद्य काचेरी। कलाकार हैं येल्ला वेंकटेश्वर राय। आइए सुनते हैं इनसे मृदंगम वादन।

0: कर्नाटक संगीत ताल वाद्य कचेरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे येला वेंकटेश्वरा राय का मृदंगम वादन। इसी के साथ आज का नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत उस्ताद डॉक्टर मुज्तबा हुसैन का राग नटभैरव। चिंतन कार्यक्रम में 6:40 पर आज का विषय रहेगा महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार।

सुबह 7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे करिश्मा शर्मा के भजन, और 7:30 पर आप सुन सकेंगे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आठ बजकर 45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे नीता माथुर का गायन। आज सुबह 9:15 पर कार्यक्रम उद्योग पत्रिका के अंतर्गत आज का विषय रहेगा व्यवसाय परिवर्तन और उत्कृष्टता के लिए वित्तीय रणनीति। आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे अभिषेक शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट CFO, विनिर्माण वित्त विशेषज्ञ से कमल किशोर की बातचीत आप सुन सकेंगे। हमेशा की तरह सुबह 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का, और दिन में सुबह 10:10 पर आप सुनेंगे आपकी पसंद फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम।

0: स्वरांजलि कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10, और दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन, जो कि महिला कार्यक्रम होता है, और दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। तो अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 5 बजने को हैं, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास

0: कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाओकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है और यह गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी की संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाओकोवा ने कहा कि वह भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले ही प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरीड झील का भी दौरा करेंगी। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडेन डुएल को सौंपी। इस सहायता में पीपीई किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में मारे गए 4 अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिकों को सलामी दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे गए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। राष्ट्रमंडल खेल 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
3: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rules should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
2: Parliament witnessed repeated disruptions for the third consecutive day yesterday, with the opposition raising issues including the NEET paper leak case and student protests. Later, both the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi last evening, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a meeting with his Canadian counterpart Anita Anand on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the prime ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. Dr. Jaishankar also interacted with the ASEAN Secretary General Dr. Cao Kim Horn in Manila yesterday. President of North Macedonia, Gordana Sijanovska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of the world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, Ms. Davkova said she has always been impressed by India's rich history and spirituality. She added that she was deeply impressed after meeting President Draupadi Murmu and felt that women have the potential to bring change in the world. President Murmu is President Murmu is on a historic state visit to North Macedonia. Today is National Broadcasting Day. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company. On the 8th of June 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio. This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. The 23rd Commonwealth Games will begin in Glasgow, Scotland from today. The Games, which will continue until the 2nd of next month, will see athletes from 74 nations compete across 10 sports at 4 venues. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain will represent India at the Games. India is sending a 125-member contingent, including para-athletes. India had won 61 medals in the previous edition held in Birmingham in 2022. Indian men's cricket team will play Zimbabwe in the first of the three-match T20 international series today at Harare. The match is scheduled to begin at 4:30 p.m. Indian Standard Time. Shreyas Iyer led India will play the second T20 on Saturday and the third match on Sunday at the same venue. India hold a commanding advantage over Zimbabwe in the shortest format of the game. And that is the end of this news bulletin.

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 5:10 और 18 सेकंड हो चुके हैं।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय है उष्टासन और योग से संतुलित जीवन। प्रस्तुत करता है योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी श्योखन।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शोखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह अर्धऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ऊष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना
1: जी,
0: हमें आपे में जीवन जीना है
1: जी।
0: और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है। और दूसरा काम ये कि जैसे हमने कहा 20 मिनट्स के बाद का ब्रेक, तो उस ब्रेक में आप कमर को बस सीधा करके बैठेंगे और गर्दन को पीछे लटका देंगे, पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे।

0: सिर्फ इतना भी यदि आप करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए हर 20 मिनट के बाद, तो आपको गर्दन में दर्द कभी नहीं हो सकता। हम क्या भोजन कर रहे हैं, कैसे पॉस्चर में बैठ रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारी लाइफ का निर्माण करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये यौगिक रूप से हम प्राप्त करते हैं। सुबह जल्दी उठिए तो रात को अपने आप समय पे नींद आनी आरंभ हो जाएगी, लेट्स डू इट वाइस वर्सा। तो ये एक सेल्फ टॉक थेरेपी आपको सुबह उठने में बहुत लाभ देगी। हम कहते हैं जो तुम्हारी दादी खाती थी अगर तुम वो खा लो तो तुम कभी बीमार ना पड़ो, क्योंकि हमारी जितने भी पूर्वज हैं, हमारी दादी दादा नाना नानी, वो सब हम उन्हीं के तो डीएनए है ना आगे, तो वो सब जानते थे, बस हम उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता है। देखिए आहार में तो हमें बस 3 नियम याद रखने हैं। पहला नियम कि पहले लोग घर पर भोजन करते थे और जब पेट में गुड़गुड़ होती थी तो बाहर जाते थे, है ना, और अभी उल्टा हो गया है। अभी हम जब भूख लगती है तो कहते हैं चलें बाहर, और जब पेट में गुड़गुड़ होती है तो कहते हैं चलें घर। ठीक है, पेट में गुड़गुड़ में घर जाना ही रोके, लेकिन जब पेट में भूख लगे तो बाहर नहीं दौड़े, यानी जो घर का भोजन है उसका सेवन करें। और आहार में हम सब ये ध्यान रखें, सिर्फ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखने कि जो भी भोजन डब्बे में पैक होकर के आ रहा है, फिर चाहे वो कितना डिजाइनर डब्बा है या कितना देसी डब्बा है, डब्बे का भोजन यानी पैक्ड फूड अगर आप अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा दें, और साथ में चीनी जो सफेद चीनी होती है उसे अपनी डाइट से हटा दें, रिप्लेस कर दें गुड़ से, शक्कर से, तो वो आपके लिए लाभकारी है। और बस जब आपके सामने भोजन आए तो अपने आप से ये कुछ प्रश्न करने, क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, खाऊं के ना खाऊं, है ना। और अगर मन में आ रहा है, दुविधा है खाऊं के ना खाऊं, तो बिल्कुल मत खाओ।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये रूल याद रखना है, खाऊं के ना खाऊं बिल्कुल मत खाओ, जाऊं के ना जाऊं यानी फ्रेश होने तो जरूर जाओ। ये भी इतना भी अगर हम कर लें तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से सही रहेगा। और एक चीज और इस यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारा जो बॉडी शेप है ना, हम सब चाहते हैं वी शेप हो, यानी अच्छी सी चेस्ट, उससे अच्छे ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट और बिल्कुल पतली सी कमर। तो हम बस ऐसा भोजन ही करें कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट, उससे कम लंच और छोटा सा डिनर। लेकिन अभी हम उल्टा करने लगे, हम भागते दौड़ते ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम ऑफिस में लंच करते हैं थोड़ा ज्यादा सा, और घर आके बहुत, इसीलिए अब हमारी बॉडी की शेप उल्टा भी बनती जा रही है ना।
1: हाँ,
0: पेट तो इतने बड़े बड़े हो और अपर बॉडी आपकी कम हो, तो बस वी शेप भोजन करें तो निश्चित रूप से हम सब स्वस्थ रहेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था उष्टासन और योग से संतुलित जीवन। प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर हिमानी श्योखन, योग विशेषज्ञ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:20 और 18 सेकंड। आइए सुनते हैं अब।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है